मांगने वाले खाली न लौटे। कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो।

0: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को संवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: हरियाली से सजे हर गांव शहर,
2: प्रकृति संग खुशियों की लहर।
3: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को संवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे अधीन।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एक

0: इन द प्रेस चैनल है।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवेटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
4: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
5: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
3: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
6: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
3: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
7: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
3: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7

0: 57 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
1: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सीकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
3: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
4: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
2: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
5: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
2: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
6: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
7: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमेरिका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट AF थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
8: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की सेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंप कर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1, रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर IIT निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल, संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम निशित कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू अटेंड विवाटेक समिट इन पेरिस विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल माक्रों। पीएम मोदी टू आल्सो एड्रेस मेंबर्स ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन फ्रेंच कैपिटल। President Draupadi Murmu to embark on a 5-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for 2 Rajya Sabha seats from Jharkhand and 1 from Mizoram to take place today. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement to come into force on the 15th of July this year. US President Donald Trump signs 14-point peace deal with Iran to end West Asia conflict. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the 3-match series to take unassailable 2-0 lead. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi arrived in Paris last night for the final leg of his visit to France. Upon his arrival in the French capital, Mr. Modi received a warm welcome from the members of the Indian community gathered at his hotel.
10: I feel India and France, it goes beyond geopolitics, education, culture, AI, innovation, it is everything.
11: So we are very thankful ki Modi ji aaye humse mile.
9: In Paris, Prime Minister Modi will attend the VivaTech 2026 alongside French President Emmanuel Macron. The VivaTech Summit is Europe's largest technology and startup event where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation.
12: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
13: था मेरी कसम?
12: मिस कर दिया तो रीलोड।
14: चाय चाय चाय
15: बिंदास मॉर्निंग।
12: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
16: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
17: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
18: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
17: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
19: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
13: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
20: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
21: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: दोस्तों का
1: हेलो हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कभी कभी कहते हैं कि इंसान का अकेला होना और उससे अकेला रोना बहुत मजबूत बना देता है। हेलो हाय सुप्रभात नमस्कारम वेरी गुड मॉर्निंग, आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 8:22 और इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम बिंदास मॉर्निंग। दोस्तों आप सभी का इस्तकबाल करते हैं एक बार फिर से, एक ब्रांड न्यू मॉर्निंग है आज, दिन है गुरुवार का, बहुत ही खूबसूरत सुबह है और बहुत ही खूबसूरत मौसम है, और इस मौसम वाले मौसम में ढेर सारे गानों के साथ बहुत सारी प्यारी प्यारी बातों के बीच मैंने तो दस्तक दे दी है, अब आपकी बारी है, आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं आज की सुबह 9837896896 के माध्यम से। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के सफर का सिलसिला शुरू करते हैं एक बेहतरीन ट्रैक के साथ, और ये गाना मैं आप सभी के नाम करता हूँ, ऑफ कोर्स यार, जब से मुरादाबादी मेरी जिंदगी में आए हैं ना, जिंदगी बदलती है।
2: जिंदगी
1: ये काम तो रेडियो ने भी कर दिया ना, इससे 3 साल पहले आपकी लाइफ में आके सुबह आपकी बिंदास बना दी,
2: जिंदगी बदल,
1: क्या बात है। इसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, और आज का ये मॉर्निंग रिचार्ज वाला गाना जो आपकी मॉर्निंग को थोड़ा सुपर डुपर एंड एनर्जेटिक बना देगा। सुनते रहिए बिंदास मॉर्निंग, आरजे आनंद का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, आनंद वीडियो थोड़ी देर में लौट कर आते हैं, कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए।

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
2: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
5: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

ला ला ला, बहुत ही बेहतरीन गाना यार। सच बताऊं तो ऐसे गाने सुन के मतलब मेरे को तो मजा आ जाता है यार। इतनी बेहतरीन और इतनी प्यारी आवाजें, इतने खूबसूरत ट्रैक, ओ माय गॉड। वेलकम बैक यार। हम भी आज के जमाने के बच्चे हैं, लेकिन हमें गाने वही वाले पसंद थे जो हमारे दादा नानी और हमारे चाचा नानी को पसंद आते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। 8:34 स्टेशन क्लॉक में 18 जून की सुबह है। ब्रैंड मॉर्निंग, ढेर सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं आज की सुबह हमारे साथ इस प्रोग्राम में। ढेर सारे संदेश हमारे पास पहुंचे हैं। हेलो आनंद जी, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? सुबह सुबह आपका प्रोग्राम सुन के और आपके गीत सुन के तो मन जो है बड़ा खुश हो जाता है। थैंक यू सो मच। ये राजेश जी का मैसेज पहुंच गया है हमारे पास। एक मैसेज आया है टीवी कॉलेज से। हाय, गुड मॉर्निंग, दिस इज मी प्रेरणा। गुड मॉर्निंग प्रेरणा जी, ये लिखती हैं, सर आपका प्रोग्राम सुन रही हैं, बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छी और बेहतरीन बातों के साथ अच्छे गीत भी आप प्ले कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपको भी। हेलो हाय, गुड मॉर्निंग, गर्मा गर्म चाय बन रही है, आपका स्वागत है, आप प्लीज आइए, गर्मा गर्म चाय पीजिएगा। बिल्कुल डॉली जी, आपने बुलाया है तो जरूर हम आएंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक मैसेज आ गया है हमारे पास, बहुत ही प्यारा सा इन्होंने लिखा है। जिंदगी जो है बहुत ही खूबसूरत है भाई, इस जिंदगी में सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है आपने, आप जैसी चीजों को फील करोगे वैसी चीजें आपके साथ होंगी। बिल्कुल सही कहा आपने जनाब, लेकिन अपना नाम भी तो लिखना था ना आपने, आपने नाम नहीं लिखा, थोड़ी सी गलती कर दी पाजी। चलो फटाफट से अपना नाम लिखो, 9837896896 पर जो आप ये मैसेजेस कर रहे हो इसके साथ ही साथ आपने अपने नाम भी लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अभी आज का दिन क्यों खास है इस पे डेफिनेटली चर्चा करेंगे। 8:35 हो रहा है स्टेशन क्लॉक में एंड एक बेहतरीन गाना ऑफ कोर्स आपका वेट कर रहा है। लेकिन उस गाने से पहले हम आपके लिए हर दिन एक बेहतरीन प्रोग्राम, एक पेशकश लेकर आते हैं जिसमें हम आपको खाने खुने की बातें करते हैं, कौन से शहर में क्या पॉपुलर है, अगर आप वहां जाते हैं तो आपको क्या कुछ चीजें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी एंड बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे प्रोग्राम्स के जरिए आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं ढेर सारी इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। तो अब आज हम आपको कौन सी गलियों में लेके जाने वाले हैं जी? आज हम आपको लेकर जाएंगे, आज हम आपको कहाँ लेकर जाने वाले हैं? आज हम आपको लखनऊ लेके जाने वाले हैं। यस, तो मिलते हैं थोड़ी सी देर में स्टेशन ऑफ द नेशन।

0: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपकी दोस्त प्राची और मेरे साथ हैं अखिल। और आज हम बात करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और हमारा स्पेशल टॉपिक रहेगा लखनऊ की मक्खन मलाई और चाट।
1: नमस्कार उत्तर प्रदेश, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहाँ बात होती है विकास की, विरासत की और उस स्वाद की जो दिल में उतर जाए।
0: और आज हम पहुँचे हैं बाबू की शहर, तहजीब की शहर यानी लखनऊ में, जहाँ पहले आप सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि जिंदगी जीने का अंदाज है।
1: अब यही लखनऊ अपने शानदार स्वादों की वजह से भी दुनिया में नई पहचान बना रहा है।
0: योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी ODOC पहल ने लखनऊ के पारंपरिक व्यंजनों को लोकल से ग्लोबल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
1: दोस्तों, लखनऊ सिर्फ बड़ा इमामबाड़ा, चिकनकारी और अदब के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ का खाना भी शहर की रूह माना जाता है।
0: और भाई, लखनऊ का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि एहसास भी भर देता है।
1: यही वजह सरकार अब इन पारंपरिक स्वादों को ब्रांडिंग, पैकेजिंग और आधुनिक मार्केटिंग से जोड़ रही है, ताकि दुनिया लखनऊ को सिर्फ नवाबी शहर नहीं बल्कि स्वाद की राजधानी के रूप में भी पहचाने।
0: और अब बात करते हैं लखनऊ की सर्दियों की सबसे नाजुक मिठास मक्खन मलाई की।
1: वाह, नाम सुनते ही जैसे मुंह में मिठास घुल गई। मक्खन मलाई, जिसे कुछ लोग निमिष भी कहते हैं, इतनी हल्की होती है कि मुंह में रखते ही पल भर में घुल जाती है, जैसे ठंडी सुबह धूप की पहली किरण, बिल्कुल वैसा एहसास।
2: ये सबसे पहले अपना नाम हमें बता दें।
3: हमारा नाम पप्पू जी है।
2: पप्पू जी, पप्पू जी आपका ये प्रतिष्ठान कब से है?
3: 40-45 साल हो गया।
2: खासियत क्या है, क्योंकि भीड़ काफी कुछ का, बहुत देखने
3: हम लोगों का यहाँ छोला समोसा मिलता है और यहाँ से व्यवहार भी बहुत अच्छा, लोग हम लोग बहुत अच्छे आते हैं सबसे।
2: जी जी, इसकी खासियत क्या है?
3: खासियत हमारे यहाँ लहसुन पड़ता है, सोयाबीन पड़ता है और क्वालिटी भी अच्छा रहता है हमारे यहाँ।
2: मैंने सुना है लहसुन
3: पड़ता है, हर प्लेट में पड़ता है।
2: उससे क्या स्वाद में?
3: स्वाद

0: आप खाएंगे खुद जान जाएंगे। खाक देखिए,
1: बिल्कुल ये भीड़ तो मुझे बता ही रही है कि उसमें जरूर कोई ना कोई खासियत है, तभी इतनी ज्यादा भीड़ आपके हमेशा बनी हुई। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री हमारे जो है योगी जी, उनके एक प्रोजेक्ट के तहत एक जनपद एक व्यंजन हम यहाँ पे आपको चुने हैं। ये लहसुन वाला छोला आपका काफी प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से हम आए और आपसे खास वार्ता हो रही है, तो योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: बहुत धन्यवाद है, हमारे उत्तर प्रदेश के राजा है, उनका क्या पूछा जाए,
1: हमारे शहर के राजा है,
0: हमारे शहर का क्या, हमारे पूरे देश के राजा है वो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उन्हें महाराज
2: हैं। धन्यवाद योगी जी।
3: और दोस्तों, इसकी सबसे खास बात ये है कि ये मिठाई सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि लखनऊ की पुरानी नवाबी परंपरा का भी हिस्सा है। कहा जाता है कि पुराने समय में नवाबों की रसोई में भी इसे बड़े अंदाज में तैयार किया जाता था,
4: और इसे बनाने की प्रक्रिया भी किसी कला से कम नहीं। सबसे पहले ताजे दूध को घंटों तक धीमी आंच पर पकाया जाता है, फिर उसमें मलाई तैयार की जाती है,
3: उसके बाद असली जादू शुरू होता है। पूरी रात उस दूध को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है ताकि सर्दियों की ओस और ठंडी हवा उसकी मिठास में घुल जाए।
4: यानी ये सिर्फ मिठाई नहीं है बल्कि मौसम और मेहनत का अनोखा संगम है।
3: बिल्कुल, और सुबह सुबह जब हलवाई उस दूध को बड़े प्यार से फेंटता है तो धीरे धीरे उसमें हल्के हल्के झाग बनने लगते हैं।
4: उसमें डाली जाती है केसर की खुशबू, इलायची का स्वाद और ऊपर से पिस्ता बादाम की हल्की सजावट। उफ़, ये सुनकर ही दिल खुश हो जाए।
3: और खास बात ये भी है कि मक्खन मलाई सिर्फ सर्दियों में ही मिलती है, क्योंकि इसकी असली पहचान ही ठंडी हवा और ओस से जुड़ी हुई है।
4: इसलिए लखनऊ में लोग सुबह सुबह दूर दूर से इसे खाने निकल पड़ते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि अगर आपने सर्दियों में चौक की मक्खन मलाई नहीं खाई तो समझिए लखनऊ को पूरी तरह महसूस ही नहीं किया।
3: और चौक, अमीनाबाद और पुराने लखनऊ की गलियों में सुबह के वक्त बड़े पीतल के बर्तनों में सजी मक्खन मलाई का नजारा अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है।
4: लखनऊ के चौक इलाके में माखन मलाई कॉर्नर पर सर्दियों में सुबह सुबह लोगों की भीड़ लग जाती है। कोई कुल्हड़ में खा रहा होता है, फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल रहा होता है।
3: यानी पारंपरिक स्वाद अब नई पीढ़ी को भी खूब पसंद आ रहा है।
4: और अब ODOC योजना के जरिए इस मिठाई को नई ब्रांडिंग और पहचान मिल रही है, जिससे छोटे दुकानदारों को भी बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, ODOC योजना सिर्फ लखनऊ के पारंपरिक स्वादों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े हलवाइयों, चाट विक्रेताओं, छोटे उद्यमियों और कारीगरों को आगे बढ़ाने का भी एक बड़ा माध्यम बन रही है।
3: बिल्कुल, सरकार इन पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और आधुनिक व्यावसायिक तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है।
4: भिन्न भिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से छोटे उद्यमियों को ऋण, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार से जुड़ी सुविधाओं का लाभ भी दिलाया जा सकता है, ताकि वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सके।
3: स्वयं सहायता समूह, महिला उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जुड़कर नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं।
4: सरकार की कोशिश है कि छोटे दुकानदारों और पारंपरिक व्यंजन बनाने वाले कारीगरों को बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सुविधाएं मिले, जिससे उनके उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुंच सके।
3: डिजिटल प्लेटफॉर्म, फूड फेस्टिवल, पर्यटन आयोजनों और विशेष प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रचार प्रसार का अवसर दिया जा रहा है।
4: यानी ODOC योजना स्थानीय स्वादों को वैश्विक पहचान देने के साथ साथ हजारों परिवारों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी काम कर रही है।
3: और यही वजह है कि लखनऊ की मक्खन मलाई, चाट और रेवड़ी जैसी पारंपरिक स्वाद अब नए बाजारों और नए ग्राहकों तक भी पहुंच रहे हैं।
4: अब चलिए लखनऊ की गलियों में, जहां चाट की खुशबू देर से लोगों को अपनी ओर खींच रही है।
3: अरे भाई, लखनऊ की चाट मतलब स्वाद का धमाका। खस्ता, आलू टिक्की, मटर चाट, दही बड़े, हर चीज में नवाबी अंदाज।
4: और सबसे खास बात यह है कि लखनऊ की चाट सिर्फ तीखी या मसालेदार नहीं होती, बल्कि उसके स्वाद में एक संतुलन होता है। खट्टापन, मिठास, मसाले और कुरकुरापन, सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में।
3: सही कहा, यहाँ की चाट वाले खाने सिर्फ खाना नहीं बल्कि हर प्लेट को बड़े प्यार और कला से सजाते हैं।
5: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
4: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
5: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

बेहतरीन गाना फ्रॉम द फिल्म कहीं प्यार ना हो जैसे भी आपने एंजॉय किया और अभी आनंद है आपके साथ जो आपका दिल ऑफ कोर्स लेके जाएगा। वेलकम बैक है 8:52 हो गए स्टेशन क्लॉक में यानी कि 8:52:53। देखिए यार बड़ी तेजी से वक्त भाग रहा है। 18 जून की सुबह गुरुवार का दिन है, बहुत ही खूबसूरत सी मॉर्निंग है। आप सभी का इस्तकबाल करते हैं मैंने कहा जी की हालचाल। चलिए श्रोताओं बात कर लेते हैं आज के इतिहास के पन्नों के बारे में। क्या कुछ महत्वपूर्ण है आज की तारीख में, क्यों खास है आज का ये इतिहास का पन्ना, क्या कुछ खास रहा आज की तारीख में, आपको फटाफट से एक नजर डालेंगे, आपको बताएंगे फटाफट से वेरी वेरी क्विकली कि भैया आज के दिन क्या कुछ खास रहा और क्यों स्पेशल है आज 18 जून की सुबह। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं भैया कि अभी जो 2026 है ना, ये साल खत्म होने में 196 यानी कि 196 दिन बचे हुए हैं। अगर अभी तक आपने जो है कुछ अपने प्लान्स रेजोल्यूशंस को पूरा नहीं किया है तो धीरे धीरे करके 2026 कैसे निकल जाएगा बॉस पता नहीं चलेगा। 196 डेज टोटल बचे हैं तो प्लीज़ अपने पैशन की तरफ, अपने काम की तरफ बढ़ाओ यार अपना कदम। दिस इज़ वेरी वेरी वेरी स्पेशल यार। आपको बता दें सन 1999 में 35 यूरोपीय देशों के बीच लंदन में पीए जल समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे श्रोताओं आज ही के दिन। और वहाँ पर एक और आपको बता दें आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज के दिन और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें तो आज के इतिहास के पन्नों में शो हो रही हैं और वो धीरे धीरे हम आपको बता रहे हैं। आपको बताते चलें आज के दिन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के माध्यम से 3 समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे श्रोताओं आज ही के दिन। और सन 2017 में ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2017 में पाकिस्तान ने भारत को हराकर खिताब जीता था। आज ही के दिन श्रोताओं एक बहुत ही खूबसूरत कलाकार का जन्म हुआ था जिनके विषय में डेफिनेटली बात करना बनता है। आज ही के दिन जन्मे थे 1958 में होमी डेडी मोतीवाला। यस ये भारत के श्रेष्ठ खिलाड़ी रहे, इनका जन्म हुआ था श्रोताओं आज ही के दिन। और आपको बताते चलें आज ही के दिन अनुग्रह नारायण सिन्हा, इनका भी जन्म हुआ, भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और आधुनिक विहार के निर्माता रहे। सन 1887 को इनका जन्म हुआ। एंड आपको बताते चलें आज ही के दिन प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता थे, इनका जन्म हुआ था सन 1852 को, सी विजय राघव जी का जन्म हुआ था श्रोताओं। और आपको बता दें नेपाल के प्रधानमंत्री जंग बहादुर जी का जन्म आज के दिन हुआ था 1817 को। और आज का दिन इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि कुछ और खास दिवस हैं जो आज के दिन को बहुत ही खास बना रहे हैं, क्यों डेफिनेटली बताऊंगा ना थोड़ी देर के बाद। आप आनंद के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और स्टे ट्यून रहिए जहां पर बातें होती हैं दिल से दिल तक वाली। ढेर सारे श्रोताओं ने जो है हमें मैसेज किए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें 18 जून का दिन भारतीय और विश्व के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है श्रोताओं। आपको बता दें इसी दिन महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जो है उनको उनके युद्ध को और उनको याद करने का जो है आज का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन है। बिल्कुल हम रानी लक्ष्मीबाई को ज़रूर डेफिनेटली नमन करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं। मैं क्यों उनके बारे में बात कर रहा हूँ थोड़ी देर में डेफिनेटली बताऊंगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आज का दिन बिल्कुल हम उनको डेफिनेटली याद करेंगे और बिल्कुल उनको याद करना बनता है। मैं बार बार उनका जिक्र क्यों कर रहा हूँ, बहुत खास दिन है आज का उनके लिए, हम सभी के लिए। थोड़ी देर के बाद डेफिनेटली इस पर चर्चा होगी लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो आज के दिन को बहुत ही स्पेशल और ख़ास बना देती हैं श्रोताओं। खैर हम ज़्यादा इतिहास में घुस जाएंगे तो शायद हमारा समय कम पड़ जाएगा, इसलिए आप अपना ब्रेकफास्ट इन्जॉय करते रहिए। बहुत ज़्यादा बातें नहीं होंगी यहाँ पर, अच्छे गाने भी होंगे और अच्छी इन्फॉर्मेशन भी होगी जो कहीं ना कहीं आपकी सुबह को थोड़ा सा और रिचार्ज एंड एनर्जेटिक बनाएगी। वेल आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं लिसनर्स 9837896896 पर। यस मॉर्निंग मॉर्निंग आप मुझे सुन रहे हैं ना, आनंद व्यू आज की सुबह बहुत स्पेशल है मैं आपसे कह रहा हूँ। आप भी मुझे व्हाट्सएप करके जरा अपने हालचाल बताओ यार 9837896896 पर। आप मुझे मैसेज के जरिए बता सकते हैं 9837896896 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, हमें इंतजार है आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का। और देखिए ढेर सारे श्रोता ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस प्रोग्राम में और हमें इंतजार तो आपका है, आप भी तो व्हाट्सएप करो यार, आपके मैसेज आएंगे तो हमें और भी आनंद आ जाएगा। फटाफट व्हाट्सएप कर दो मुझे 9837896896 पर। अच्छा आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आपके पड़ोस में जो भैया बैठे हैं इनको फोन पकड़ाओ। अच्छा आप खुद ही चला रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी कर रहे हैं करते रहो, एंजॉय करो, अच्छी गाने लेकर आए हूँ आज की सुबह। वेदर क्या कहता है आज, मौसम क्या कह रहा है, मौसम के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे जरा सी देर में।
अगर आप कहीं जाम शाम में फंसे हो सुबह सुबह, आपको लग रहा है कि भैया बड़ा तगड़ा, हल्का फुल्का नहीं भैया, तगड़ा वाला जाम लग गया आनंद जी यहाँ पर, तो आप हमें बता सकते हैं उसके बारे में व्हाट्सएप करके या कॉल करके 9837896896 पर। अभी फिलहाल स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 8:57। आप ही आनंद के साथ सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
5: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
6: भैया देखिए स्टेशन क्लॉक में वक्त हो गया है 9:03, मॉर्निंग है बहुत ही प्यारी सी फ्रेश वाली, जहां पर बातें हो रही है फ्रेश आपके साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर लिसनिंग टू FM मुरादाबाद 89.6 आपकी शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो आप सुन रहे हैं, एंड ढेर सारे लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। अच्छा आप अपना जॉगिंग वॉकिंग करके आ रहे हो ना, मेरे को पता है यार। अच्छा आज का दिन क्यों स्पेशल है, डेफिनेटली मैं आपको बताने वाला हूँ अभी और थोड़ी सी देर में। एंड इसके अलावा एक और खास चीज जो अपने मुरादाबाद से जुड़ी हुई है, बहुत ही स्पेशल चीज है, डेफिनेटली उसके बारे में बात करना तो बनता है आज की मॉर्निंग में, बट अभी नहीं, थोड़ी देर में। थोड़े से ना सस्पेंस बहुत जरूरी होते हैं, और इस संडे फादर्स डे हम सेलिब्रेट करें 21 जून को। इट्स नॉट योगा डे, योगा डे के साथ साथ और भी बहुत सारे डेज होने वाले हैं। वर्ल्ड म्यूजिक डे होने वाला है एंड इंटरनेशनल योगा डे, ऑफकोर्स हम सभी का बहुत ही स्पेशल डे है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। इसके अलावा इस संडे हम फादर्स डे भी मनाने वाले हैं, ऑफकोर्स मदर्स डे तो हमने मनाई लिया, अब हम फादर्स डे सेलिब्रेट करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड इस फादर्स डे हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आए हैं। मूवी शूवी देखने का प्लान कर रहे हो क्या पापा के साथ? अच्छा नहीं कर रहे हो, चलो आपकी प्लानिंग हम बनवाते हैं, डोंट वरी यार। इस फादर्स डे आपके लिए क्या स्पेशल करने वाले हैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अगर आपको मूवी जाने का प्लान है अपने पापा के साथ तो आप कैसे पहुंच सकते हैं, डेफिनेटली आप जानेंगे स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो भैया योगा डे पे आप क्या करने वाले हो ये तो हम आपसे बिल्कुल नहीं पूछने वाले आज की सुबह, हम आपसे कुछ और ही पूछेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और हाँ, अभी मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है जिसका जवाब मैंने आप मुझे देंगे। हाँ हाँ, मैं बस अभी आ रहा हूँ लेकर अपना आज का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिसमें मुझे आपके साथ ढेर सारी बातचीत करनी है। ऑफकोर्स मुझे आपसे जानना ही जानना है, एक काम करते पूछ ही लेते हैं लगे हाथ। देखो यार अभी ना जो ये सीजन चल रहा है वो मैंगो सीजन चल रहा है ना, अभी फलों का राजा आम मार्केट में बहुत अच्छे से ट्रेंड कर रहा है, और आप जहाँ जाओगे वहाँ आपको येलो येलो मैंगो मैंगोज दिख जाएंगे। मे भी हो सकता है आप में से कितने लोग अभी मैंगो शेक पी रहे होंगे, आई डोंट नो। क्या कहा, सुबह सुबह मैंगो शेक? बेईमानी नहीं कर रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको,
7: होता नहीं
6: सुबह सुबह शेक पीना। चलो जी बना लत लग गई, बहुत ही अमेजिंग ट्रैक रेस टू से निकल रहा है आपके लिए बेनी दयाल की आवाज। आप मेरे को आम के बारे में आज बताओ, आपको कितने मैंगो की वैरायटीज के बारे में पता है? लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, आई हैव आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग, आप मुझे व्हाट्सएप करके ना आम के नाम बताओ, देखता हूँ कितने सारे मैंगो के नाम आपको पता है। 4-5 वैरायटी के

तो डेफिनेटली आते ही होंगे, आई एम श्योर. मतलब मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं पता है, बट सीरियसली मैं आज जानना चाह रहा हूँ कि लोगों को आम के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन से आम आपको पता है. आप मुझे चार या पांच मैंगो के नाम या ज्यादा से ज्यादा मैंगो के नाम बताओ यार. चलो व्हाट्सएप करो, आपका फेवरेट आम कौन सा है, आपको कौन सा मैंगो पसंद है. सुबह सुबह ब्रेकफास्ट की बातें होनी थी, ऑफकोर्स बनती है, और ब्रेकफास्ट में अगर आप मैंगो खा रहे हो तो ये भी अच्छी बात है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया. अगर आप आम खाते हैं कौन कौन से इसके फायदे आपको मिलेंगे ये भी मैं आपको गिनवाऊंगा थोड़ी देर में. पर आप मुझे चार पांच आम के नाम या फिर जो आपको पसंद है उस मैंगो का नाम जरूर बताइएगा, या आपको कौन कौन से आम के नाम पसंद है आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9837896896 पर. कौन कौन से मैंगो के नाम आपको पता है आज की सुबह आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं. फलों का राजा आम है आनंद, वही आम का नाम आपको बताना है. फिलहाल आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक. यह है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन. एंजॉय करेंगे इस गाने को मेरे साथ.

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: हाँ मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

Everybody! Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Hey, hey, hey, la, la, la. क्या गाना है यार, what a song. आहा, सिम्बा से मीका सिंह, नेहा कक्कड़, कुमार शानू, तनिष बागची का म्यूजिक. आंख मारे भैया, ऐसे काम मत करो कि जिससे जिंदगी में दिक्कत हो जाए. क्या करो, नई बाजी कभी कभार चलता है. अरे रे रे रे रे रे, आगे बढ़ते हैं. हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? सुन रहे हैं आप आरजी आनंद को. लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक. क्या हालचाल? ढेर सारे मैसेज आ गए. ब्रिलियंट यार, थैंक यू वेरी मच इतने प्यारे मैसेज करने के लिए. देखिए, हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं. पूजा जुड़ चुकी है हमारे साथ गायत्री नगर से. शिखा मैम के मैसेज आ गया है. मानसरोवर से हमारे साथ प्रतीक भी जुड़ गए हैं. प्रतीक भाई, थैंक यू सो मच. और ये जो आपने चाय का मग भेजा है ना यार, बहुत ही प्यारा लग रहा है यार. थैंक यू सो मच यार. मैसेज आ गया है रामपुर से अयूब अली का. ये मेरे साथ जुड़ चुके हैं. लिखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल गाने आप प्ले करते हैं, सो बहुत ही अमेजिंग है. थैंक यू सो मच मेरे भाई. उस्मान टेलर जी, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं. ग्राम बीजना से ये भी जुड़े हैं. विकी सागर जुड़ गए हैं, लिखते हैं रेडियो वाला आनंद को वेरी गुड मॉर्निंग. उनके साथ मजा आ जाता है शो सुन के. थैंक यू मेरे भाई. यार आप लोग बहुत ही अच्छे मैसेज कर रहे हैं. चमन लाल साहब जुड़ चुके हैं पुतली घर रोड से. गर्मा गर्म कड़क चाय के साथ गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं. और भी ढेर सारे मैसेज पहुंच रहे हैं मेरे पास. बरेली से मैसेज आया है. हाय गुड मॉर्निंग जी, माय नेम इज तन्विका. गुड मॉर्निंग तन्विका. एंड ये किसका मैसेज पहुंचा है यार, इन्होंने नाम तो नहीं लिखा है बट बड़ी प्यारी थॉट लिखी है. लिखते हैं कि आनंद जी, जिंदगी में ना कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ता है. और मुझे लगता है कि कुछ बड़ा सोचने के लिए ना आपको कुछ बड़ा इमेजिन भी करना पड़ता है, और उसके लिए आपको लिखना भी पड़ता है. अरे वाह, कहते हैं जो लिखा नहीं वो दिखा नहीं. बात तो वैसे सही बोली आपने, बट अपना नाम तो बता दो यार. इसलिए मुझे आपका नाम नहीं दिखा क्योंकि आपने लिखा नहीं. अरे वाह, क्या राइमिंग बनी है यार. चलो आगे बढ़ते हैं. और अभी कुछ कड़क अपडेट. हमारे आसपास क्या चल रहा है जरा इस पे भी नजर डालते हैं फटाफट से. हाँ जी, तो देखो भाई, आसपास में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. अगर आपको ये चीज़ें जाननी है तो डेफिनेटली आप बहुत इजीली मेरे साथ मेरे शो पे आपको पता लग जाती है क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, आसपास में क्या हो रहा है, सब कुछ आपको पता लग जाता है इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक. और आज तो भैया मैं आपसे आम के बारे में ही पूछ रहा हूँ कि आपको मेरे को मैंगो के नाम बताने हैं. कौन कौन से मैंगो के नाम के बारे में आप जानते हैं, ये मैं आज आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ढेर सारे मैसेज ऑलरेडी मेरे पास पहुँच गए हैं. थैंक यू सो मच. बाकी आप लोग भी मुझे डेफिनेटली व्हाट्सएप करके बताइएगा आपको कौन कौन से मैंगो के बारे में इन्फॉर्मेशन है, कितने आम के नाम आपको पता है, ये डेफिनेटली मैं आपसे आज जानूंगा जरा सी देर में. एंड अभी फिलहाल कुछ मैं इन्फॉर्मेशन आपको फटाफट प्रोवाइड करा देता हूँ, क्या कुछ चल रहा है आपको बता देता हूँ, आपको अपडेट कर देता हूँ, बहुत जरूरी है. लेकिन उससे पहले एक बहुत ही प्यारा मैसेज मेरे पास पहुंचा है. हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज मी लतिका. ये मुझे लिखती है, जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप ये कर ही नहीं सकते हैं. वाह वाह वाह, बिल्कुल सही कहा आपने. आपसे हो ही नहीं पाएगा जब आप वो काम करके दिखाते हैं ना, फिर उसके बाद जो आनंद आता है कसम से बता रहे हैं, बहुत ही अलग ही लेवल की बात होती है. देखो, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं एंड अगर गलती से आपको ख़राब सामान मिल जाए, आपका सामान चेंज हुआ हुआ मिल जाए, तो आपको कैसे हेल्प लेनी है, आप कैसे हेल्प ले सकते हैं. कई बार हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं एंड हमें फिर इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि हम लोग कस्टमर केयर पे भी अपने शिकायत दर्ज कराते हैं बट हमें वो रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा होता जिसका हम इंतज़ार करते हैं ना. तो अगर आपको भी ऑनलाइन शॉपिंग आपने करी और उसमें कोई ख़राब सामान या गलत सामान आ गया है या आपकी डिलीवरी रिफंड नहीं हो रही है, कस्टमर केयर से आपको हेल्प नहीं मिल रही, अगर ये प्रॉब्लम आपको हो रही, तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. यहां आपकी शिकायत जो है उस कंपनी तक पहुंचेगी जहां से आपने प्रोडक्ट को लिया है, या जो भी आपकी समस्या आ रही है उसको सॉल्व किया जाएगा, आपकी शिकायत को दर्ज किया जाएगा. एंड ध्यान रखें, जब भी आप कंप्लेन करें तो आपका ऑर्डर नंबर, आपका बिल, फोटो वगैरह या कुछ वीडियोस या फिर कोई भी एक आपके पास आइडेंटिटी होनी बहुत जरूरी है, आपका प्रूफ होना बहुत जरूरी है जब भी आप यहां पर कॉल करके शिकायत अपनी कंप्लेन दर्ज करा रहे हैं. तो अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी, आपको कोई खराब सामान मिल गया या आपका सामान एक्सचेंज हो गया है, तो उसके लिए आपको कहां कॉल करना है, आपको राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पे कॉल करना है. 1915 पे आपको कॉल करना है. यस, 1915 पे आप कॉल करेंगे और अपनी कंप्लेन आप दर्ज करा सकते हैं. बट ये उस सिचुएशन में ही वर्क करेगा जब आपने कोई ऑनलाइन सामान मंगवाया और आपका वो प्रोडक्ट नहीं निकला या आपको कुछ गड़बड़ी लगी है, तब आप इस राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पे संपर्क कर सकते हैं. मैं नंबर रिपीट कर रहा हूं, 1915 यानी 1915 पे आप कॉल कर सकते हैं और ये नंबर आप किसी और को भी बता सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना. आगे बढ़ते हैं, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को. लेडीज एंड जेंटलमैन,
और अभी हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ कहा है। सीएम साहब ने क्या कहा है उन लोगों के लिए जो ड्यूटी के दौरान रील बनाते रहते हैं, उनके लिए भैया एक बड़ा सख्त रूल आया है। हमारे सीएम साहब का कोई आदेश जो है टाल नहीं सकता है। क्या आदेश आया है डेफिनेटली मैं सुनवाऊंगा, अभी थोड़ी देर में पता लगेगा उन्होंने क्या अनाउंसमेंट की है। एंड एक और खास चीज आपको बताने वाला हूँ, एक ऐसा शहर जहां पर आप खाली बॉटल डालोगे और आपको बदले में 10 रुपए मिलेंगे। कैन यू इमेजिन कि आप बॉटल को कैसे रीयूज कर सकते हो, मतलब उस बॉटल से आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, कहां पर हुआ है ये? बड़ा ही फैंटास्टिक आइडिया है डेफिनेटली, मतलब मुझे जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड आपके साथ में शेयर करूंगा अभी थोड़ी देर में स्टेशन ऑफ द नेशन पे। फिलहाल 9:19 हो गए, आप आनंद के साथ सुन रहे हैं आपके शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और भी ढेर सारे श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आने वाला एक बेहतरीन गाना अभी आपके लिए निकलेगा।

0: एंड ऑफ डे 2 से बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक। इस गाने का जो पिक्चराइजेशन है बहुत ही ब्यूटीफुल है, बिकॉज ये गाना FRI में शूट हुआ है, देहरादून की FRI। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है यार, ऑफ कोर्स मैं वहां पे गया हूँ, अगर आप नहीं गए तो एक बार जरूर जाना यार। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत चीज है, और आप वो इमेजिन कर सकते हो इस गाने में। आप ये गाना देखोगे तो आपको एकदम से दिख जाएगा वो FRI। ये गाना जरा सिर्फ मैं ड्रॉप करूंगा, लेकिन अभी के लिए कुछ ब्रेक आ रहे हैं।
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
5: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
7: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
8: कॉल 8826213131।

क्या बात है यार, एक बहुत ही बेहतरीन गाना सुन के मजा आ गया ना, मुझे भी मजा आ गया। वेलकम बैक वंस अगेन, आप सुन रहे हैं आनंद को इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। भैया खाली बॉटल डालिए और 10 रुपए पाइए। हाँ जी, और आपको जब 10 रुपए प्राप्त होंगे तो ये आपको थैंक यू भी लिखाएगा, थैंक यू आपको 10 रुपए प्राप्त हो गए हैं। यस, खाली बॉटल से जो है अब आपको पैसे मिल सकते हैं। ये मतलब कहाँ पर हुआ है ये इतना बढ़िया मैजिक, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली तमिलनाडु सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत अब कोई भी खाली बॉटल को जो है कचरे में फेंकने की बजाय आप रिवर्स वेडिंग जो मशीन है उसमें आपको जमा करके पैसे मिलेंगे। यस, मतलब अगर आप उस मशीन का इस्तेमाल करते हैं, अपनी खाली बॉटल्स को आप उसमें जाके डालते हैं, तो आपको बदले में 10 रुपीज मिलेंगे। एंड ये एक बहुत ही फैबुलस इनिशिएटिव लिया गया है चेन्नई में। आपको बता दें चेन्नई के एक इगमोर इलाके में लगाई गई इस मशीन में जो है खाली कांच की बॉटल डालने पर तुरंत 10 रुपये जो है वो मिलेंगे। एंड ये मशीन जो है बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही अलग तरीके से इसको बनाया गया है। कैमरों की मदद से इसमें बॉटल की पहचान की जाएगी, एंड अगर आपकी बॉटल पे मतलब राइट क्लिक होता है तो फिर आपको उस पर भुगतान भी किया जाएगा। इस पहल से जहां साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर होगी, वहीं लोगों को बॉटल इधर उधर फेंकने की बजाय रिसाइकिलिंग के लिए उनको जो है प्रेरित किया जाएगा, उनको थोड़ा सा अवेयर किया जा रहा है और थोड़ी सी जागरूकता भी बढ़ाई जा रही है। थोड़ी नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरी जागरूकता बढ़ानी चाहिए यार, जिससे पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। एब्सोल्युटली ये जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग यार, फैब्यूलस, बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है कि इस तरह की अल्टीमेट चीज़ें होती रहनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है ना। सारी चीज़ों का अच्छे से इस्तेमाल भी होगा,

आपको अर्निंग भी हो रही है ना, एंड वो इधर उधर आप कचरा भी नहीं डाल रहे हो, यू नो एक अच्छी चीज़ है, यू नो। स्टेशन क्लॉक में वक्त हो गया है 9:25, आप आनंद के साथ हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड मैं बस आपको वही चीज़ें बताता हूँ जो कहीं ना कहीं आपके काम की होती हैं। देखिए आज आम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि आपको कौन कौन से मैंगो के बारे में पता है, आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। इससे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मलियाबाद एग्जैक्टली, ये लखनऊ से पहले पड़ता है एंड मेरा एक फ्रेंड भी वहाँ रहता है, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मलियाबाद में आम बताया जा रहा है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में थोड़ा सा मुश्किल का सामना कर रहा है, और जापान में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा यू नो इस पर ट्रीटमेंट की प्रक्रिया भी की जा रही है, बिकॉज मैंगो जो है बहुत सारे देशों में, बहुत सारे इंटरनेशनल एरियाज में भी जाता है, और स्पेशली अपने उत्तर प्रदेश का जो मैंगो है उसकी तो बात ही अलग है, बहुत ही पॉपुलर है अपने उत्तर प्रदेश का आम। और मैं आपसे वही मैंगो के बारे में बात कर रहा हूँ कि आप भी मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कौन कौन से मैंगो के नाम आपको पता है, आपने मैंगो को जो है डेफिनेटली रिसर्च किया होगा तो आपको पता लगा होगा बहुत सारे मैंगो जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, अलग अलग नाम से उनको जाना जाता है। मेरे पास ढेर सारे संदेश पहुँचे हैं, हाय गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हैं आप, हाउ यू, गुड मॉर्निंग जी। मेरे पास ये बालाजी का मैसेज आया, साथ में अंजन जी हमारे साथ जुड़े हैं, गीता कश्यप जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं। बाबू अंसारी साहब जुड़ चुके हैं छप्पर वाली मस्जिद रहमत नगर से, लिखते हैं गुड मॉर्निंग, आपने जो भी लखनऊ वाला प्रोग्राम सुनवाया हमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ रणवीर सिंह जुड़े हैं, लिखते हैं दुनिया भर में आम की 1500 से ज़्यादा किस्म के जो मैंगो हैं वो उगाए जाते हैं, जिनमें अकेला भारत में 1000 से अधिक प्रकार के आम जो है यहाँ पर अपने इंडिया में, अपने भारत में पाए जाते हैं। ओके, और ये लिखते हैं कि साथ में हेलो गुड मॉर्निंग आरजे आनंद जी, कैसे हैं आप, गम को डिलीट करो, खुशियों को सेव करो और एफएम मुरादाबाद को सुनते रहा करो, वाह वाह वाह वाह कमाल कर दिया यार। एक और मेरे पास मैसेज पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हालचाल हैं, आम की 1000 आम जो है वो दुनिया में 1000 किस्म के हैं, लेकिन इंडिया में जो है उगाया जाता है उसकी बात ही अलग है, और अपने स्टेट का तो बड़ा फेवरेट है मैंगो। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। मैसेज मयंक शर्मा का आ गया है हमारे पास, गुड मॉर्निंग आनंद जी, जय श्री राम, आप कैसे हैं, आज ही के दिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बलिदान दिया था, बिल्कुल बिल्कुल, मैं डेफिनेटली थोड़ी देर पहले उस पर बात कर रहा था। डॉक्टर सैयद शारिक अली जी आज़ाद नगर करूला मुरादाबाद से जुड़ गए हैं अपने फ्रेंड इरशाद हुसैन अंसारी के साथ, आपका भी स्वागत है जनाब। रिहाना जुड़ चुकी हैं रानी नांगल से, गुड मॉर्निंग पहुंचा रही हैं। अच्छा, मैसेज तो आपके पढ़ते रहेंगे यार, ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग योर लव। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ कड़क अपडेट भी है, धीरे धीरे आप तक पहुंचेंगे। आपको एक बहुत ही बढ़िया हम जो है कॉन्टेस्ट खिलाने वाले हैं, उसके लिए आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा, ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन आपसे होने वाला है जरा सी देर में, अगर आपने दिया उसका सही जवाब तो आप विनर बन सकते हैं, बहुत ही कमाल की चीज़ आज आप पा सकते हैं, क्या चीज़ है वो डेफिनेटली आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, रेडियो को चिपक के सुनना है। हाँ जी, बस थोड़ी देर में लौट कर आते हैं, तो अपने कानों को जो है ना अपने रेडियो सेट पर लगा के रखिए, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ऑफकोर्स आप इसका आंसर करोगे तो आपको मजा आ जाएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा और बहुत ही बेहतरीन चीज़ बदले में जो है आपको मिलने वाली है, ऐसी क्या चीज मैं आज आपको यहाँ पे देने वाला हूँ पता लगेगा आपको अभी जरा सी देर में। ऊंचा लंबा कद मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है यार, मतलब कटरीना कैफ अक्षय कुमार का जो कोरियोग्राफी था इस गाने में बहुत ही अल्टीमेट, और जो अभी नया वाला ऊंचा लंबा कद आया यार मेरे को जवानी यार। फिलहाल हम पुराने वाले को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग आरजी आनंद के साथ, ये है आपके शहर का फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, आप सुन रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन आनंद विद यू, गुड मॉर्निंग।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
5: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
4: पर पापा।
5: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
6: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। We'll be right back.

0: मैडम कौन सी भाषा बोल रही थी आप? क्या क्या
1: पसंद थी?
0: हाँ ये समझ में आया, उससे पहले जो मैम आपने बोला ना, हम सच्ची बता रहे हैं, हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया आपकी बात। आप पता नहीं कैसी बातें बोल के चली जाती हो यार, समझ से बाहर हो जाता है ना। वेलकम बैक है यार, वेलकम बैक है। 9:39 हो गए, आगे बढ़ते हैं। आप लोग जहाँ भी जा रहे हैं, ऑल द वे बेस्ट। यार अभी रिसेंटली ना मैं एक स्टडी कर रहा था, तो मतलब एक मैं रिसर्च कर रहा था, उसमें मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी दिखी, तो मेरे को लगा आप तक पहुँचनी चाहिए। भाई एक रिसर्च में पता लगा है कि दोपहर की छोटी सी झपकी, मतलब छोटी छोटी सी झपकी जो है वो मस्तिष्क की यानी कि आपके दिमाग की उम्र को 6.5 साल तक यू नो वो धीमी हो सकती है, मतलब 6.5 ईयर तक वो धीमी हो सकती है, ऐसा शोध कर बताते हैं जो एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं। मतलब दोपहर की झपकी जो है, अगर आप दोपहर में ऐसे नींद लेते हैं या झपकी लेते हैं, कई लोगों को होती है आदत कि भैया चलो खाना खूना खा लिया भाई, अब दोपहर में थोड़ी सी झपकियाँ मार लेते हैं भाई। तो भैया उसमें ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग झपकियाँ शपकियाँ मारते हैं ना, उनके लिए अब मैं आपको बताता हूँ, स्पेशली अगर आप आज के यूथ हैं, तो ये जो है बताया जा रहा है कि अगर आप दोपहर में अपने मस्तिष्क को ये थोड़ी सी झपकी देते हो तो ये आपके लिए बेहतर है। एग्जैक्टली मतलब ये आपके लिए बहुत ही अच्छी है, आपकी याददाश्त को मजबूत करने में, आपकी मानसिक थकान को कम करने में, आपकी मस्तिष्क की सफाई की प्रक्रिया जो है इसमें बताया जा रहा है कि आपको हेल्प मिलती है एंड समर्थन देने में काफ़ी हेल्प करती है। अगर आप दोपहर में एक छोटी सी झपकी लेते हैं खाना खुना खाने के बाद, बहुत छोटी सी अराउंड 20-30 मिनट की झपकी अगर आप ले रहे हैं, 1-3 के बीच अगर आप ये झपकियाँ ले रहे हैं, तो भैया बहुत ही बढ़िया माना जाएगा और ये आपके मस्तिष्क के, आपके ब्रेन के लिए, आपकी याददाश्त के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाएगी ये झपकी। बट अगर आप ये सोचने की रात में ये ले रहे हैं, तो भाजी रात वाली झपकी का कोई काम नहीं है ना जी, ना वो वाली झपकी की बात नहीं चल रही है भाजी, ये दोपहर वाली झपकी की बात चल रही है। दोपहर में अगर आप खाना खुना खा के 1-3 के बीच अगर आप हल्की सी यू नो झपकी लेते हैं नींद की, तो ये आपकी याददाश्त के लिए बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन मानी जाती है। ठीक है, तो ये कड़क अपडेट मैंने आपको दे दी है। अब जो लोग अपनी ड्यूटी के दौरान रील शील बनाते हैं, उनके लिए हमारे CM योगी आदित्यनाथ जी का एक यू नो आदेश आया है, जरा वो सुनवाते हैं हम आपको, क्या कहा है उन्होंने। चलिए बिना किसी देरी के हम आपको बताते हैं और सुनवाते हैं।
2: हैं
0: जी सर,
2: ड्यूटी के दौरान बहुत सारे लोग रील बनाते रहते हैं, ये अनुशासनहीनता का एक पार्ट है। उस समय हमें अपने ड्यूटी के प्रति सजग होना होगा, ना कि रील बनाना होगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जिस कार्य को हमें करना है उसके प्रति उतनी ही सतर्कता और उतनी ही गंभीरता भी होनी चाहिए, तब वह गरिमापूर्ण तरीके से परिणाम दे पाएगा।
0: बिल्कुल सही कहा है हमारे CM साहब ने। अगर आप अपनी ड्यूटी पे हैं, अगर आप अपनी जॉब पर हैं और आपकी ड्यूटी बहुत ज़्यादा यू नो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स सबकी जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी यू नो आसपास के लोगों के नाम, आपकी जॉब है, डेडिकेटेड है लोगों के लिए, जनता के लिए है ना, तो आपको वहाँ पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, अमेजिंग। हमारे CM साहब बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं यार। आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, आनंद के साथ हैं आप। अब ज़रा काम की बात कर लेते हैं ना फटाफट से। काम की बात यह है, अगर इस फादर्स डे पे आप थोड़ा सा यू नो एंजॉय करना चाहते हैं, बाहर फन करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने जो है मेरे को मेरे सवाल का जवाब देना है, फिर हम आपको कहाँ लेके जाएंगे डेफिनेटली आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको मुझे व्हाट्सएप करके एक मेरे सवाल का जवाब देना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आपको मेरे सवाल के जवाब देने के लिए उठाना है अपना फ़ोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही वाला जवाब, उसको सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप पे 9837896896 पर व्हाट्सएप करके आप मेरे को बताएंगे मेरे सवाल के जवाब। मेरा क्वेश्चन यह है, आई हैव आस्क यू दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कौन सी फिल्म में सलमान खान ने लव गुरु का रोल निभाया था? लड़कों को डेट करना सिखाते थे सलमान खान, बहुत ही अच्छी स्टार कास्ट है, बहुत ही बढ़िया फिल्म है, आपको मुझे व्हाट्सएप करके बताना है वो कौन सी मूवी है सलमान खान की जिसमें उन्होंने लव गुरु का रोल प्ले किया था। आप जरा मुझे व्हाट्सएप करके बताओ, नो एक्सक्यूजेस नो बहाने। मुझे पता है ये ऑफकोर्स आपने मूवी देखी होगी, बहुत बड़ी आपने देखी है मूवी, तो आप अब व्हाट्सएप करोगे मुझे 9837896896 पे, बताओ मुझे सलमान खान की वो कौन सी फिल्म है जिसमें उन्होंने लव गुरु का रोल प्ले किया था। यार आने वाला गाना रागी इन्होंने 2 से कनिका कपूर की आवाज, एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं ये थर्सडे की सुबह।

अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

बहुत ही बेहतरीन गाना है। एंड इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊं तो इस गाने में जो आदित्य नारायण है, उदित नारायण साहब के जो बेटे हैं, उन्होंने भी बहुत सारी फिल्मों में अपने बचपन वाले रोल निभाए हैं। एंड मतलब बहुत ही अल्टीमेट यू नो सिंगर भी है। एक्टर तो खैर वो इतने बढ़िया नहीं हो पाए, बट सी ट्राई उन्होंने अच्छा किया। लेकिन फिलहाल जो भी आपने गाना सुना ये भी बढ़िया था। आप सभी का इस्तकबाल करते हैं एक बार फिर से, वेलकम बैक है। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 पे, आपकी बातें वही होती हैं भैया जो आपका दिल चाहता है। थैंक यू वेरी मच इतने ब्यूटीफुल मैसेज के लिए, मतलब आउटस्टैंडिंग यार, इतने प्यारे मैसेज आप करते हैं। आपका दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए। थोड़ी देर पहले हम ना आपसे मैंगो के बारे में बात कर रहे थे कि आपको कौन कौन से आम के बारे में पता है, कौन कौन से मैंगो के नाम आप जानते हैं। किसी ने मुझे लिखा है यहाँ पे, हम तो लंगड़ा आम जानते हैं, ओ माय गॉड। किसी ने लिखा है दशहरी आम बहुत फेमस होता है, आनंद जी। एक मैसेज आया था मेरे पास, कलमा आम भी हम खाते हैं। यार इतने सारे नाम तो मेरे को भी नहीं पता है, ये देसी आम भी कोई होता है। अच्छा इन्होंने लिखा है सर देसी आम भी बहुत बढ़िया होता है। भाई सारे देसी होते हैं मेरे को तो ऐसा लगता है यार। एंड एक मैसेज आया था सर, एक जूस बनाने वाला आम अलग होता है और एक खाने वाला आम अलग होता है, मैं आपको बता दूं। अच्छा जी ऐसा भी था क्या यार। अच्छा एक मैसेज आया था मेरे पास, हरू सर आप कलमी आम खाइए आपको बहुत ही मजा आएगा। किसी ने लिखा है जो कौन सा बता रहे थे, ये पता नहीं कोई इन्होंने बताया था, एक दशहरी आम होता है आप उसको खाइएगा। एक आम आता है जो हम चाकू से भी काट के खा सकते हैं। भाई कितने सारे मैसेज आप लोग कर रहे हैं सीरियसली, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, काफी इन्फॉर्मेशन भी आप दे रहे हैं। अच्छा चलो अभी आम की बात हम कर रहे हैं तो आपको बता दूं, आम जो है विटामिन ए और सी का जो है, मतलब इसमें भरपूर मात्रा होती है, इसमें फाइबर होता है, ये बहुत ही बेहतरीन होता है, बहुत ही अच्छा सूत्र माना जाता है इम्यूनिटी के लिए। ये आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, आपकी पाचन क्रिया को सुधारता है, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाता है, आपकी त्वचा में निखार लाने का काम करता है और साथ ही साथ आपके दिल की सेहत के लिए भी काफी हेल्पफुल होता है मैंगो। यस आई एम टॉकिंग अबाउट आम। आम का सीजन चल रहा है, अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो बहुत सारे फायदे होते हैं। आम में मौजूदा विटामिन सी और ए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं जिससे आप बार बार बीमार होने से बचते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया आपका बेटर डाइजेशन करता है मैंगो, इसमें जो है काफी अच्छा फाइबर होता है जो आपकी कब्ज की समस्या को दूर करता है, आंखों के लिए वरदान माना जाता है। यस आई हेल्थ के लिए, आईज हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा। इसमें विटामिन ई होता है, विटामिन ए जो आपकी आंखों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, आपकी आंखों की रोशनी को तेज करने में और आंखों को स्वस्थ रखने में काफी हेल्प करता है मैंगो। यस आम की बात कर रहा हूं भाई। दिल को रखता है सेहतमंद, आम में मैग्नीशियम और पोटेशियम होते हैं जो ब्लड प्रेशर रक्तचाप को नियंत्रण रखने में और आपकी नसों को आराम देने में सहायक होते हैं, काफी हेल्प करते हैं। आपकी स्किन के लिए और आपके वेट के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आप मैंगो का सेवन करते हैं तो ये आपकी त्वचा में निखार लाता है और साथ ही साथ पिंपल्स वगैरह से भी आपको काफी राहत मिलती है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर आप मैंगो खाएंगे तो ये आपको दिक्कत भी कर सकता है, इसीलिए थोड़ा सा लिमिट के साथ है ना कोई भी चीज यार। एंड इसमें विटामिन B6 होता है जो आपके मानसिक स्वास्थ्य और मूड को भी बेहतर बनाने में, यानी कि आपकी याददाश्त को स्ट्रांग करने में भी काफी हेल्पफुल होता है आम। जितना कच्चा आम फायदेमंद होता है ना, आम का पन्ना वना आम पीते हैं, उतना ही पक्का आम भी बहुत फायदेमंद होता है, मतलब पका हुआ येलो येलो। तो ये आम का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। जैसे मैंने आपको आम के बहुत सारे फायदे गिनवा दिए हैं एंड आई एम श्योर अब आप मैंगो डेफिनेटली खाएंगे और आम तो हम सभी का फेवरेट है यार। मुझे कितने सारे मैसेज आए थे, किसी ने लिखा था अलवा आम, दशहरी आम, चौसा आम, एक भाई ने लिखा था ये लंगड़ा आम, किसी ने लिखा केसर वाला आम भी होता है आनंद जी। भाई साहब इतने सारे आम की वैरायटीज आपने बता दी ना, मैं तो जब भी खरीदने जाऊंगा कंफ्यूज हो जाऊंगा, भैया कौन सा वाला है कौन सा वाला है, यही पूछता रह जाऊंगा मैं। भाई इतने सारे मैंगो वैरायटी आपने बता दी, खैर थैंक यू सो मच वंस अगेन। आगे बढ़ते हैं, अब आपसे हम पूछते हैं एक क्वेश्चन, मतलब मैंने हालांकि आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था, रिपीट कर रहा हूँ। इस फादर्स डे आप हमारे साथ ये स्पेशल जगह आ सकते हैं, उसके लिए आपको मुझे आंसर करना है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सलमान खान की एक फिल्म थी जिसमें उन्होंने लव गुरु का रोल किया था। यस बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, वो कौन सी फिल्म है सलमान खान की जिसमें उन्होंने लव गुरु का रोल निभाया था। वो लड़कों को डेट करना सिखाते थे एंड ऑफकोर्स आप में से कई लोगों ने पिक्चर देखी होगी। अगर आपको मूवी का नाम पता है तो आप मुझे इमीडिएटली व्हाट्सएप करेंगे अपने नाम के साथ अपना सही जवाब, उठाएंगे अपना फोन, टाइप करेंगे अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना राइट आंसर, उसको सेंड करेंगे मेरे व्हाट्सएप पर 9837896896 पर। ठीक है, इंतजार है मुझे आपके व्हाट्सएप का और आपके सही सही जवाबों का। मैसेज करके बताओ सलमान खान की वो कौन सी मूवी है जिसमें उन्होंने लव गुरु का रोल किया था। अगर आपको पता है वो मूवी तो आप मुझे इमीडिएटली व्हाट्सएप करेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, हम इंतजार है आपके मैसेजेस का। राइट हियर गुरु रंधावा इन द हाउस, आप इस गाने को सुनिए। वक्त हो गया है 9:55, थोड़ी देर में लौट कर जाऊंगा, मतलब लौट कर आऊंगा, उसके बाद यहाँ से सीधा घर जाऊंगा, मेरे को भी भूख लगा
लगा है अपुन को ब्रेकफास्ट मांगता, लेकिन अभी अपुन नहीं खाता क्योंकि अभी अपुन आपके लिए इधर अच्छी गाने बजाता। फिलहाल के लिए आनंद विद यू, आप सुनिए इस गाने को, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। दिस इज बिंदास मॉर्निंग।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
2: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

यार कसम से मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया, गर्मी बहुत भयंकर है। प्लीज पानी पीते रहिए यार, गर्मी बहुत कड़क वाली हो रखी है। बादशाह जी गर्मी बहुत हो रही है, नहीं नचना।

चलो जी, इस गाने के बाद एक बार फिर से वेलकम है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि वेदर कसम से ना बहुत गर्म है आज का। अगर आप भैया अगर आपसे कह रहे हैं भैया अगर आप जो घर से बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी के साथ निकलिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि कसम से बता रहे हैं गर्मी बहुत तेज है। क्या कह रहे हैं आज सूरज चाचू, जरा देखते हैं क्या टेम्परेचर हो रहा है अभी का, यानी फिलहाल वेदर अपडेट क्या है। तो वेदर अपडेट ये है भैया, अभी जो करंट टेम्परेचर है वो 34 डिग्री है एंड आगे ये 38 तक पहुंच सकता है, यानी कि गर्मी और बढ़ेगी। एंड अगर हवा की बात करूँ तो 3 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से आज हवाएं चलने वाली, यानी कि बहुत हल्की हल्की हवाएं चलेंगी, इनमें आप बिल्कुल नहीं उड़ पाओगे। ह्यूमिडिटी बहुत ही सही दिखा रहे हैं पाजी। वेदर क्वालिटी आज थोड़ी सी, मतलब एयर क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी नहीं है यार। तो अगर आप मास्क वूक्स लगा के निकल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। विजिबिलिटी ठीक ठाक है, बाकी वेदर कह सकते हैं कि गर्मी वाला होने वाला है। तो इसी वाले मौसम में जो है ना, आपने लस्सी, छाछ और नींबू पानी, नारियल पानी और मैंगो शेक, इन सब का सहारा लेते रहिए। फिलहाल स्टेशन की घड़ी में वक्त हुआ है 10:03। अभी मैं लेता हूं आपसे जाने की इजाजत। इस संडे फादर्स डे भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस संडे देखिए इंटरनेशनल योगा डे है, इस संडे वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है एंड हम लोग फादर्स डे भी मना रहे हैं। तो फादर्स डे पे कोई एक लकी विनर मेरे साथ, यानी हमारे साथ मूवी पे जा सकता है फादर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए। कैसे कैसे कैसे बताऊंगा ना। मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा था आप मुझे मैसेज करके बताओ जरा सलमान खान की उस फिल्म के बारे में जिसमें उन्होंने लव गुरु का रोल प्ले किया था। वो कौन सी फिल्म है जिसमें वो लव गुरु बने थे और लोगों को डेट करने की सलाह देते थे, यही मैं आपसे पूछ रहा था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही धाकड़ आंसर्स आप लोगों ने किए हैं भाई साहब, समझ नहीं आ रहा किसको सिलेक्ट करें, और सारे एकदम कड़क जवाब हैं। इतने बड़े फिल्मी शिल्मी हैं हमारे मुरादाबादी, आपको तो बॉलीवुड में होना चाहिए यार, सबको तगड़ी नॉलेज है बॉलीवुड की। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे बिंदास मॉर्निंग। चलिए वक्त है उस बात को आपके सामने रखने का, आई मीन उस लकी विनर का नाम घोषित करने का जिसके बारे में बहुत देर से बात हो रही थी। तो आज मैंने जो आपसे सवाल किया था कि सलमान खान की कौन सी फिल्म है जिसमें उन्होंने लव गुरु का रोल निभाया है, इसका जवाब मेरे पास सबसे पहले सही पल्लवी ने पहुंचाया है। जोरदार तालियां पल्लवी जी, कंग्रेचुलेशन। मानसरोवर से आपने मुझे मैसेज किया है गोकुल डेरी के सामने से, कंग्रेचुलेशन, आज की विनर आप बनती हैं। जोरदार तालियां, हो सकता है इस संडे आप मेरे साथ, यानी कि हमारे साथ आए फिल्म देखने के लिए एंड अपना फादर्स डे हमारे साथ मनाएं, और आपको हमारी तरफ से डेफिनेटली कॉल्स आएगा, सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। बस आप ऐसे ही सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। बाकी लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, जोरदार तालियां, थैंक यू सो मच। ये मूवी टिकट्स और ये मूवी वाउचर्स आपको मिलते रहेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए एंड इस फादर्स डे को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। बहुत सारी बातें होंगी अभी, आरजे खुशी भी आपके साथ ढेर सारी बातचीत करेंगी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। बाकी जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनका नाम लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विनर का खिताब है मेरे भाई। देखो शबीना खान जी जुड़ी थी रहमत नगर से, इन्होंने एकदम सही जवाब दिया था, थैंक यू शबीना जी। पार्टनर मूवी इज द राइट आंसर एब्सोल्युटली। और देखिए गुड मॉर्निंग पहुंचा रहे थे डॉक्टर सुरेश जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं सही जवाब के साथ। रिजवान खान साहब जी जुड़ गए हैं आज हमारे साथ सुबह सुबह, गुड मॉर्निंग।

0: थैंक यू सो मच रिजवान भाई जुड़ने के लिए। और मेरे पास बबली अनजान गीता कश्यप जी का मैसेज आया है, एकदम सही जवाब इन्होंने लिखा है। आनंद जी वेरी गुड मॉर्निंग, आपने जो भी तमिलनाडु की इन्फॉर्मेशन दी बहुत अच्छी लगी। और मुरादाबाद से रणवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनको बहुत ही अच्छी लगी हमारे प्रोग्राम में इन्फॉर्मेशन और इन्होंने सही जवाब भी दिया है। हमारे साथ नासिर हुसैन जी जुड़े हैं, लिखते हैं आनंद पाजी गुड मॉर्निंग, आपकी पहेलियां फिल्मी गाने डायलॉग्स जवाब सवाल जो आप करते हैं उसका अंदाज मुझे बेहद पसंद आता है। आपकी प्रस्तुति श्रोताओं को हमेशा जोड़ के रखती है, आप जो गाने प्ले करते हैं वो एकदम शानदार होते हैं, हर बात जो है आपकी दिल को छू जाती है और इन सब के पीछे आपकी मेहनत तैयारी और समर्पण साफ दिखाई देता है। आपका कार्यक्रम जो है काफ़ी अच्छा होता है और हमें काफ़ी इंटरटेनमेंट का डोज देता है, नई नई इन्फॉर्मेशन आपके शो से मिलती है। और मेरी पूरी एफएम मुरादाबाद परिवार की ओर से और पूरे एफएम मुरादाबाद शहर की ओर से आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। और ये लिखते हैं आप जिस मुकाम तक जाना चाहते हैं उस मुकाम तक आप जरूर पहुंचेंगे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपकी आवाज और ये बेहतर अंदाज यूं ही लोगों को एंटरटेन करता रहेगा और आप ऐसे ही लोगों के दिलों में जगह बनाते रहेंगे। ओ माई गॉड क्या लाइनें लिखी है यार, नहीं मुझे कोई फंडा नहीं आता, मैं दिल से दिल तक जुड़ता हूँ। वाई द वे ये मैसेज आया था मेरे पास गली नंबर 1 रहमत नगर से, थैंक यू नासिर भाई। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है जिला मुरादाबाद से, हाय गुड मॉर्निंग उस्मान टेलर जी, थैंक यू सो मच सही जवाब के लिए। लक्ष्मी जी आपका भी शुक्रिया। एंड बाबू अंसारी साहब जुड़े थे रहमत नगर छप्पर वाली मस्जिद से सही जवाब के साथ। एंड हमारे पास मैसेज आ रहा था रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से अर्षित अवंतिका जी का। एंड नॉनेश कुमार जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। इसके अलावा हमारे पास मैसेज पहुंचा था गुड मॉर्निंग, हाय माय नेम इज कासिम अली, हाय कासिम गुड मॉर्निंग, और इन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया है आज की सुबह गुड मॉर्निंग। मुझे सारे फंडे हैं आते हैं। और एक वॉइस नोट मेरे पास आया था, ये अलका जी का वॉइस नोट था, सुनते हैं।
1: राधे राधे राधे राधे जी, सलमान खान ने पार्टनर मूवी में लव गुरु का रोल निभाया था, राधे राधे
0: राधे राधे। थैंक यू अलका जी, थैंक यू अलका जी, ये तालियां आपके लिए। बिल्कुल आप भी काफी एक्टिव रहती हैं, मतलब पूरा हिंदुस्तान घूमने के साथ पूरे देश विदेश की यात्रा करने के बाद जो है इनकी नॉलेज बॉलीवुड में काफी तगड़ी हो गई है। थैंक यू अलका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रिहाना जी जुड़ी हैं एंड गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। दुर्गेश सैनी जी कल्याणपुर मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे स्टेशन पर। ढेर सारे मैसेज आपके आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां, थैंक यू सो मच। अब लेता हूं आपसे जाने की इजाजत, 10:08 हो रहे हैं, 10 बजे तक का टाइम होता है लेकिन 10:10 हो ही जाते हैं मेरे को यार, यहाँ पे मोहब्बत है आपकी, हाय हाय हाय,
2: मुझे सारे फंडे हैं,
0: क्या बात है।
2: लोग किस तरह लड़की पटाते, तूने आंखों से नींद उड़ा दी, सोई सोई सी धड़कन।
0: कुछ टेक्स्ट मैसेज आए थे, हेलो जी गुड मॉर्निंग नेहा स्वाति जी गुड मॉर्निंग। एक और व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया है गुड मॉर्निंग सर, हाय गुड मॉर्निंग। टेक्स्ट मैसेज पे भी व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज दोनों साथ साथ आ रहे हैं यार। देखो आपने जो टेक्स्ट किए उसके लिए शुक्रिया, जो व्हाट्सएप किए उसके लिए भी दिल से थैंक यू। आगे आगे आप सुनते रहिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खूब सारा पानी पीते रहिए और ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास। आनंद कहता है साइनिंग ऑफ, बाय बाय।

0: हरियाली से सजे हर गांव शहर,
1: प्रकृति संग खुशियों की लहर।
2: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
4: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपकी अपनी खुशी। दोस्तों, आज की प्यारी सी थर्सडे मॉर्निंग है, एक नई उम्मीद, नई मुस्कान और एक नए हौसले के साथ हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। हाँ, मौसम गर्म है, धूप भी अपने पूरे तीवर में है, लेकिन याद रखिए धूप जितनी तेज होती है छांव की कीमत उतनी ही ज़्यादा समझ आती है। इसलिए गर्मी से घबराइए मत, बस अपना ख्याल रखिए, भरपूर पानी पीजिए, हल्का भोजन खाइए और चेहरे की मुस्कान कभी कम मत होने दीजिए। दोस्तों, मौसम चाहे कितना भी गर्म क्यों ना हो, अगर मन में उम्मीद की ठंडी छांव हो तो हर दिन खूबसूरत बन जाता है। मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी मुस्कान किसी और के लिए, जी हाँ, किसी और के दिन की रोशनी बन सकती है। और मैं आपके साथ आपकी अपनी खुशी करेंगी बहुत सारी बातें एंड बहुत सारा एंटरटेनमेंट, बहुत सारा फन हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए। और आज क्या स्पेशल है वो सब आपको पता लगेगा Only on FM मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुन गुनाते रहिए, क्योंकि दोस्तों खुश रहने का मौसम हमेशा आपके दिल में होना चाहिए। और वक्त हुआ है 10:20, तारीख है आज 18 जून की, दिन है बहुत ही खूबसूरत सा गुरुवार का। जी हाँ, थर्सडे का दिन है बहुत ही खूबसूरत सा। और क्या कुछ स्पेशल है सब आपको पता लगेगा धीरे धीरे, अभी तो मैं आई हूँ। दोस्तों, आप भी अपने हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपना मैसेज यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: और एक अमेजिंग ट्रैक मैं आप सभी के लिए यहाँ पर प्ले कर रही हूँ। बस आप कहीं मचाइए, यूं ही मुस्कुराते रहिए और अपने संदेश हमें पहुँचाते रहिए। एवरीवन, मुझे पता है आप ब्रेकफास्ट कर लिया है आपने, और अभी आप क्या कर रहे हैं राइट नाउ? कुछ तो आराम से बैठे हैं, कुछ नाश्ता कर रहे हैं, और कुछ अभी घर के कामों में व्यस्त हैं कि चलिए जल्दी से साफ़ सफाई कर लेते हैं फाइनली, पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। और कुछ तो आराम से बैठ कर रेडियो सुन रहे हैं, है ना? चलिए अच्छी बात है, एंजॉय कीजिए आप ये प्यारे सी गाने। मैं लौट कर आती हूँ बस अभी।
1: हम लोग ट्रोल,
2: बट व्हाई इट्स आइकॉनिक
1: फिल्म में हमारे
2: सेइंग नाउ यू गेट
1: ट्रोल हो जाएंगे, मत करो।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
3: अरे तुम्हारे भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
1: अरे तो परेशान क्यों होना, है ना धानिया नर्सिंग होम। यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और अभी आपने ये अमेजिंग ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी अखियों से गोली मारे, सोनू निगम साथ में जसविंदर नरोला की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में। ये इश्क का जादू है सर चढ़ के बोलेगा। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ दोस्तों, हमारे हिसाब से ये एफएम मुरादाबाद 89.6 का भी कुछ ऐसा ही जादू है जो एक बार सुन लेना फिर दोबारा सुने बिना नहीं रह पाता है। अच्छे गाने, प्यारी बातें और आप सबका साथ, यही तो है हमारी रेडियो की असली जादू। जी हाँ, जो मैजिकल है, लाइक वो एफएम मुरादाबाद ऐसा मैजिक है जब एक बार जो इंसान सुन लेता है ना, वो दोबारा रह ही नहीं पाता बिना सुने। पर ये जादू बड़ा ही कमाल का है ना दोस्तों। अभी वक्त हुआ है 10:32 और मैं आपके साथ आपकी खुशी लेकर हाजिर हूँ, आप सभी का फेवरेट शो, जी हाँ, मॉर्निंग मसाला।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

गुड मॉर्निंग माय डियर लिस्टनर्स, कैसे हैं आप? अच्छे ही हैं, मुझे मालूम है आप सब गुड हो, हैप्पी हो। और फटाफट से स्पीड में आप मैसेज टाइप करने में बिजी हो, मैं जानती हूँ। दोस्तों, ये है आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपकी खुशी। दोस्तों, आज इंटरनेशनल पिकनिक डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसी से कनेक्ट किया हुआ मैंने ये सवाल आपसे पूछा है। दोस्तों, आप मुझे बताइए, क्या आप कभी अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ पिकनिक पर गए हैं? ऐसी कौन सी जगह है जिसने आपके दिल को जीत लिया? जी हाँ, जहाँ हरियाली, ठंडी हवाएं, खूबसूरत नज़ारा या अपनों के साथ बिताए हुए वो पल आज भी याद आते हैं और मन करता है कि बस एक बार फिर वहीं चले जाएं। हो सकता है वो कोई पार्क हो, पहाड़ों की वादी हो, या फिर किसी झील का किनारा हो, या फिर आपके शहर की कोई खास जगह। बताइएगा आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कहाँ पर गए हैं पिकनिक सेलिब्रेट करने के लिए। फटाफट से मैसेज कीजिएगा, नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। अब आप इतना सोचिए मत, अपना संदेश पहुँचा ही दीजिएगा। एंड यहाँ पर कुछ और खूबसूरत मैसेज आए हैं, मैं उनको क्विकली शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है अयूब जी का रामपुर से और ये कहते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। ये मैसेज हमारे पास आया है रहमत नगर छपर वाली मस्जिद से बाबू अंसारी जी का, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं शाद अंसारी जी, शारिक अली जी, महराज अंसारी जी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है बबलू सैनी जी का, दुर्गी सैनी जी का, गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं, जय श्री राम। खुशी मैम आपको भी जय श्री राम। और ये अपना मैसेज हमें पहुँचाते हैं कल्याणपुर मुरादाबाद से। एंड उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है पिकी सागर जी का और ये हमें गुड मॉर्निंग विश करते हैं खुशी, फिर गुड मॉर्निंग आपको भी सर। इन्होंने एक प्यारे से ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, पूरी कोशिश करेंगे इसको प्ले करने की। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, ये मैसेज हमें भेजा है, मैम कितनी भी जल्दी जवाब दे दो लेकिन आप बहुत देर से नाम लेती हैं। ओहो, ये मैसेज हमारे पास आया है सुरेश कुमार जी का। एंड अभी तो आप हैप्पी हैं ना, देखिए हमने जल्दी से आपका नाम ले लिया है। एंड दोस्तों, आप भी मुझे अपने मैसेज पहुंचाएगा, नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। और एक अमेजिंग ट्रैक हम सुनने वाले हैं यहाँ पर पिकी सागर जी की पसंद पर। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा हरनूर की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में ये प्यारा सा ट्रैक।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, आज हम याद कर रहे हैं भारत के उस महान खिलाड़ी को जिनका नाम सुनते ही हौसले, मेहनत और जीत की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। आज उनकी पुण्यतिथि है और हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी की। जी हाँ दोस्तों, मिल्खा सिंह जी का जन्म पंजाब में हुआ था। बचपन में उन्होंने देश के बंटवारे का दर्द झेला, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को अपनी ताकत बनाया और दौड़ की दुनिया में ऐसा इतिहास रचा कि पूरा विश्व उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। उन्होंने एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए कई स्वर्ण पदक जीते। वर्ष 1958 में वे कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बने। उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। हालांकि 1960 के रोम ओलंपिक में वे पदक से बहुत कम अंतर से चूक गए, लेकिन उनका संघर्ष, अनुशासन और देश के लिए समर्पण आज भी हर युवा खिलाड़ी को प्रेरित करता है। मिल्खा सिंह जी कह रहे थे कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें नमन करते हैं और अपने जीवन में यही संकल्प लें कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हम अपने सपनों का पीछा करना कभी नहीं छोड़ेंगे। मिल्खा सिंह जी को भावनी श्रद्धांजलि एफएम मुरादाबाद की ओर से। और अब एक सुनते हैं प्रेरणादायक सॉन्ग। दोस्तों, अभी समय हुआ है 10:59 और आपकी जो यहाँ पर संदेश आए हैं, मैं उनको भी शामिल करूंगी।

बस लौट कर आती हूँ मैं, आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराती रहिए, रेडियो बजाती रहिए, गाने गुनगुनाते रहिए। और हाँ, जो भी आपका ड्रीम है, आप जो भी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, जो भी आपने अचीव करने का सोचा है, लाइक सब चीज़ आपको मिल जाएगी दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यू मेहनत करनी है और हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है, खुद पर विश्वास रखना है। जब आत्मविश्वास स्ट्रांग होता है ना, तो हर इंसान अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचता है। तो बस यूं ही अपने हौसले को, अपने जुनून को बरकरार रखिए। और एक गीत के बाद मैं लौट कर आती हूँ, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मिलती हूँ मैं अभी आपसे

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
6: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और आप तो जानते ही हैं शो चल रहा है आप सभी का फेवरेट मॉर्निंग मसाला। जी हाँ, आपकी मॉर्निंग को अमेजिंग बनाने के लिए यहाँ पर एवरी डे खुशी आती है मंडे टू फ्राइडे। और यहाँ पर खूबसूरत हमारे श्रोताओं के मैसेज भी आ रहे हैं। जो अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, जी हाँ, आज इंटरनेशनल पिकनिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप कभी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ कहीं पिकनिक पर गए हों बाहर, एंड उस जगह ने आपके दिल को मोह लिया हो। लाइक आप जब वहाँ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, दोबारा भी वहाँ पर जाना चाहिए, इतना खूबसूरत नज़ारा है। तो हमारे पास बड़े इंटरेस्टिंग से बहुत प्यारे प्यारे हमारे श्रोताओं के जवाब आए हैं, तो चलिए मैं उनको जल्दी से शामिल करती हूँ। एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है नवीन नगर मुरादाबाद से ललिता कश्यप जी का, और ये कहती हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। एंड ये कहती हैं, आपने मैम जो सवाल पूछा है ना, उससे हमारी पुरानी यादें वापस आ गई हैं। अच्छा जी, ये कहती हैं, पापा जी मम्मी जी के साथ हरिद्वार घूमने के लिए जाया करते थे, एंड मम्मा खाना बनाकर लेके जाती थी, और इन्होंने कहा है कि पापा जी स्टेशन से आम खरीदते थे और फिर हम गंगा जी के किनारे बैठकर खाते थे। ओके, अच्छा, इन्होंने कहा कि गंगा जी के घाट पर पहले हम गंगा जी में स्नान किया करते थे और उसके बाद हम आराम से खाना खाया करते थे, और शाम की गंगा आरती देखकर रात वाली ट्रेन से वापस लौट कर आ जाया करते थे। अरे वाह, क्या बात है, गंगा जी के किनारे बैठना एक अपने आप में अलग ही एक आनंद की अनुभूति होती है, बहुत ही सुकून मिलता है और रात का नज़ारा बहुत प्यारा होता है। एक्चुअली मैं भी हरिद्वार काफ़ी बारी गई हूँ, और वहाँ जाने के बाद बहुत ही अच्छा फील होता है। सुबह सुबह 4 बजे उठ के गंगा स्नान करना और सुबह की गंगा आरती, इवनिंग की गंगा आरती, बहुत ही आनंद आता है। जब इतने सारे श्रद्धालु एक साथ गंगा माँ का मतलब जयकारा लगाते हैं तो कितना खूबसूरत लगता है ना, ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान धरती पर ही आ गए हों, और बहुत ही पॉजिटिव वाइब आती है, इतना प्यारा वातावरण होता है ना वहाँ का, मेरा दिल ही नहीं करता वहाँ से आने का। और अभी हम भी सोच रहे थे प्लान करने का कि हरिद्वार जाएंगे, बट अभी पता नहीं क्योंकि काम इतने ज़्यादा हैं, तो देखते हैं जब वक्त मिलता है तो ज़रूर जाएंगे। वैसे जाना चाहिए, जब हम अलग अलग जगह जाते हैं ना, एक्सप्लोर करते हैं तो अच्छा लगता है और माइंड भी फ्रेश होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं और अब फैमिली को भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये हमें कहाँ से पहुँचाया है, भूमि जी ने लाइन पार से मैसेज हमें पहुँचाया है। कहती हैं, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, आज तो आपकी आवाज़ बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा, रोज़ अच्छी नहीं लगती है, आज अच्छी लग रही है, ओहो। अच्छा, ये बताओ रोज़ कैसी लगती है आपको हमारी आवाज़, आज अच्छी लग रही है, रेगुलर कैसी लगती है, बताइए भूमि, हम आपसे जानना चाहते हैं। और ये कहती हैं, हम तो वैसे कभी कहीं फ्रेंड्स के साथ नहीं गए हैं, फैमिली के साथ, बट अब हम सोच रहे हैं कि खुशी मैम को हम साथ लेकर जाएं घुमाने के लिए कहीं। अरे वाह, वेरी गुड, चलिए हम कहाँ लेकर चलने वाले हो आप घुमाने के लिए, हम घूमने के लिए तैयार हैं, आप चलो लेकर हमें। और ये हमें मैसेज पहुँचाती हैं भूमि जी लाइन पार से। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है नई मूल अक्रम जी का, सिरसवा दोराहा से, और ये हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट हमें थैंक यू बोला है यहाँ पर विकी सागर जी ने हिमगिरी मुरादाबाद से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग बबली अनजान जी, साथ में गीता कश्यप जी का मैसेज हमारे पास आया है। एंड उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है ग्राम बीजना से, ये हमें मैसेज पहुँचाते हैं रिजवान खान जी, और कहते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। अच्छा लगता है जब एवरी डे आप सब अपने संदेश पहुंचाते हैं हमें, तो चलिए दोस्तों कुछ और अभी गीत सुनते हैं, उसके बाद और भी जानकारियां हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, क्या कुछ खास है सब आपको धीरे धीरे पता लगेगा, बस आप यूं ही बने रहिए, जुड़े रहिए ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए। देखिए अभी इतने प्यारे प्यारे मैंगो फ्रूट्स मार्केट में आ चुके हैं। जी हाँ, मैंगो, आप मैंगो का लाइक मैंगो शेक बना सकते हैं, मैंगो को खा सकते हैं और अचार बनाने का भी आता है ना, बहुत सारे अचार भी बनता है उससे। लाइक और क्या बनता है, हाँ चटनी बनती है ना एक मीठी आम की, वो भी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। मैंने खाई है, एक दो बार ही खाई है बट बहुत अच्छी लगती है। आपने खाई है? बताओ मुझे दोस्तों। अच्छा, कभी आप सोचते होंगे ना कि खुशी जी कैसे सवाल पूछ लेती हैं। देखिए मेरे जो मन में सवाल होते हैं ना, जो मेरे दिल में चलता है वो मेरी ज़ुबान पर होता है। तो जो मतलब खुशी ना कुछ बातें छिपाती नहीं है, उसकी मन में जो आता है वो डायरेक्टली पूछ लेती है। और मुझे लगता है कि अगर मन में कोई सवाल है ना तो उसे छिपाना नहीं चाहिए, जो भी है वो मालूम करना चाहिए, है ना। क्योंकि ये रहता है ना, फिर अफसोस होता है बाद में कि ओहो ये सवाल मैंने क्यों नहीं पूछा, ये बात मैंने क्यों नहीं मालूम की। तो उससे अच्छा है कि जो भी है डायरेक्टली पूछ लेना चाहिए। नो टेंशन नो ड्रामा, ओनली FM मुरादाबाद 89.6 को है बजाना। तो चलिए ये गाना सुनिएगा, मैं लौट कर आती हूँ अभी।
1: थोड़ी देर नीचे चलते हैं ना, बटुक अंकल बुरा मान जाएंगे। चलिए ना।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अशोर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
7: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और साथियों, समय की अगर बात करें तो वक्त हुआ है 11:25 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। दोस्तों, इतिहास के कुछ नाम सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। ऐसे ही एक नाम है झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी। आज 18 जून को हम उनके बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई उस दौर में जब महिलाओं को घर की चौखट तक सीमित माना जाता था, तब घोड़े पर सवार होकर हाथों में तलवार उठाई और अंग्रेजों के सामने अद्भुत साहस का परिचय दिया। उन्होंने अपने छोटे से पुत्र को पीठ पर बांधकर और मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक युद्ध किया। उनका वह अमर वाक्य मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी आज भी हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की लौ जगा देता है। रानी लक्ष्मीबाई हमें सिखाती हैं कि हिम्मत, आत्मसम्मान और देश प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। आज उनके बलिदान दिवस पर हम सभी उस वीरांगना को शत-शत नमन करें और अपने देश, अपने कर्तव्य और अपने संस्कारों के प्रति हमेशा ईमानदार रहें। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये पंक्ति आज भी अनेक अदम्य साहस की कहानी सुनाती है। रानी लक्ष्मीबाई जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं।

और दोस्तों अभी मैं लौट कर आती हूँ खूबसूरत से गीत की उस पार। तब तक आप भी अपने संदेश हमें पहुँचाएगा, नंबर है 9837898696।

हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों देखिए, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि छाता साथ लेकर जाएं, कैप ओढ़ कर जाएं एंड कैप को पहन के जाइए एवरीवन। और खुशी आपसे कहते हैं कि पानी की बॉटल हमेशा अपने पास रखें, प्यास लगे तो भी पानी पीजिए, अगर नहीं लगे तो भी पानी पीजिए, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़रूरी है। एंड आप जूस वगैरह भी ले सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, वो भी आपको काफ़ी राहत देगा गर्मी में। और आप नींबू पानी पी सकते हैं, वो भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। और छाता बिल्कुल भी ना भूलें घर से ले जाते निकलते वक्त। जी हाँ, जब आप घर से बाहर जाएं तो छाता लगा के जाइए ताकि आप धूप से बच सकें। एंड सनस्क्रीन भी ज़रूर लगाइए, ये बिल्कुल भी लगाना मत भूलिए। देखिए, हम चाहते हैं कि आपकी हेल्थ एकदम फिट एंड फाइन रहे, बनी रहे और आपकी जो स्किन है वो ऐसे ही ग्लो करती रहे। तो दोस्तों, अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर कुछ और खूबसूरत संदेश आए हैं, मैं उनको भी शामिल करती हूँ। हमारे पास टेक्स्ट मैसेज आए हैं यहाँ पर, और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है ममता जी का चंदन नगर से, ये हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाती है। राधे राधे आपको भी। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है कार्तिक गुप्ता का, और ये कहते हैं मैम बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग कार्तिक। गर्मी हो रही है तो घर से बाहर मत जाइए बेवजह, और अगर कोई काम है तो सेफ्टी के साथ बाहर जाइए, अन्यथा घर पे ही विश्राम करो, ज़्यादा बेस्ट है यार, क्योंकि हेल्थ अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। और कोई काम है तो जाओ, क्योंकि मजबूरी में इंसान को जाना पड़ता है, लेकिन जब कोई काम नहीं है तो बेवजह क्यों घूमेंगे धूप में। हाँ दोस्तों, अपने घर पर आराम करो, अच्छे से रहो पंखे में। और अगर आप धूप में हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप पानी पीते रहिए एवरीवन, बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और जो इस समय मुझे ऑन द वे कार में सुन रहे हैं एंड उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप केयरफुली ड्राइविंग कीजिएगा, सीट बेल्ट ज़रूर बांध लीजिए। और आपसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगी कि आप भी पानी पी लीजिएगा। दोस्तों अभी यहाँ पर वक्त हुआ है 11:37 एंड और हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज आए हैं तो मैं उनको भी क्विकली शामिल करती हूँ, क्योंकि सभी सब्री से इंतज़ार कर रहे हैं बहुत देर से कि खुशी जी ने अभी हमारे मैसेज शामिल नहीं किए हैं। तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिए, पेशेंस बहुत ज़रूरी है एवरीवन। एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है रणवीर सिंह जी का मुरादाबाद से, कहते हैं हेलो गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। कहते हैं गम को डिलीट करो, खुशी को सेव करो और एफएम मुरादाबाद सुनते रहो। अरे वाह क्या बात है सर। कहते हैं कि दुनिया भर में आम की 1500 से ज़्यादा किस्म, अच्छा किस्म के आम उगाए जाते हैं। ओके, जिनमें से अकेले भारत में 1000 से अधिक प्रकार के आम पाए जाते हैं। मुरादाबाद से रणवीर जी ने ये हमें इन्फॉर्मेशन दी है, थैंक यू सो मच सर। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर इन्होंने भेजा है, ये कहते हैं कि एफएम मुरादाबाद हम रेगुलर सुनते हैं, हाँ जी हमारी आपसे बातचीत होती है, बहुत अच्छा लगता है सर। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है कि 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महान नायिका रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 को ग्वालियर के युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई हो गई थी। एंड आज उनकी पुण्यतिथि है और उन्हें हम शत नमन करते हैं अपनी देश की वीरांगना को, क्योंकि दोस्तों उन्होंने ही हमें यू नो एक हिम्मत दी है। क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था कि लड़कियों को बाहर निकलने के लिए परमिशन नहीं थी कि नहीं आप घर पर ही रहोगे, बाहर नहीं जाओगे। लेकिन जब हमारे देश की बहुत महान महिलाएं रही हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत संघर्ष किया है, लड़कियों को आगे बढ़ाया है, पढ़ाने के लिए, हर चीज़ के लिए। और मुझे लगता है कि देखिए एंड पहले के टाइम में और अब के टाइम में भी लड़कियां पहले करती थी, लड़कियां बहुत आगे बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब तो इतना नहीं है। एंड अब हर क्षेत्र में लड़कियां हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर बराबर चल रही हैं, हर फील्ड में हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं। तो मैं सल्यूट करती हूँ, सलाम करती हूँ पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली को करना चाहूँगी, क्योंकि परिवार की सपोर्ट के बिना बच्चा आगे नहीं बढ़ता। और जब परिवार साथ खड़ा होता है तो हिम्मत दो गुनी
और ज्यादा हो जाती है। तो मैं भी कहना चाहूंगी जो आपकी बच्चियां हैं, डॉटर हैं, उनको पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। जो भी उनके सपने हैं उनके साथ आप सपोर्ट कीजिए। बच्चा बहुत कुछ करना चाहता है, जब अपनों का साथ मिल जाता है तो वो फिर आसमान छूने की ताकत रखता है। एंड अगला मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, ये कहते हैं आरजी खुशी जी को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, लाजवाब प्रस्तुति, शानदार प्रोग्राम। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं अजीत कसाना जी, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं, ग्राम पोस्ट लदावरी से अपना मैसेज पहुंचाते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी कुछ खूबसूरत गीत सुनते हैं, उसके बाद हम आपसे फिर से कनेक्ट करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए, सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए।

0: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
5: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
4: पर पापा।
5: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
6: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको

0: सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।

क्या बात है दोस्तों, अमेजिंग ट्रैक आपने सुना, बहुत ही प्यारा सा फ्रॉम द मूवी एक रिश्ता। एंड इस ब्यूटीफुल ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी ललिता कश्यप जी ने, और हमारे पास यहाँ पर कुछ और खूबसूरत मैसेज आ गए हैं। ये मैसेज हमें मिला है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, और साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं शहीद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी, और ये हमें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। सर वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर, कहते हैं आपका शो सुन रहे हैं, अच्छा लगता है, थैंक यू सर। इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट भेजी है, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और कुछ भी याद आता है, तो ये प्यारा सा ट्रैक हम सुनवाएंगे। एंड एक मैसेज और हमारे पास आया है राधिका का, और ये कहती है मैम मैं तो अपनी नानी मामा मामी जी के घर जाती हूँ। ओके, अच्छी बात है, जाना चाहिए। एंड एक मैसेज और हमारे पास यहाँ पर आया है संदीप सागर जी का, ग्राम सहल जिला मुरादाबाद, गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं ये, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आराध्या का आया है, और ये मैसेज हमें पहुँचाती हैं प्रकाश नगर से, कहती हैं मैम कैसे हैं आप, मैम तो हमेशा अच्छी रहती हैं। एंड दोस्तों वेल इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय, लेकिन याद रखिए लाइफ में खुश रहने का सबसे आसान फॉर्मूला है छोटी छोटी बातों में हैप्पीनेस ढूंढना, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताना, और हर दिन को एक फ्रेश बिगनिंग की तरह अपनाइए, क्योंकि स्माइल बिल्कुल फ्री होती है लेकिन इसकी वैल्यू अनमोल होती है। सो कीप शाइन, कीप स्माइलिंग एंड कीप रॉकिंग पॉजिटिविटी के साथ। अब मैं इसी प्यारी सी बातों के साथ, पॉजिटिव बातों के साथ अब आपसे लेती हूँ जाने की अनुमति, लेकिन आप सुनते रहिएगा फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और यूं ही अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, मिलूंगी मैं आपको सी यू सून 3 से 5, तब तक के लिए आप बने रहिएगा ऑनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पर। एवरीवन, कुछ प्यारे से गीतों के बाद यहाँ पर आपके लिए कुछ हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर हम एपिसोड प्ले करते हैं एवरी डे, जो आपकी हेल्थ से जुड़े होते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं को गानों के साथ साथ बहुत सारी जानकारियाँ मिलें, चाहे हेल्थ से जुड़ी हुई हो, करियर से जुड़ी हुई हो, या फिर बॉलीवुड से कनेक्टेड हो, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पर। तो एवरीवन, अब मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। बाय बाय, नमस्कार, कीप स्माइलिंग एवरीवन। जब आप सब मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहा कीजिए। ओके okay?

0: साथी प्रस्तुत कर रहे थे लोक संगीत रागिनी। गायन में सहयोग कर रहे थे जयबीर सिंह, ब्रजेश कुमार और अमित यादव। और आपके गीतों को संगीत से सजाया हारमोनियम पर बीर सिंह, ढोलक पर लेखराज, नगाड़े पर बबलू, बैंजो पर लोकेश और ऑक्टोपैड पर देवेंद्र।
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: के साथ करेंगे जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी

पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की दो राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नागपुर के अंबा झारी स्थित आयुध कारखाने में यंत्र इंडिया लिमिटेड की 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड घटकों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से हुई। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराया। इसके अलावा भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, और ये कार्यक्रम है आपका अपना पसंदीदा शो, अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई, और मैं हूँ आपका दोस्त RJ आनंद। आज की बात बहुत जरूरी है क्योंकि आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। श्रोताओं, ये एक
1: किशोरों को निशाना बना रहे हैं
0: जिसमें धीरे धीरे इंसान खुद ही फंस जाता है बिना ये समझे कि वो किसकी तरफ जा रहा है।
1: बिल्कुल, यही सच्चाई है। कंपनियां बहुत सोच समझकर ऐसे रंग, फ्लेवर और पैकेजिंग तैयार करती है जो खासकर बच्चों और युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। उन्हें ये महसूस कराया जाता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक बार ट्राई कर लो, दोस्तों के साथ मजा आएगा, स्टाइलिश लगेगा। लेकिन असल में वही से लत लगनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे शरीर निकोटीन की आदत हो जाती है और ये सिर्फ चॉइस नहीं रह जाती है, ये एक जरूरत बन जाती है। इंसान चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाता और कोशिश और शरीर और दिमाग दोनों इसकी मांग करने लगते हैं।
0: ठीक है भाभी, अगर हम अपने देश की बात करें, भारत में ये समस्या कितनी बड़ी है? क्या ये सच में इतनी फैल चुकी है जितना हम सुनते हैं?
1: हाँ भैया, भारत में स्थिति काफी चिंताजनक है। करीब हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी रूप में तंबाकू का इस्तेमाल करता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां खैनी, गुटखा, बीड़ी जैसे स्मोकर्स और सस्ते तंबाकू उत्पाद ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। और सबसे दुखद बात तो ये है कि हर साल लगभग 10 से 12 लाख लोगों की मौत सिर्फ तंबाकू के कारण होती है। जरा सोचिए ये संख्या कितनी बड़ी है, और इसमें सिर्फ वही लोग शामिल नहीं हैं जो तंबाकू लेते हैं, बल्कि वो भी शामिल हैं जो दूसरों के धुएं के संपर्क में आ जाते हैं।
0: मतलब जो खुद तंबाकू नहीं लेते वो भी इस खतरे से बच नहीं पाते।
1: इसे हम सेकंड हैंड स्मोक कहते हैं। अगर घर में या आसपास कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो तंबाकू लेता है तो उसका असर काफी बाकी सभी लोगों पर भी पड़ता है। खासकर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। बच्चों में सांस की बीमारी बढ़ जाती है, बार बार खांसी जुखाम होता है। महिलाओं में कमजोरी और गर्भ अवस्था के दौरान गंभीर समस्याएं हो सकती, यानी व्यक्ति की आदत पूरे परिवार की सेहत पर भी भारी पड़ सकती है।
0: भाभी, लेकिन लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम तो बस थोड़ा बहुत लेते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या इसमें कोई सच्चाई है या ये भी एक गलत फहमी है?
1: नहीं, ये पूरी तरह से एक भ्रम है और बहुत खतरनाक भ्रम है। तंबाकू का कोई भी रूप सुरक्षित नहीं होता, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो या कोई नया निकोटीन प्रोडक्ट। हर रूप शरीर को नुकसान पहुंचाता है, इससे कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, खासकर मुंह, गले और फेफड़ों का कैंसर। इसके अलावा दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, फेफड़ों की खराबी, ये सब सीधे सीधे तंबाकू से जुड़े हुए होते हैं। और इतना ही नहीं, तंबाकू शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को भी कमजोर कर देता है।
0: मतलब ये सिर्फ एक आदत नहीं है बल्कि एक ऐसी जड़ है जिसमें कई खतरनाक बीमारियां निकलती हैं और धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म करती हैं।
1: बिल्कुल भैया, और यही वजह है कि इसे जितनी जल्दी समझा जाए उतना बेहतर है। तंबाकू छोड़ना सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला नहीं होता, ये पूरे परिवार की खुशियों और सेहत को बचाने का फैसला होता है। इसीलिए आज नहीं तो कल, लेकिन ये कदम उठाना ही होगा।
0: चिकन भाभी, कई बार लोग तब तक नहीं समझते जब तक किसी की मतलब असली कहानी से ना जुड़े। ऐसा होता है ना कि जब तक कोई कहानी उनके सामने ना आ जाए तब तक उन्हें वो चीज समझ नहीं आती। क्या आपके आसपास कोई ऐसी कहानी है जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें और हमारे श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर दे?
1: हाँ, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ हमारे ही इलाके के एक आदमी की। उनका नाम था रमेश। रमेश एक मेहनती मजदूर थे, सुबह से शाम तक काम करते थे, परिवार चलाते थे, लेकिन उनकी एक आदत थी बीड़ी पीना। पहले उन्होंने दोस्तों के साथ मजाक मजाक में शुरू किया था, थोड़ा रिलैक्स मिल जाता था। ऐसे धीरे धीरे एक दिन में 2 बीड़ी पीने से लेकर 10-12 बीड़ी पीने तक पहुँच गयी। उसकी पत्नी अक्सर उन्हें समझाती, ये मत पियो, बच्चों का ख्याल करो, लेकिन रमेश हंसकर टाल दिया करते थे, कुछ नहीं होता, मेरे बाप दादा भी पीते थे। समय बीतता गया और एक दिन रमेश को खांसी शुरू हो गई। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे खांसी बढ़ती गई, सांस फूलने लगी और काम करने में मुश्किल होने लगी। जब हालात बहुत ज्यादा खराब हुए तो परिवार उसे अस्पताल लेकर गया। जांच में पता चला कि उसके फेफड़े पूरी तरह खराब हो चुके थे और शुरुआती टीवी भी थी। डॉक्टर ने साफ कहा, अगर अभी भी नहीं रुके तो हालात और बढ़ जाएंगे। उस दिन पहली बार रमेश डर गया था। उसने अपने बच्चों को देखा, अपनी पत्नी की चिंता देखी और फैसला किया, अब बस। शुरुआत आसान नहीं थी। शरीर बार बार निकोटीन मांगता था, चिड़चिड़ापन होता था, बेचैनी होती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। डॉक्टर की मदद ली, काउंसलिंग ली और धीरे धीरे खुद को उस आदत से दूर किया। कुछ दिनों बाद उसकी हालत सुधरने लगी, खांसी कम हुई, सांस ठीक होने लगी और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। आज रमेश खुद गांव में लोगों को समझाता है, मैंने गलती की लेकिन तुम मत करना। वो स्कूल में जाते हैं, युवाओं से बात करते हैं और कहते हैं, जो शुरुआत में मजाक लगता है वही आगे चलकर सबसे बड़ी सजा बन जाता है।
0: सच में भाभी, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाता है कि एक छोटी सी आदत कैसे जिंदगी बदल सकती है और सही समय पर लिया गया फैसला कैसे उसे वापस भी ला सकता है।
1: बिल्कुल, और यही संदेश हमें सब तक पहुँचाना है।
0: तो भाभी, अगर कोई व्यक्ति सच में ये ठान ले कि उसे डाकू छोड़ना है लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करे, तो वो क्या करे? क्योंकि कई लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन बार बार वापस उसी आदत में लौट जाते हैं।
1: देखिए, सबसे पहला कदम होता है एक पक्का फैसला लेना, अपने मन में ये ठान लेना कि आज के बाद नहीं। जब तक ये अंदर से नहीं आएगा तब तक बाहर की कोई भी सलाह काम नहीं करेगी। उसके बाद अपने घर और आसपास से तंबाकू की हर चीज हटा दें, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जो भी हो, क्योंकि जितनी आसानी से वो चीज सामने दिखती है उतना ही मन डगमगाएगा। इसके साथ ही अपने परिवार और दोस्तों को भी बताइए कि आप ये आदत छोड़ना चाहते हैं, ताकि वो आपका साथ सकें, आपको रोक सकें। जब आपका मन डगमगाए, आगे आगे अगर जरूरत महसूस हो, डॉक्टर या काउंसलिंग की मदद लेना बिल्कुल सही कदम है। आजकल सरकार की हेल्पलाइन भी उपलब्ध है, जहां मुफ्त में सलाह मिलती है, मार्गदर्शन भी मिलता है। और सबसे जरूरी बात, धैर्य। समझना बहुत जरूरी है कि तंबाकू की लत एक दिन में नहीं लगी तो एक दिन में छूटेगी भी नहीं। बीच बीच में मन करेगा, मन बेचैन होगा, लेकिन अगर हर दिन खुद को संभालते रहेंगे तो धीरे धीरे ये आदत कमजोर पड़ जाएगी और एक दिन पूरी तरह छूट जाएगी।
0: भाभी, इस पूरे सफर में परिवार क्या कर सकता है? क्योंकि कई बार परिवार या तो बहुत डांटता है या फिर ध्यान ही नहीं देता है।
1: परिवार की भूमिका सबसे अहम होती है आरजे आनंद। अगर कोई व्यक्ति तंबाकू छोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है समझ और सहारे की। डांटने या ताना देने से इंसान और कमजोर पड़ जाता है, इसके बजाय उसे समझाइए, उसका हौसला बढ़ाइए, छोटी छोटी सफलताओं पर उसकी तारीफ करें, घर में एक ऐसा माहौल बनाएं जहां वो खुद को सुरक्षित और समर्थ महसूस करे। अगर परिवार साथ दे तो ये मुश्किल सफर भी आसान हो सकता है।
0: सच में बिल्कुल सही कहा टीकन भाभी। साथियों, आज की इस बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, तंबाकू कोई फैशन नहीं है। ये एक ऐसा जाल है जो धीरे धीरे इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस जाल से बाहर निकलना नामुमकिन नहीं है। बस एक मजबूत इरादा और सही सहारे की जरूरत है, और ये कदम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने बच्चे और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए उठाना बहुत जरूरी है।
1: याद रखिए, लत से आजादी ही असली आजादी है। जब आप तंबाकू छोड़ते हैं तो सिर्फ एक आदत नहीं छोड़ते, आप अपनी जिंदगी को एक नया मौका देते हैं। इसलिए आज ही सोचिए और पहला कदम उठाइए, तंबाकू छोड़िए और जीवन जोड़िए। अगर आप अनुमति दें तो मैं एक कहानी साझा करना चाहूँगी जो थोड़ी कठिन है सुनने में, लेकिन शायद हमारे श्रोताओं को सच्चाई का एहसास करा सके। देखिए, ये कहानी है हमारे ही पास के एक गांव के रहने वाले शंभू की। शंभू एक साधारण सा आदमी था, छोटा सा खेत, पत्नी और दो बच्चे। मेहनती था, जिम्मेदार था। एक आदत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, गुटखा और बीड़ी की लत। शुरुआत बहुत छोटी थी, खेत में काम करते हुए थकान मिटाने के लिए दोस्तों के साथ थोड़ा गुटखा खा लिया करता था। फिर धीरे धीरे ये आदत रोज की जरूरत बन गई। सुबह उठते ही पहला काम गुटखा और रात को सोने से पहले बीड़ी। उसकी पत्नी कई बार मना करती थी, बच्चे भी कहते थे बाबा मत खाओ, लेकिन शंभू हर बार यही था, कुछ नहीं होता, सब खाते हैं। समय के साथ उसके मुंह में जलन शुरू हुई, फिर एक छोटा सा घाव बना जो भरता ही नहीं था। पहले उसने नजरअंदाज किया, फिर देसी इलाज किया, लेकिन हालात धीरे धीरे बिगड़ गए। खाने में दर्द, बोलने में तकलीफ और आखिरकार जब वो अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया मुंह का कैंसर। ये सुनकर जैसे उसकी दुनिया ही रुक गई। इलाज शुरू हुआ, ऑपरेशन हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके चेहरे का एक हिस्सा काटना पड़ा, आवाज बदल गई और वो ठीक से बोल भी नहीं पाता था। सबसे ज्यादा असर उसके परिवार पर पड़ा। उसकी पत्नी दिन रात उसकी सेवा करती, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। अपने बच्चे, अपने पिता को उस हालत में देखकर डर जाते थे। जो आदमी कभी उनके लिए ताकत का सहारा था, वही अब खुद सहारे पर था। धीरे धीरे शंभू का काम छूट गया, घर की आमदनी खत्म हो गई और इलाज का खर्च बढ़ता गया। एक छोटी सी आदत जिसने सिर्फ उसकी सेहत नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशियां छीन ली। और आरजे आनंद, सबसे दर्दनाक बात तो ये थी कि आखिरी दिनों में शंभू खुद कहता था, काश मैंने उस दिन सुन लिया होता, काश मैंने ये आदत छोड़ दी होती, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी का मकसद डराना नहीं बल्कि सच दिखाना है। तंबाकू का असर धीरे धीरे होता है, लेकिन जब सामने आता है तब बहुत कुछ छीन लेता है, सेहत, पैसा, परिवार की खुशियां, सब कुछ। इसलिए जो आज फैसला ले सकते हैं वो कल का इंतजार ना करें, क्योंकि कुछ फैसले अगर देर से लिए जाएं तो उनका असर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार को झेलना पड़ता है।
0: सच कहूं टीकन भाभी, ऐसी कहानियां सुनकर समझ आता है कि तंबाकू का नुकसान सिर्फ किताबों या पोस्टर तक सीमित नहीं है, इसके पीछे असली जिंदगियां हैं, असली परिवार है और एक ऐसा दर्द जिनकी भरपाई कभी नहीं हो पाती। कई बार लोग सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन बीमारी किसी को पहले से बताकर नहीं आती।
1: बिल्कुल, इसीलिए जरूरी है कि हम डरकर नहीं समझदारी से फैसला लें। अगर आप तंबाकू लेते हैं, छोड़ने की शुरुआत आज से ही कीजिए, और अगर नहीं लेते तो कभी शुरुआत मत कीजिए। साथ ही अपने बच्चों और युवाओं को भी समझाइए कि असली ताकत किसी गलत आदत को अपनाने में नहीं बल्कि उसे दूर रहने में है।
0: और साथियों याद रखिए, हर नई शुरुआत का सबसे अच्छा समय आज का होता है। हो सकता है शुरुआत मुश्किल लगे, लेकिन आपका एक छोटा सा फैसला आने वाले वर्षों की खुशियां और सेहत बचा सकता है। तो खुद से एक वादा कीजिए, स्वस्थ जीवन चुनेंगे और गलत आदतों को ना कहेंगे। और आज का हमारा संदेश, ना स्टाइल में ना ट्रेंड में, जिंदगी है अपने कंट्रोल में। तंबाकू से दूरी अपनाओ, स्वस्थ जीवन का रास्ता पाओ। इसी के साथ हम आज का अपना प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, पर जाने से पहले एक बार फिर हम मिलकर यही शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें,
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कहीं। तो दोस्तों, मैं था आपका दोस्त आरजे आनंद, अभी लेता हूँ आपसे इजाजत इस प्रोग्राम से। बस जाते जाते इतना कहना चाहूँगा, अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और तंबाकू से दूर रहिए। फिर मिलेंगे इसी शो में, यानी कि सेहत सही लाभ कहीं में, एक और नए विषय और एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
3: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
6: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
7: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 और आज का प्रोग्राम बहुत ज्यादा खास है, सेहत सही लाभ कई, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रीना।
8: आज की कड़ी बहुत खास है
7: क्योंकि आज 28 मई है, एक ऐसा दिन जब हम दो बहुत ही जरूरी विषय पर बात करते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे यानी मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, और दूसरा है विश्व पोषण दिवस यानी हमारे खाने पीने और सेहत से जुड़ा दिन। पहली नज़र में ये दोनों विषय अलग लग सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दे सके तो ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, खासकर महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए।
9: धन्यवाद आरजे रीना, और मेरे सभी प्यारी श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा, मासिक धर्म और पोषण ये दोनों ही एक ऐसे विषय हैं जिन पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफा जहां मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वहीं दूसरी तरफ सही पोषण उसकी प्रक्रिया को स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे समाज में आज भी इन दोनों विषयों को लेकर बहुत सी गलत फहमियां झिझक मौजूद है।
7: सच कहूं सेहतिय भैया, आज भी कई घरों में पीरियड्स शब्द बोलना भी आसान नहीं होता, लड़कियां चुपचाप सब सहती हैं और कई बार तो उन्हें सही जानकारी भी नहीं थी, आखिर ऐसा क्यों है?
9: देखो आर्जेरीना, ये एक सामाजिक सोच का मामला है। सालों से मासिक धर्म को एक छुपाने वाली चीज बना दिया गया है, जिससे ये कोई गंदगी या शर्म की बात नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि हर लड़की और हर महिला के जीवन में एक सामान्य जरूरी हिस्सा है। अगर हम इसे समझेंगे नहीं, इसके बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे, तो लड़कियां सही जानकारी से वंचित रह जाएंगी और उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा।
7: मतलब ये सिर्फ एक महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है।
9: हाँ, माँ पिता भाई पति शिक्षक सभी की भूमिका होती है। जब परिवार समर्थन देता है तो लड़की आत्मविश्वास के साथ अपनी सेहत का ध्यान रख पाती है, उसे साफ सफाई सही सामग्री और सुरक्षित जगह मिलती है।
7: ये तो सेहतिया भैया, अगर हम सीधे तौर पर समझे मेंस्ट्रुअल हाइजीन या मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब क्या है?
9: देखिए आर्जेरीना, मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब है साफ और सुरक्षित तरीके से पीरियड्स को संभालना, जैसे कि साफ सैनिटरी पैड, कपड़ा या अन्य सुरक्षित साधनों का इस्तेमाल करना, उसे समय समय पर बदलना, हाथ धोना, शरीर की साफ सफाई रखना और इस्तेमाल की गई सामग्री को सुरक्षित निपटान करना, इसके साथ ही जरूरी है कि लड़की या महिला के पास एक निजी और सुरक्षित जगह हो जहां वो आराम से खुद का ख्याल रख सके।
7: लेकिन सेहतिया भैया, गांव में या कम संसाधनों वाले इलाकों में ये सब सुविधाएं हर किसी को मिल पाती हैं क्या?
9: बिल्कुल अर्जेरीना, यह सबसे बड़ी चुनौती है। कई जगहों पर आज भी लड़कियां पुराने गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती हैं या फिर समय पर बदल नहीं पाती, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है या संसाधन नहीं मिलते हैं। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए जरूरी है कि हम इस विषय पर जागरूकता बढ़ाएं और सरकार व समुदाय मिलकर सुविधाएं सुनिश्चित करें।
7: और यहीं पर विश्व पोषण दिवस की बात भी जुड़ जाती है, क्योंकि अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा तो इसका असर मासिक धर्म पर भी पड़ेगा, है ना?
9: बिल्कुल आरजे रीना, बिल्कुल सही समझाया आपने। अगर लड़की या महिला को सही पोषण नहीं मिलेगा, जैसे आयरन, प्रोटीन, विटामिन, तो उसे कमजोरी जैसे चक्कर, ज्यादा दर्द या अनियमित पीरियड्स जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए पोषण और मासिक धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
7: तो एक और संतुलित आहार कैसा होना चाहिए और हमारे श्रोता क्या क्या चीजें अपने रोज के खाने में शामिल कर सकते हैं?
9: देखिए आर्जेरीना, संतुलित आहार का मतलब है थाली में विधिवद्धता, आधी थाली में सब्जी हो, साथ में दाल या प्रोटीन जैसे अनाज, रोटी, चावल और अगर संभव हो तो दूध, दही या हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे दालें, फल, मेवे, ये सब बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात, जंक फूड ज्यादा तला भुना और ज्यादा नमक चीनी से बचना चाहिए। पानी भी पर्याप्त मात्रा में ही पीना चाहिए।
7: मतलब अच्छा खाना सिर्फ महंगा खाना नहीं होता बल्कि सही और संतुलित खाना होता है।
9: बिल्कुल आर्जेरीना, हमारे गांव में जो स्थानीय और मौसमी खाना मिलता है वही सबसे अच्छा है, बस हम उसे सही तरीके से अपनाते हैं तो।
7: सेहतिया भैया, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन कई बार लोग तब तक नहीं समझ पाते जब तक वे किसी असली कहानी से ना जुड़े। क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमारे श्रोताओं को ये समझा सके कि सही जानकारी और पोषण कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं?
9: बिल्कुल आरती रीना जी, मेरे पास एक कहानी है और मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ श्रोताओं। हमारे ही एक गांव में एक लड़की रीना की कहानी। रीना करीब 14 साल की थी, पढ़ने में तेज लेकिन बहुत ही चुपचाप रहने वाली लड़की। जब उसे पहली बार पीरियड्स हुए तो वो घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर में इस बारे में कभी खुलकर बात ही नहीं हुई थी। उसकी माँ ने उसे बस एक पुराना कपड़ा दे दिया और कहा, किसी को बताओ मत, बस चुपचाप संभाल लेना। रीना को ना तो ये पता था कि कपड़ा साफ होना चाहिए और ना ही उसे ये पता था कि कितनी बार बदलना है। वो भी बस उसी कपड़े को कई कई घंटों तक इस्तेमाल करती रहती थी। धीरे धीरे उसे खुजली और जलन होने लगी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं बताया। उसे लगता था कि शायद ये भी नॉर्मल है। इसी के साथ एक और समस्या थी, रीना का खान पान, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और खाने में सिर्फ रोटी और नमक या कभी कभी दाल मिलती थी। हरी सब्जियां, फल, ये सब तो बहुत ही कम मिलते थे। धीरे धीरे रीना को कमजोरी महसूस होने लगी। पीरियड्स के समय उसे बहुत ज्यादा दर्द होता था, इवन उसे चक्कर भी आते थे। कई बार वह स्कूल भी नहीं जा पाती थी। एक दिन स्कूल में स्वास्थ्य शिविर लगा, वहाँ आशा दीदी और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आई। उन्होंने लड़कियों से इस विषय में खुल के पीरियड्स के बारे में बात की। पीरियड्स क्या होता है, उसे कैसे संभालना चाहिए, क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। रीना पहली बार किसी को इतना खुलकर सब कुछ बता पा रही थी और सारी बातों को सुन पा रही थी। शिविर के बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपनी परेशानी बताई। स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने उसे समझाया कि साफ सफाई कितनी जरूरी है। उसे सैनिटरी पैड दिए गए और ये भी बताया गया कि आयरन की कमी उसे क्या क्या प्रॉब्लम दे सकती है। और उसके बाद आशा दीदी द्वारा उसे आयरन की गोली दी गई और खाने में हरी सब्जियां, दाल, गुड़ और फल शामिल करने की सलाह भी दी गई। धीरे धीरे रीना ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव किए। उसने साफ सफाई का ध्यान रखना शुरू किया, समय समय पर पैड बदलना सीखा और अपने खाने में सुधार किया। कुछ ही महीनों में उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। अब उसे पहले जैसी कमजोरी नहीं होती थी और वह नियमित रूप से स्कूल आने लगी। आज रीना अपने गांव की दूसरी लड़कियों को भी जागरूक करती है। वो उन्हें बताती है कि पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं है और सही जानकारी और पोषण हमें इसे आसानी से संभाल सकने में हमारी हेल्प कर सकता है।
7: सच में सेहतिया भैया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक सीख है। अगर सही समय पर जानकारी और मदद मिल जाए तो जिंदगी बदल सकती है।
9: बिल्कुल आरजी रीना, और हमारा मकसद भी यही है कि हर रीना तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि कोई भी लड़की अज्ञानता या झिझक के कारण अपनी सेहत से समझौता ना करे।
7: सेहतिया भैया, रीना की कहानी ने सच में दिल को छू लिया, लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है पोषण। अपने बताया कि सही खाना मिलने के बाद ही रीना की सेहत सुधरी, तो क्या ये समस्या सिर्फ लड़कियों और महिलाओं तक सीमित है, या पुरुषों में भी पोषण की कमी एक बड़ी चुनौती है?
9: बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आरजे रीना। मैं आपको बताता हूँ, अक्सर हम पोषण की बात सिर्फ महिलाओं और बच्चों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पुरुषों में भी पोषण की कमी एक गंभीर समस्या है। हमारे देश में बहुत से पुरुष दिन भर मेहनत करते हैं, खेतों में कार्य करते हैं, दहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन उनका खान पान संतुलित नहीं होता है। कई बार वो सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, शरीर को सही पोषण देने के लिए नहीं। इसका असर उनकी ताकत कम करना, उनकी क्षमता कम करना और उन्हें लंबी अवधि में उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इसका
7: मतलब कमजोरी और थकान जो हम आम समझते हैं, उसके पीछे भी पोषण की ही कमी हो सकती है।
9: बिल्कुल आरजे रीना, यही बात हम विश्व पोषण दिवस के माध्यम से समझाते हैं, और विश्व पोषण दिवस की संदेश से हमें ये बात जोड़ देती है। इसी दिन का मकसद है सिर्फ अच्छा खाना बताना नहीं, बल्कि ये समझाना है कि सही पोषण हर उम्र, हर लिंग और हर वर्ग के लिए जरूरी है। और जब हम आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी मना रहे हैं, तो इसका मकसद भी यही है कि सही पोषण पुरुष हो या महिला, हर किसी को मिलना चाहिए। और जिसका इस साल का संदेश है टुगेदर फॉर अ पीरियड्स फ्रेंडली वर्ल्ड, तो इसका मतलब यही है कि हम मिलकर एक ऐसे समाज की योजना बनाएं जहां लड़कियां और महिलाएं बिना डर और बिना झिझक के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। और इसमें पोषण भी एक बहुत बड़ी कड़ी है श्रोताओं, और बहुत ही मजबूत कड़ी है, यानी कि ये दोनों ही विषय एक दूसरे को जोड़ते हैं।
7: सेहतिया भैया, आपने अनीमिया यानी खून की कमी का जिक्र किया था, ये समस्या हमारे देश में कितनी बड़ी है और क्या ये सिर्फ महिलाओं में ज्यादा होती है?
9: देखिए आर्जेरीना, अनीमिया भारत में एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य समस्या है, खासकर किशोरी लड़कियां और महिलाओं में इसकी दरें काफी ज्यादा हैं, लेकिन पुरुष भी इसमें अछूते नहीं है। खून की कमी का मतलब शरीर में हीमोग्लोबिन का कम होना, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसके कारण व्यक्ति को जल्दी थकान, चक्कर, सांस फूलना और कमजोरी महसूस होती है। महिलाओं में यह

0: समस्या ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि उन्हें हर मासिक धर्म के दौरान खून की कमी होती है और अगर उनका खान पान सही ना हो तो ये कमी और भी बढ़ जाती है।
1: तो इसका सीधा मतलब है अगर हम पोषण पर ध्यान देंगे तो इसका असर सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ेगा।
0: बिल्कुल सही कहा अर्जेरीना और बिल्कुल सही समझा आपने। इसीलिए दोस्तों जरूरी है कि हम अपने रोज के खाने में कुछ खास चीजों को शामिल करें जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक मेथी दाल और चना गुड़ मूंगफली तिल और अगर संभव हो तो दूध दही या अंडा या अन्य प्रोटीन के जो स्रोत हैं उनको भी आप आहार में जरूर शामिल करें। फल जैसे केला अमरूद संतरा ये भी बहुत फायदेमंद होते हैं। और सबसे जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक चीज को रोज खाने से शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते।
1: मतलब थाली जितनी रंग बिरंगी होगी सेहत उतनी मजबूत होगी।
0: बिल्कुल सही कहा अर्जेरीना आपने और यही सबसे आसान तरीका है समझने का। और एक और बात हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो भी खा रहे हैं वो साफ सुथरा और सही तरीके से पकाया गया हो क्योंकि अगर खाना साफ नहीं है तो वो भी हमें बीमारी का कारण बना सकता है।
1: साथियों आज की बातचीत से एक बात तो साफ हो गई कि पोषण सिर्फ खाना नहीं है बल्कि यह हमारी ताकत हमारी ऊर्जा और हमारे पूरे जीवन का आधार है। और जब हम मासिक धर्म और पोषण को साथ में समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि सही जानकारी और सही आदतें मिलकर ही एक स्वस्थ समाज बनाती हैं। तो साथियों आज की इस खास कड़ी में हमने जाना कि मासिक धर्म और पोषण दोनों हमारे जीवन के अहम हिस्से हैं। अगर हम इन्हें समझेंगे अपनाएंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे तो हम एक स्वस्थ और सशक्त समाज बना सकते हैं।
0: याद रखिए साफ सफाई सही जानकारी और अच्छा पोषण यही है स्वस्थ जीवन का आधार।
1: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज की यही शपथ लेते हैं। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई।
0: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद अब लेता हूँ आपसे अलविदा। फिर मिलूंगा इसी शो में यानी सेहत सही लाभ कई के एक और नए विषय और एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए और हाँ दोस्तों पानी पीते रहिए और से रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। बाय बाय नमस्कार।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पी या हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेबर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, मैं हूं सुजाता स्मार्ट एनजीओ से। और मैं हूं इस समय परिवार कल्याण विभाग में, मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर आरसीएच यूपी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: धन्यवाद सुजाता जी, और मैं स्मार्ट एनजीओ का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस रेडियो पे जितने भी हमारे श्रोतागण हमको सुन रहे हैं, क्योंकि आज उनको हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं।
0: सर, सबसे पहले तो हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि टीकाकरण क्या होता है और ये बच्चों और उनके परिवारों के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है।
1: देखिए, टीकाकरण बहुत ही जरूरी होता है और इसलिए भी जरूरी होता है कि माँ के पेट से जो हमारा जब बच्चा आता है तो उसके पास जो रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे वीन ऑफ होती है, यानी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि माँ के पेट से जो मिलता है तो लगभग 3 से 6 महीने में धीरे धीरे वीन ऑफ हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी भी जरूरत होती हैं जिसमें जन्म के समय ही हमको बच्चों को देने की जरूरत पड़ती है टीकाओं को, उस पर हम लोग बाद में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और जरूरी इसलिए भी है कि जब एक बार नए वातावरण में हमारा बच्चा आता है तो जब तक माँ के गर्भ में रहता है वो सुरक्षित रहता है माँ के अपने प्रतिरोधक क्षमता की वजह से, और जब वातावरण में आता है तो आप देखिए ढेर सारी बीमारियां चारों तरफ वातावरण में फैली हुई हैं, तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरी है।
0: सर, अगर हम भारत की बात करें तो बच्चों के लिए जन्म से लेकर शुरुआती वर्षों तक कौन कौन से जरूरी टीके लगाए जाते हैं?
1: बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। मैं इस सवाल के जवाब में ऐसा कहूंगा कि जैसे ही बच्चा हमारा जन्म लेता है, चाहे किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर हो, जिला अस्पताल में हो, महिला हॉस्पिटल में हो, या फिर किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो, वहाँ जन्म के समय ही हमारी जो स्टाफ नर्सेज हैं या फिर हमारी एएनएम बहुएं हैं, उनको बच्चों को जन्म के समय बीसीजी का टीका लगाते हैं, ओरल पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं। तत्पश्चात 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे पेंटावेलेंट की वैक्सीन लगाई जाती है, साथ में रोटा वायरस के लिए डायरिया से बचने के लिए हम लोग वैक्सीन पिलाते हैं, और उसके साथ साथ ओपीवी की वैक्सीन भी पिलाई जाती है। और इन बच्चों को हम फिर 10 सप्ताह पे 14 सप्ताह पे टीके लगाते हैं। 9 माह का पूरा होने पे हम बच्चों को मीजस और रूबेला से बचने के लिए एक टीका लगाते हैं, और साथ में आप जानते हैं पूरे पूर्वांचल में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी काफी ज्यादा प्रचलित है, जो अब काफी कुछ कंट्रोल में आ गई है पिछले 6-7 सालों से, जो हम लोगों ने जेई का टीका लगाया जिसकी वजह से अब इनसे होने वाली मृत्यु दर बिल्कुल शून्य हो चुकी है, उनको भी लगाते हैं और साथ में विटामिन ए का हम लोग खुराक पिलाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग फ्रैक्शनल आईपीवी लगाते हैं जो पोलियो से बचाव करता है। जब हमारा बच्चा 16 से 24 माह का हो जाता है तब हम लोग डीपीटी की प्रथम बूस्टर डोज देते हैं, और साथ में मीजस रूबेला का बूस्टर डोज और जेई की सेकेंड डोज दी जाती है। बच्चा हमारा जब 5 साल से 6 साल के बीच में आता है तो डीपीटी वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाती है, और बच्चे को जब हमारा 10 साल के किशोर और किशोरियां और 16 साल के होते हैं तो TD10 और TD16 की वैक्सीन लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भवती माताओं को भी हम लोग टीडी का वैक्सीन लगाते हैं।
0: अच्छा, गर्भवती महिलाओं की अगर बात हो रही है तो उनके लिए ये टीका कितना जरूरी है, और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को?
1: देखिए, गर्भावस्था के दौरान तो जो टीके लगाए जाते हैं के अतिरिक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गर्भावस्था के दौरान माँ को खून की जो कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग मुफ्त में हम लोग आयरन फोलिक एसिड की गोलियां भी देते हैं गर्भवती माताओं के लिए, और साथ में कैल्शियम की गोलियां देती हैं। टीकों की बात करें तो टीडी का टीका हम लोग लगाते हैं गर्भवती माताओं को, इससे माताओं को भी डिप्थीरिया जो आजकल ऊपर के उम्र में देखी जा रही है डिप्थीरिया से बचाव होता है, और साथ में टिटनेस से बचाव होता है। और जरूरी इसलिए भी है कि ये केवल गर्भवती माताओं को नहीं बचाता बल्कि इससे जो हमारी एंटीबॉडीज माताओं के शरीर में डेवलप होती हैं, तो जब बच्चा हमारा पैदा होता है तो उस बच्चे के शरीर में भी ये रोग से बचाव की क्षमता आ जाती है।
0: अच्छा, क्या माँ को लगने वाले टीकों का असर बच्चे की सुरक्षा पर भी पड़ता है? इसे हमारे श्रोताओं को थोड़ा आसान तरीके में समझाइए सर।
1: देखिए, इस सवाल का जवाब हमने पिछले सवाल में भी आपको दिया, और आसान तरीके से समझने की जरूरत है कि माँ से बच्चे के अंदर देखिए सारा खून आता है, और उस खून जितना भी बच्चे के अंदर खून आता है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, जो आपको रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, प्लस बच्चे को ऑक्सीजन दिलाता है। तो माँ को जो भी टीका लगाएंगे आप, उस टीके में जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है, वो बच्चों में आती है। तो आई थिंक वो बच्चा हमारा कुछ दिनों तक सुरक्षित रहता है। उसके लिए फिर जरूरी है कि जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो UIP के तहत हम उन बच्चों को अलग अलग उम्र में, जो भी हमने शुरू में जिक्र किया, उन टीकों को लगाना जरूरी है।
0: सर, कई बार बच्चे का टीका किसी कारण से छूट जाता है, ऐसे में परिवार क्या करे? क्या बाद में भी छूटा हुआ टीका लगवाया जा सकता है?
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगर आपसे शुरू में अगर टीका बच्चे को नहीं लगा पाते हैं तो हमको जरूरी है कि उस बच्चे को टीका जो भी उस उम्र के लिए ड्यू है उनको जरूर लगवा लेना चाहिए, ताकि बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो सके। और हर एक टीके का अपना एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अतिरिक्त हर टीके का अपना एक डोज होता है जिसमें हम किस उम्र तक उन टीकों को लगा सकते हैं, ये हमारे पास नेशनल गाइडलाइन है, उस तहत लगाते हैं।
0: अच्छा, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेकर कौन कौन सी पहल चल रही है और हमारे श्रोता किस तरह इसका लाभ उठा सकते हैं?
1: देखिए, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेके ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम लोग जो टीका लगाते हैं और इस टीका को जो लगाते हैं उसके लिए जो इकाई है वो सब सेंटर है, यानी उपकेंद्र है, जहाँ पे एक एनएम होती है। उसके अतिरिक्त कम से कम ये 5 से 6 हजार की आबादी पे एनएम होती हैं और हर एक 1 हजार की आबादी पे हमारी आशाएं होती हैं जो मोबिलाइजेशन का काम करती हैं, और उसके अलावा आंगनबाड़ी हमारी वर्कर और आंगनबाड़ी सहायिकाएं होती हैं, वो भी 1 हजार की आबादी पर जो होती हैं जो मोबिलाइजेशन करने में सहयोग देती हैं। तो ये हम लोग जो इस तरह से उपकेंद्र वाइज एक माइक्रो प्लान बनाते हैं, उस माइक्रो प्लान को हम लोग ब्लॉक लेवल पे संकलित करते हैं और तत्पश्चात जिले लेवल का संकलन होता है। इस तरह से हमारी ये भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से टीकाकरण अभियान चलाती है। किंतु यहां मैं आपको बता दूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में एक और चीज चलाते हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है। शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रोजमर्रा के काम करने वाले मजदूर हैं, चूंकि हम जानते हैं, और प्लस उसके अलावा जो मेड्स वगैरह काम करती हैं, और इवन हमारे जो अपने एम्प्लॉयज हैं जो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके पास खाली नहीं रहते हैं, उनको हमने संडे की एक सुविधा दी है कि जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्रों में बने हुए प्लस जिला अस्पताल हैं, उनमें मंडे से लेकर संडे तक प्रत्येक दिन ये टीका लगाया जा सकता है जब भी हमारे अस्पताल खुले होते हैं। तो ये एक सुविधा हमने उत्तर प्रदेश में अलग से मुहैया कराई है।
0: बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। आगे हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि कुछ परिवारों में टीकों को लेकर डर या गलत फहमियां होती हैं, जैसे बुखार आ गया, बच्चा रोने लगा या कमजोरी लग रही है। क्या इसके अलावा भी कोई भ्रांतियां हैं जो सामने आई हैं? ऐसे मामलों में लोगों को क्या समझना चाहिए?
1: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। और अब मैं देख रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश का अपना डाटा कहता है, काफी लोग इस भ्रांतियों से ग्रसित हैं और ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको कोई समझाने का प्रयास नहीं किया गया या थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, इन लोगों में ये भ्रांतियां हैं। डेफिनेटली देखिए, अगर हम बच्चे को सुई लगा रहे हैं तो सुई का असर तो होगा, सुई लगेगा तो थोड़ा बहुत उस स्थान पे दर्द होगा, लालिमा आएगी, सूजन आएगा, हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है। तो इन चीजों से हमें डरना नहीं चाहिए, यही चीज हमें समझाने की जरूरत है। और सुई लगने के पश्चात जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसमें शरीर के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनका भी कभी कभी असर देखने को मिलता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। घर वालों की भ्रांतियां तो कई तरीके से हैं, लोग अलग अलग चीजों से मतलब हो जाते, जैसे कभी पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था तो लोग कहते थे कि साहब नपुंसकता हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आज पोलियो ड्रॉप, हमने पोलियो से मुक्ति पा ली है। 1994-95 पहली बार हम लोगों ने एक नेशनल लेवल पे वाइड स्तर पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया था, सारे बच्चों को, आज उन बच्चों के यहां भी परिवार बने हुए हैं। तो इसलिए ये भ्रांतियों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर कहीं कोई भ्रांतियां हैं तो आपके समुदाय में प्रत्येक 1 हजार की आबादी पे हमारी आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और सहायिकाएं हैं, उनसे आप लोग जरूर राय मशवरा कीजिए, और नहीं तो हर जगह टोल फ्री नंबर दिए होते हैं, उनमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं।
0: सर, आजकल HPV जैसे टीकों की भी चर्चा हो रही है, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि किशोरियों के लिए ऐसे टीकों का क्या महत्व है? क्या HPV टीकाकरण की आवश्यकता किशोरों में भी है?
1: HPV टीका इसलिए भी चर्चा हो रही है कि जो महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर होता है वो वन ऑफ द लीडिंग कॉज है महिलाओं में मृत्यु का। दूसरे नंबर पे ये कैंसर है जिसमें इतनी ज्यादा मृत्यु होती है, और इस मृत्यु का जो कैंसर उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है वो HPV का इन्फेक्शन है। और इस इन्फेक्शन की ज्यादातर चीजें आपको पता नहीं चलती हैं कि कब ये इन्फेक्शन आपको हो गया, क्या इसके सिम्टम्स है, ज्यादातर ये साइलेंट रहता है और 10 से 15 सालों के बाद धीरे धीरे इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब आप ये देखिए कि अगर हम किशोरियों को सही टाइम पे इस टीके को लगा देते हैं तो इस इन्फेक्शन से बचाव होता है, अल्टीमेटली हम इस कैंसर से हम इस बच्चियों को बचा सकते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि क्या हम किशोर को भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। किशोरों में भी इस तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें HPV वैक्सीन का बचाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये चीजें लिमिट करनी पड़ेंगी जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, और आने वाले दिनों में हो सकता है भारत सरकार इस पे सोचेगी तो हम किशोरों को भी ये टीका दे पाएंगे। अभी हमारा प्राइम लक्ष्य जो हमारे पास जो गाइडलाइन है, नेशनल गाइडलाइन, ये कहती है जो भी हमारी बच्चियां हैं 14 वर्ष कंप्लीट कर चुकी हैं और 15 से छोटी हैं, उनको हम एक डोज का टीका लगा रहे हैं और ये उनको लाइफ लाइन इम्यूनिटी देगा। और ये पूरे भारतवर्ष में ये टीके को लॉन्च 28 फरवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है।
0: सर, दूर दराज या कमजोर पहुंच वाले इलाकों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है और विभाग इसे कैसे संभालता है?
1: देखिए, अब ये बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं रह गया। हमारे पास मैपिंग है, हर जनपद में ब्लॉक लेवल पे, सब सेंटर लेवल पे हम चिन्हित हैं कि कोई अगर स्लम एरिया है वो चिन्हित है, जितने ईंट भट्टे हैं वो चिन्हित है, कोई नया कंस्ट्रक्शन साइट हो रहा वो चिन्हित है, और लगभग हर 3 से 6 महीने पे

0: किशोरियों, गर्भवती महिलाओं का भी समय पर टीकाकरण जरूरी है।
1: देखिए, इसके बारे में अभी हम लोगों ने शुरू में मैंने चर्चा करके बताया, आपने देखा कि जो नेशनल हमारा शेड्यूल है उसके अंदर जन्म से लेके 16 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है, जिसमें आपने फिर से एक बार दोहरा दूं मैं अब दर्शकों के लिए, जन्म के समय टीका लगाते हैं, फिर 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह पे टीका लगता है, फिर 9 महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चों को टीका लगता है। ये एक ड्यूरेशन होता है, इस बीच में कभी भी आप टीका लगा सकते हैं। 16 से 24 माह के बीच में हम टीका लगाते हैं, 5 से 6 वर्ष के बीच में लगाते हैं, 10 वर्ष के और 16 वर्ष के किशोर किशोरियों को टीका लगाते हैं और गर्भवती माताओं को टीका लगाते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है।
0: आखिर में उन माता पिता और परिवारों के लिए आपका सबसे जरूरी संदेश क्या होगा जो किसी की कारण से अभी भी टीकाकरण को लेकर असमंजस में है?
1: देखिए, अब अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर से स्मार्ट एनजीओ का धन्यवाद देना चाहूंगा और मेरा आखिरी संदेश यह है कि बिना किसी संशय के आप टीकों पे विश्वास कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी संशय है तो आप अपने क्षेत्र में कार्य करने वाली आशा बहुएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एनएम बहन जी, आंगनवाड़ी सहायिकाओं या उपलब्ध आपके जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पे मेडिकल अफसर से आप बात करिए और अपने संशय को दूर करिए। बच्चों के लिए टीका बहुत जरूरी है क्योंकि ये टीका बच्चों में होने वाली मृत्यु को आधी से ज्यादा कम कर देता है। धन्यवाद,
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी। आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं उस मिट्टी की जो परंपरा में भी आगे है और विकास में भी सबसे आगे है। और मेरे साथ,
1: और आज का हमारा सफर है स्वादों की नगरी, आध्यात्मिक की धरती और

0: जहाँ सुबह गंगा के घाटों पर उतरती है और गलियों में कचौड़ियों की खुशबू बहती है, वो शहर है बनारस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी, और हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस शहर में जहाँ स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं दिलों में उतरता है।
1: और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना। अरे भैया, ये वो शहर है जहाँ सुबह अलार्म से नहीं गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू से खुलती है।
0: वाह क्या बात, काशी की गलियों में सुबह सुबह छनछनाती कचौड़ियाँ, जलेबी की मिठास, पान की गुलियाँ और ठंडाई की ठाट सब मिलकर ऐसे एहसास देते हैं जैसे पूरा शहर स्वाद की कविता लिख रहा हो।
1: और अब यही है स्वाद लोकल से ग्लोबल बनने जा रहा है। योगी सरकार की एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के तहत काशी पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिल रही है।
0: ये सिर्फ आर्थिक योजना नहीं बल्कि सांस्कृतिक पूर्ण जागरण। सोचिए, बनारस की गलियों से उठती खुशबू अब विदेशों तक पहुंचेगी,
1: और सिर्फ पहुंचेगी नहीं दिल जीत लेगी।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं उस स्वाद से जिसके बिना बनारस की सुबह अधूरी है, बनारस की कचौड़ी।
1: अरे वाह, नाम सुनते ही भूख लग गई। बनारसी कचौड़ी की खासियत ही अलग है। पूरे देश में कचौड़ी मिल जाएगी लेकिन बनारसी कचौड़ी का जवाब नहीं।
0: देसी घी से सना हुआ कड़ा आटा, अंदर उड़द की दाल, मसाले पिट्ठी और धीमी धीमी आंच पर तली गई कुरकुरी कचौड़ी, फिर उसके साथ आलू टमाटर की सब्जी, कोहरा चना, घुंघरी और मीठी इमली की चटनी, उफ।
1: अरे भैया, साथ में गर्मा गर्म जलेबी हो जाए तो फिर बनारस की सुबह सफल है।
0: सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि फास्ट फूड के दौर में भी बनारसी कचौड़ी ने अपना परंपरागत स्वाद बरकरार रखा है। पीढ़ियों से लोग इसी कारोबार से जुड़े हैं।
1: और अब ODCO योजना के तहत इस दुकानदारों को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की मदद मिलेगी ताकि बनारसी कचौड़ी का स्वाद दुनिया तक पहुंचे।
2: हमारा नाम है विकास श्रीवास्तव और हम यहाँ के मैनेजर बानी। हम योगी जी के ये पहल से बड़ा खुश बानी और कोटी कोटि प्रणाम महाराज जी के करतनी जो उनकी पहल एक जनपद एक व्यंजन बहुत ही बढ़िया है। इससे जैसे हमन के व्यापारी गण बाणी तो बहुत हमन के भी फायदा बा और जौन हमारी जनता आवत या वह लोगन के बहुत जौन बा।
0: दोस्तों, योगी सरकार की ODOC पहल सिर्फ बनारस के स्वादों को पहचान दिलाने की योजना नहीं है बल्कि उन हजारों परिवार के सपनों को नई उड़ान देने का अभियान भी है जो पीढ़ियों से इन पारंपरिक व्यंजनों को जीवित रखे हुए हैं।
1: बिल्कुल, सोचिए जो कारीगर, हलवाई, पान व्यवसायी और छोटे उद्यमी वर्षों से अपने हुनर के दम पर बनारस की पहचान बनाए हुए हैं, सरकार की योजनाओं का भी मजबूत सहारा मिल रहा है।
0: ODOC के माध्यम से पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को परीक्षण, कौशल विकास, आधुनिक तकनीकों की जानकारी और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
1: इतना ही नहीं, विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण सुविधाओं, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अवसर तक उनकी पहुंच को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि छोटे कारोबार बड़े उद्यमों में बदल सके।
0: सरकार

0: की सूट साफ है। स्थानीय स्वाद को व्यावसायिक बाजार तक पहुंचाना और स्थानीय लोगों की आय को बढ़ावा देना,
1: यही कारण है कि अब बनारसी कचौड़ी, ठंडाई, तिरंगा बर्फी, लौंग लता, मलियो और बनारसी पान जैसी व्यंजनों आकर्षक पैकेजिंग, आधुनिक ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है।
0: पर्यटन मेलों, खाद उत्सवों और बड़े आयोजनों में भी इन पारंपरिक व्यंजनों को विशेष स्थान दिया जा रहा है, ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक काशी के स्वाद से रूबरू हो सके।
1: इसका सीधा लाभ स्थानीय दुकानों, मिठाई निर्माताओं, पान व्यवसायियों, उद्योग उत्पादकों, किसानों और छोटे व्यापारियों तक पहुंचेगा।
0: यानी ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों का विकास नहीं कर रही, बल्कि पूरी संस्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रही है।
1: और यही तो योगी सरकार की विकास परक सोच की खासियत है। विरासत की सुरक्षा रहे, रोजगार भी बढ़े और काशी के स्वाद की महक दुनिया भर में पहुँचे।
0: सचमुच अब वह दिन दूर नहीं जब बनारस की गलियों में जन्मे ये पारंपरिक स्वाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी अलग पहचान बनाएंगे।
1: अब बात करते हैं बनारस की शान ठंडाई की।
0: अरे बनारस और ठंडाई जैसे गंगा और घाट, यहाँ साल भर ठंडाई पी जाती है, लेकिन होली पर इसकी बात ही अलग होती है।
1: पक्के महल की गलियों में जब सिल पर काली मिर्च, बादाम, पिस्ता और इलायची पीसी जाती हैं, तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले को बनारसी बना देती है।
0: ठंडाई बनाने की प्रक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं। रात भर भीगी बादाम, पिस्ता, गुलकंद, केसर, गुलाब जल, फिर सबको पीसकर दूध में मिलाना और आखिर में कपड़े से छानकर मलाई के साथ परोसना। आजकल तो मूंगी, चॉकलेट और रोज फ्लेवर तक आ गए हैं, लेकिन असली बनारसी ठंडाई वही है जिसमें मिट्टी, महक और बनारस का दिल हो। दोस्तों अब जिस मिठाई की बात होने जा रही है वो सिर्फ स्वाद नहीं, इतिहास भी है।
1: जी हाँ, तिरंगा बर्फी जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई।
0: जब अंग्रेजों ने तिरंगा झंडे पर रोक लगाई थी, तब बनारस के हलवाइयों ने तिरंगे जैसी मिठाई बनाकर लोगों में देशभक्ति का जोश जगाया था।
1: सोचिए, मिठाई भी आंदोलन का हथियार बन सकती है।
0: हरे रंग के लिए पिस्ता, सफेद के लिए बादाम और केसरिया रंग के लिए केसर। खोई से बनी ये मिठाई सिर्फ स्वादिष्ट नहीं, बल्कि देशभक्ति का प्रतीक भी है।
1: और अब इसे GI टैग भी मिल चुका है, यानी इसकी पहचान अब आधारिक रूप से बनारस से जुड़ गई है।
0: राष्ट्रीय पर्वों पर इसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि दुकानों पर लंबी कतारें लग जाती हैं।
1: अब बारी उस मिठाई की जिसका नाम भी अनोखा और स्वाद भी लौंग लता।
0: वाह, मैदे की कुरकुरी परत, अंदर खोया और मेवे का भरपूर मिश्रण, ऊपर से लौंग की खूबसूरत सजावट और फिर मीठी चाशनी में डुबोकर तैयार होती है लौंग लता।
1: इसका हर निवाला ऐसा लगता है जैसे मिठास का कोई त्योहार मनाया जा रहा हो।
0: पहले इसका आकार बड़ा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसे छोटा और सुविधाजनक बना दिया गया है, ताकि लोग आसानी से खा सकें और साथ ले जा सकें।
1: शाम के समय बनारस की मिठाई की दुकानों में गरम समोसे और लौंग लता की जोड़ी बस दिल खुश कर देती है।
0: अगर बनारस आए और कुल्हड़ वाली लस्सी ना पिए तो समझिए यात्रा अधूरी है।
1: बिल्कुल, ताजे दही को मथनी से खूब फेटा जाता है, फिर उसे हल्की मिठास, बर्फ और ऊपर मलाई की मोटी परत
0: और कुल्हड़ की सौंधी खुशबू। वाह, जैसे खुद स्वाद बन गई हो। ये सिर्फ पिए नहीं, गर्मी से राहत देने वाला बनारस की पहचान है।
1: अब बात उस चीज की जिसके बिना बनारस की पहचान अधूरी है।
0: जी हाँ, बनारसी पान।
1: और भाई, यहाँ पान खाया नहीं जाता, पान जमाया जाता है।
0: ताजे महकते पत्ते, कत्था, चूना, गुलकंद, सौंफ, इलायची, नारियल बारूदा और फिर प्यार से तैयार की गई ग्लोरी।
1: साधारण पान से लेकर शाही पान तक हर स्वाद का अपना फैन क्लब है।
0: हिंदी फिल्मों और गीता में भी बनारसी पान को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और इसी सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए इसे GI टैग भी मिला है।
1: बनारस में पान सिर्फ स्वाद नहीं, मेहमान नवाजी और अपनापन है।
0: अब हम बात करेंगे उस मिठाई की जो सिर्फ सर्दियों में मिलती है और मुंह में जाते ही गायब हो जाती है।
1: मलाईयो काशी की बेहद खास और पारंपरिक मौसमी मिठाई।
0: इसे बनाने की प्रक्रिया किसी कला से कम नहीं। दूध को उबालकर पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखा जाता है ताकि ओस की नमी उसमें उतर जाए।
1: सुबह उठते मथकर झाग निकाला जाता है, फिर उसमें केसर, इलायची और पिस्ता बादाम मिलाए जाते हैं।
0: इतनी हल्की कि मुंह में रखते ही घुल जाए। यही वजह है इसे बादलों की मिठास भी कहा जाता है।
1: और खास बात, ये सिर्फ सुबह घंटों तक ही मिलती हैं। देर हुई तो मलाई खत्म।
0: काशी के इन व्यंजनों में सिर्फ स्वाद नहीं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीढ़ियों की मेहनत छिपी है।
1: और अब एक जनपद एक व्यंजन योजना इस स्वादों को वैश्विक मंच देने जा रही है।
0: इसके तहत पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी मार्केटिंग पर काम किया जा रहा है।
1: सबसे अहम बात गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सभी उत्पादकों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।
0: यानी अब बनारस का स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगा।
1: और इसे स्थायी रोजगार बढ़ेगा, पर्यटक को नया आयाम मिलेगा और बनारसी कारीगरों की मेहनत को वैश्विक पहचान मिलेगी।
0: तो दोस्तों, आज की इस स्वाद भरी यात्रा में हमने जाना कि काशी सिर्फ मंदिरों और घाटों की नगरी नहीं बल्कि भारत की पाक विरासत का धड़कता हुआ दिल है।
1: यहाँ की कचौड़ी में सुबह की रौनक है, ठंडाई में त्योहारों की मस्ती, पान में अपनापन और मलाइयों में मौसम का जादू।
0: जब ये स्वाद दुनिया तक पहुँचेगा तब सिर्फ व्यापार नहीं होगा बल्कि भारत की संस्कृति का वैश्विक उत्सव होगा।
1: तो अगली बार बनारस जाए तो सिर्फ घूमिए मत, बनारस को चखिए भी।
0: नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए सफर, नए स्वाद और नई कहानी के साथ।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
2: कॉल 8826213131
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पील या हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेबर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा
4: एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे RJ आनंद को और मेरे साथ इस प्रोग्राम में है हमारी प्यारी दोस्त RJ रीना श्रोताओं प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो जी हाँ ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम अलग अलग मुद्दे उठाते हैं अलग अलग विषयों पर हम बात करते हैं ताकि हमारे समाज में और हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपनी सोच बदल सके क्योंकि देखिए जब उनकी सोच बदलेगी तो अपने आप ही समाज और देश प्रगति करेगा उन्नति करेगा और हमारा देश और भी खूबसूरत बनेगा क्यों RJ रीना स्वागत है आपका प्रोग्राम में बढ़िया
5: मैं तो बहुत बढ़िया हूँ आनंद तुम बताओ तुम कैसे हो इस गर्मी में इतनी ज्यादा गर्मी है यार कि पूछो मत
4: ऊपर से लाइट जो है बार बार भागे जा रही है तो यही कहने वाली थी
5: हाँ,
4: इसकी और मेरे विचार इसलिए मैच कर रहे हैं क्योंकि रात को मच्छर और पसीना दोनों ही परेशान कर रहे हैं ये ऊपर से AC में चली आती है और मैं ऊपर से नीचे खुले चौड़े में चला सड़कों पे रातों रात परेशान हो रहे हैं ना
5: बिल्कुल सही
4: और दोपहर में भी बहुत तेज गर्मी है श्रोताओं इस वक्त देखिए दोपहर हो रही है और चिलचिलाती तगड़ी धूप है हम कोशिश यही करेंगे कि हम तो स्टूडियो के अंदर ही रहें लेकिन आपसे भी गुजारिश करेंगे कि इस धूप में बाहर ना ही निकलो तो अच्छा है
5: और स्टूडियो में ना तब भी राहत मिल रही है सच बताओ बाहर जाके तो ऐसा लग रहा है कि भाई क्यों ही आ गए बाहर इतनी गर्मी मिर्ची वाली धूप लग रही है
4: करेक्ट और इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए अपने बार का ख्याल रखिए खैर दोस्तों आज सोच बदलो में हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही प्यारा है आज का हमारा विषय है पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी जो कि बहुत जरूरी और बहुत ही अहम मुद्दा है तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है आज और इसीलिए मैं और रीना ये टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं कभी सोचा है गर्मी हर साल सालों साल क्यों बढ़ती जा रही है बारिश का मौसम क्यों बदल रहा है और पेड़ क्यों कम होते जा रहे हैं दोस्तों आज का हमारा विषय ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है और आज की एक छोटी सी कहानी के जरिए हम आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे और आज की कहानी एक छोटे से गांव की है जी हाँ कुछ लोगों ने अपनी सोच बदली और पूरा गांव ही बदल गया कहाँ की है ये कहानी जरूर आपको बताएंगे चलिए रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए

0: तो आज की कहानी की जो शुरुआत है वो रीना करेगी, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम सोच बदलो में। एक गीत आपने सुना, उसके बाद अब कहानी सुनेंगे आप रीना के साथ और आनंद के साथ। जी रीना।
1: हाँ, तो मैं बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा गांव था
0: जी,
1: नाम था हरियापुर। पहले यहाँ गांव बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ पेड़, साफ नदी और ठंडी हवा, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए, प्लास्टिक हर जगह फेंकी जाने लगी और नदियाँ सूख गई। कुछ साल बाद हालत ऐसी हो गई, गर्मी में पानी भी कम पड़ने लगा। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। सो आगे की कहानी अब आरजे आनंद आपको बताएंगे।
0: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम आनंद के साथ। श्रोताओं, यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। दोस्तों, उसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, उसका नाम आरव था। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी पहले इस गांव में कितनी ठंडक थी और बहुत ही हरा भरा था, लेकिन अब इतना गर्म क्यों हो गया है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा क्योंकि पहले लोग प्रकृति को माँ मानते थे, जो हमारी प्रकृति थी उसे लोग पूछते थे, उसे माँ मानते थे, लेकिन अब लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं। आरव को यह बात दिल से लग गई। दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्या हम भी कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या हम पानी बेवजह बहाते हैं? क्या हम प्लास्टिक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो सोच बदलने का समय आ गया है।
1: अगले दिन आरव ने अपने स्कूल में एक छोटा सा अभियान शुरू किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम सब मिलकर हर साल सिर्फ एक पेड़ भी लगाए तो हमारा गांव फिर से हरा भरा हो सकता है। धीरे धीरे बच्चे जुड़ने लगे, फिर शिक्षक भी जुड़ने लगे, फिर पूरा गांव एक साथ देने लगा।
0: क्या बात है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही करके जो है ये गांव ने पूरा एक दूसरे का साथ दिया। और दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब कर सकते हैं। इस कहानी का मतलब सोच बदलो में सिर्फ इतना सही है कि आजकल जो हमारी प्रकृति से हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तभी बंद होगी, तभी रुकेगी, तभी थमेगी जब हम लोग अपनी सोच को बदलेंगे। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और हर में एक जिम्मेदारी ले कि हम हर दिन एक पेड़ लगाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और पेड़ लगाने के साथ साथ उसको अच्छे से पानी भी दें, उसकी देखरेख भी करें, उसका ख्याल भी रखें। श्रोताओं, कुछ चीजें हैं जो हम और आप मिलकर कर सकते हैं तो शायद हम हमारी प्रकृति को हम अच्छे से बचा सकें। जैसे साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। हालांकि रीना ने तो रोज ही बोला है, अगर ये पॉसिबल हो तो बहुत अच्छी बात है। पानी की बर्बादी कम कीजिए, जितना हो सकता है उतना ही पानी का इस्तेमाल करें। अक्सर खाना बनाते समय घर की लेडीज की टंकी खुली छोड़ देती है, ब्रश करते टाइम हम भी पानी की टंकी को खुला छोड़ देते हैं, वो बेहतर रहता है। कई बार हम वॉशरूम नहाने जाते हैं, पानी भर चुका होता है, उसके बाद भी पानी बहता रहता है। तो ये चीजें अगर हम कम कर देंगे तो शायद हमारी प्रकृति पहले की जैसी खूबसूरत और सुंदर हो जाए। अपना कंट्रीब्यूशन देना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कीजिए, जितना हो सकता है आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप सब्जियां लेने जा रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, तो घर के बने थैलों का इस्तेमाल कीजिए। प्लास्टिक का जितना आप कम इस्तेमाल करेंगे, जितना कम यूज में लाएंगे, उतना ही हमारी प्रकृति को हम सुंदर बना पाएंगे। कचरे को सही जगह डालिए। कल तो खैर वो हरा गीला और सूखा डब्बा चल गया है ना रीना? हाँ, तो उसमें आप जो है कचरा डालिए। ब्लू एंड ग्रीन कलर के बॉक्स होते हैं लगे हुए नगर निगम की तरफ से, बहुत ही खूबसूरत पहल है।
1: एक कचड़े में मतलब जो गीला डालते हैं और एक दूसरा सूखा कचरा डालते हैं,
0: तो बस सूखे में सूखा डालें, गीले में गीला डालें। और ये डस्टबिन का जो इस्तेमाल बताया गया है वो मेरे आपके हम सभी के लिए है। अगर हम इनका सही से इस्तेमाल करेंगे तो ऑफकोर्स हमारी प्रकृति और भी खूबसूरत और सुंदर लगेगी। यकीन मानिए दोस्तों, छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। जरूरत है सही समय पर सही सोच बदलने की। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं। 2 साल के बाद हरियापुर गांव में फिर से वो गांव हरा भरा लगने लगा, नदियां साफ होने लगी, हवा ठंडी लगने लगी और गांव के लोगों को समझ भी आ गया कि अब हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति भी हमारा ध्यान रखेगी। और बहुत जरूरी है श्रोताओं, ये कहानी नहीं है, एक्चुअली एक जेन्युइन थॉट है। और मुझे भी लगता है रीना, जब हम अपने आसपास प्रकृति का, अपने नेचर का ध्यान रखते हैं तो वो भी ध्यान रखता है। शुद्ध हवा हमें मिलती है, समय समय पे हमें फल, ताजे सब्जियां, दालें, सब कुछ हमें मिलता है, प्रकृति से तो मिलता है।
1: लेकिन वो तभी मिलेगी ना जब हम उसकी रक्षा करेंगे।
0: हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो उसकी रक्षा करना किसकी उसकी जिम्मेदारी है रीना,
1: वो हमारी
0: हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, जैसे रीना ने कहा आप डेली एक पेड़ लगा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है तो आप हफ्ते में एक बार पेड़ लगाइए।
1: बिल्कुल लगाइए, लेकिन जरूर लगाइए,
0: जरूर लगाइए। अगर आप नहीं लगा पा रहे तो जो लगे हुए हैं आपके आसपास पार्क में किसी खुले एरिया में, आप उनको पानी दीजिए, आप उनका ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। वो जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा वो आपको ब्लेसिंग्स भी देगा, वो मुस्कुराएगा भी और आप भी बहुत खुश होंगे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा। क्यों,
1: पहले के टाइम में तुम्हें देखा है कि हर घर के पास में एक पेड़ जरूर होता था।
0: बिल्कुल,
1: वरना फिर आप बाहर चले जाओ, सड़कों पर चले जाओ, पेड़ आपको मतलब पहले दिखते ही थे। लेकिन अब क्या है कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, वहां पर अच्छी अच्छी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, जिसके वजह से पेड़ तो कम हो गए लेकिन जनसंख्या यानी कि घर की तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज्यादा है। तो आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे, इस शो का मकसद यही है कि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें, पेड़ लगाएं ज्यादा से ज्यादा, पानी के जो वेस्टेज है वो कम करें। पहले के टाइम में होता था कि लोग कुएं से पानी भरते थे, नल से पानी भरते थे और उसी उतना ही पानी यूज करते थे जितना उनको नीड होती थी, लेकिन अब हम उससे ज्यादा बहाते रहते हैं पानी।
0: बिल्कुल सही कहा, तो पानी वेस्ट मत कीजिए। फिलहाल अभी एक काम करते हैं, छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद में और रीना मिलेंगे। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सोच बदलो रीना और आनंद के साथ, और ये प्रसारित होता है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ से। तो श्रोताओं मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल गीत के बाद।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से श्रोताओं, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप, और इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना फेवरेट सोच बदलो, जिसमें मैं और रीना आज एक कहानी के जरिए आपको समझा रहे हैं कि हमारी प्रकृति का ध्यान रखना कितना जरूरी है। आजकल तुम देखते हो रीना, बिना मौसम के बरसात हो जाती है। इवन अभी भी आप यकीन मानना, थोड़े टाइम पहले हमें लग रहा था कि गर्मियां आ गई, लेकिन उसमें ठंड आ रही थी। लोगों ने गर्म कपड़े बाहर निकाल लिए थे बारिश की वजह से भी, और थोड़ी ठंड भी, मतलब बेमौसम की ठंड हो रही थी। तो जिससे हमें लग रहा था कि हाँ भाई, जो प्राकृतिक है वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज है। वो हमें दिखा रही है, बता रही है, जता रही है कि भैया जागो, नहीं तो फिर आगे आपको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो।
1: वो इसीलिए ना कि हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं,
0: बिल्कुल बेवजह पेड़ काट देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता। लगाने की कम और काटने की ज्यादा कोशिश की जाती है,
1: जबकि पेड़ तो कुछ भी नहीं मांगता है, बल्कि आपको वो फल देता है, सब्जियां देता है, ताजी हवा। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे आनंद, गर्मी के टाइम में अगर पहले की बात करूं तो पहले क्या होता था कि पेड़ इतने ज्यादा होते थे ना कि जिनको भी अगर गर्मी लगती तो वो पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाते थे। पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था वहां पर, एक दूसरे से बातें भी करते रहते थे और दिन यही गुजर जाता था। लेकिन अब क्या है, हम पेड़ काट रहे तो उसके नीचे बैठ भी नहीं पाते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं ये। और श्रोताओं, हम तो सिर्फ इतना से कहना चाहते हैं सोच बदलो के माध्यम से कि आप भी प्लीज अपनी सोच बदलिए, निरंतर प्रयास कीजिए कि अपने प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ ना करके उसका ख्याल रखें। अगर आप किसी पार्क में जा रहे हैं, किसी खुले एरिया में जा रहे हैं जहां पर खूबसूरत ग्रीनरी है, तो उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है। उसे गंदगी से ना भर के उसकी साफ सफाई का ख्याल रखें। अक्सर हम अपनी परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो हम वहीं पर कुछ भी खा रहे होते हैं, प्लास्टिक की चीजें वहीं छोड़ के आ जाते हैं, चिप्स खाया बच्चे ने पैकेट वहीं फेंक दिया, तो उससे आसपास की गंदगी जो है ना वो बढ़ रही है, कहीं हो रही है। और उसका जो जिम्मेदार है वो कौन है? आम इंसान ही उसका जिम्मेदार है, यानी कि मैं और आप ही। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ताकि वो साफ और स्वच्छ बना रहे? मैं और आप ही तो लेंगे। तो बस इन बातों का जरा ख्याल रखिए, और बच्चों को डिसिप्लिन में रहे, कहीं बाहर जा रहे हैं जहां पर आपको और उनको पता है कि यहां गंदगी नहीं करनी है तो वहां नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। तो छोटी छोटी चीजें, इनका ख्याल अगर आप रखेंगे, आपका परिवार के लोग रखेंगे, हम रखेंगे, तो सोच भी बदलेगी, समाज भी बदलेगा, और खूबसूरती जो है प्रकृति की वो और बढ़ जाएगी। क्यों?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल क्या होता है ना कि हम कचरा भी अपने बगल में ही सरका देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप कचरा वहां पर देखेंगे कि कचरे के ढेर लग जाती है, फिर वो सड़ने लग जाता है, और जो उसे दूषित हवाएं आती है उसे हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसीलिए कचरे को भी एक अच्छी जगह रखिए, ताकि वहां पर जो जहां सब कचरे डालते हो।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा है। इसीलिए जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था श्रोताओं की, जो डस्टबिन है उसी में आप कचरा डालें। चलिए श्रोताओं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद वेलकम बैक है। मैं और रीना आपके साथ बने हुए हैं प्रोग्राम सोच बदलो में। कहानी के जरिए बता रहे थे कि कितना जरूरी है अपने पर्यावरण का ख्याल रखना, अपनी प्रकृति का ख्याल रखना। और श्रोताओं कहते हैं कि हम अक्सर यही सोचते हैं और हमारी सोच भी बन गई है कि दुनिया बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच तो यह है रीना, दुनिया बदलने के लिए ना बस एक छोटी सी सोच बदलनी पड़ती है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि सोच बदलते हैं तभी दुनिया अपने आप बदल जाएगी।
0: करेक्ट। तो अपनी दुनिया को बदलना है अगर आपने, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी लेकर आइए और एक कंटिन्यूटी में एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए। और दोस्तों, यह धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, यह हमारे बच्चों से उधार मिली है। श्रोताओं, अगर आज हम इसका ध्यान रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी साफ हवा और साफ पानी पा सकेगी। तो आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ आज के दिन, आज के इस खास टॉपिक पे, इस खास फुल सेशन में, कि देखिए आप जो है ना अपनी प्रकृति का अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो अपना कॉन्ट्रीब्यूट देना शुरू कीजिए। जब आप अपना कंट्रीब्यूट देंगे, छोटी छोटी चीज़ों को अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे, तो हमारा पर्यावरण और हमारी प्रकृति दोनों ही खूबसूरत बनेंगे। और जब ये खूबसूरत होंगी तो हमारा समाज भी स्वस्थ होगा, खूबसूरत होगा और मस्त होगा। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने।
0: और मुझे लगता है कि दोस्तों अपनी सोच को बदलने के साथ साथ ना, मेरा सिर्फ एक छोटा सा और आपके लिए सजेशन रहेगा कि आजकल ना गर्मियां हो रही है, गर्मियों में हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं हम दो बार नहाएं, हम चार बार नहाएं। नहाना कंपलसरी है, लेकिन आप बार बार अगर नहाएंगे तो इससे हमारा पानी भी वेस्ट होगा। पानी वेस्ट मतलब हम प्रकृति के साथ फिर से छेड़छाड़ पर आ गए हैं, क्योंकि हमें लगता है यार हमें खुद को ठंडक प्रदान करनी है तो हम नहा लेते हैं। तो तुम्हारा क्या मानना है रीना, क्या हम दो बार नहा के पानी वेस्ट नहीं कर रहे हैं? चलो दो बार नहाना तो छोड़ो, नहाना जरूरी है, लेकिन हम बड़ी बड़ी गाड़ियां धोने लग जाते हैं अपनी पानी के से।
1: हाँ,
0: उसमें कितना पानी वेस्ट करते हैं हम।
1: ऊपर से एक बात की जाए, हम घर को ऐसे धोने लग जाते हैं भैया जैसे नदी बहा देते हैं।
0: हाँ, ये
1: घर को साफ कर, आई नो कि आप देखिए घर में झाड़ू पोछा लगा सकते हैं वो ठीक है, उसमें कम पानी वेस्ट होता है पोछा लगाते हैं तो, लेकिन हम धोने लग जाते हैं ऊपर से सड़कों को उतना रगड़ रगड़ के धोने लग जाते हैं, पानी ऐसे बहा देते हैं जैसे भैया पता नहीं क्या, कितने टाइम से गंदा है सड़क। तो ऐसा नहीं करना है हमें, पानी को अगर आप सेफ रखेंगे तभी आप भी सेफ रहेंगे। और वही कहते हैं ना, जल बचाओ तो कल काम आएगा ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। देखिए सड़कों को धोना मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे आसपास में जो हम कई बार क्या करते हैं ना कि बहुत ज्यादा वेस्टेज कर देते हैं। शर्मा जी सामने सुबह सुबह टंकी खोल के खड़े हैं, बतिया रहे हैं वर्मा जी के साथ, पानी बर्बाद हो रहा है, तो वो नहीं करना है आपने, है ना शर्मा जी? अगर आप सुबह सुबह साफ सफाई कर रहे हैं तो जरा वर्मा जी थोड़ी देर के बाद बतिया लीजिएगा, पहले सफाइयां कर लो, उससे पानी वेस्ट नहीं होगा, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी सही जगह पर लगेगा और आप सही जगह पर काम कर रहे होंगे। क्योंकि कई बार हम बातूनी के चक्कर में अपना पानी की बर्बादी कर देते हैं, है ना? और अगर आप कहीं आसपास निकल रहे हैं अभी गर्मियों के इस टाइम में और आपको कहीं पानी की टंकी खुली नजर आए तो प्रयास करें कि वो बंद कर दें,
1: बंद करें बिल्कुल, है ना? ये ना सोचे कि कोई और आके बंद करेगा, बल्कि आप ही करिए।
0: या मुझे बहुत जल्दी है, एक मिनट एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आप अगर वहां जाओगे पानी का बंद कर दोगे टंकी तो शायद वो पानी कल आपके और मेरे फ्यूचर के लिए काम आ सकता है। क्यों?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल आपको भी पता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी में हम कूलर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते भी हैं ताकि गर्मी से हमें राहत मिले,
0: उसके अंदर पानी डालते हैं।
1: हाँ, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो आप कूलर में पानी डालते हैं उसको फेंके ना, उस पानी को बल्कि गमले में डालिए ताकि गमलों को भी पानी मिलता रहे, वो भी स्वस्थ रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और पेड़ पौधों को, और ये बड़ा अच्छा बोला रीना ने, पानी को यूटिलाइज कीजिए। बेसिकली क्या होता है ना, जब हम अपने छतों पे यानी कि टेरेस पे हम पक्षियों के लिए पानी भर के रखते हैं ना छोटे छोटे बॉल्स में, उनको चेंज करना जरूरी है, पानी जमा मत होने दीजिए। और अगर कूलर में आपका पानी है आप उसको चेंज करो बट उसको फेंको मत, उसी पानी को अगर आप किसी अच्छे से बर्तन में निकाल के उसी पानी को आप अपने गमलों में प्लांट्स में यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके, इन दिनों में क्या होता है ना हमारी छत की टैंक भी बड़ी गर्म हो जाती है और हम जो पानी चलाते हैं तो वो गर्म निकलता है एकदम आग की तरह, फिर हम उस पानी को थोड़ी देर बाहर रहते हैं ताकि ठंडा आए, है ना, इस चक्कर में ही पानी वेस्ट होता है। तो वो वाला पानी को आप बहाना नहीं है, उस पानी को भी आप सेव करें और सेव करने के बाद जो है उसे अपने प्लांट में यूज करें या उसको दो घंटे बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो वही पानी आपको ठंडा
1: हो जाता है। बिल्कुल सही,
0: बहुत ज्यादा चिल तो नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो श्रोताओं, छोटी छोटी चीजें करके आप अपनी सोच को भी बदल सकते हैं और अपने आसपास की प्रकृति को और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। फिलहाल बचाना पड़ेगा हमें और रीना को एक छोटा सा क्या म्यूजिकल वाला ब्रेक आ रहा है, तो हमें बचानी पड़ेगी अपनी एनर्जी ताकि हम दोबारा आके आपसे फिर से बातचीत कर सके। तो चलो एक छोटा सा गीत, उसके बाद आते हैं।

वेलकम बैक एक बार फिर से। यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। रीना और आनंद आपका साथ दे रहे हैं और आज हमने ढेर सारी बात करी। साफ पानी कितना जरूरी है, साफ हवा, शुद्ध हवा का होना कितना जरूरी है, पेड़ों को बचाना कितना जरूरी है। अगर हम इन सबका ख्याल रखेंगे तो हमारी प्रकृति और भी सुंदर और खूबसूरत लगेगी। कहानी भी हमने सुनाई इस प्रोग्राम के जरिए और अब हमारा जाने का भी समय हो गया है। पता नहीं चल रहा है ना रीना कितनी तेजी से समय निकला, लेकिन जाते जाते हमारी प्रकृति हमें क्या क्या देती है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। शुद्ध हवा, साफ पानी और हरियाली। लेकिन जरा सोचिए अगर हमारी हवा ही गंदी हो जाए, अगर हमें ताज़ी हवा मिलना ही बंद हो जाए तो क्या होगा? सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा श्रोताओं, बीमारियां बढ़ने लगेंगी और ज़िंदगी का सुकून कहीं जैसे खो सा जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपनी प्रकृति की रक्षा करें, पेड़ लगाएं, प्रदूषण कम और पर्यावरण को साफ रखें। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, अगर प्रकृति सुरक्षित है तो हमारी ज़िंदगी भी सुरक्षित है। तो आइए मिलकर आज हम सब एक छोटा सा कदम उठाएं और अपनी सोच को बदलें और अपने आसपास की चीज़ों का ज़रा खास तौर पर ख्याल रखें। स्पेशली पेड़ को लगाने के साथ साथ उसका देख रेख भी उसकी रखनी बहुत ज़रूरी है, उसका सही ख्याल रखना भी ज़रूरी है। बाकी पोल्यूशन कम करने के लिए अपनी गाड़ियों को ज़रा कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी गाड़ी से जो धुआं निकलता है ना वो भी प्रदूषण फैलाता है और हमारे आसपास की

0: व्यक्ति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्यों?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी की वजह से जो पर्यावरण में ये जो दिक्कतें आ रही है, हवा की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो सिर्फ गाड़ियों की वजह से ही तो हो रही है।
0: ये तो आपने सही कहा। तो दोस्तों, आज का सोच बदलो कार्यक्रम हमने पर्यावरण बचाने की इसमें बात करी, और अब हमें जाना पड़ेगा, हमारा जाने का समय हो गया है। और आज हमने जाना इस प्रोग्राम में पेड़, पानी और हवा से हमने जुड़ी हुई तमाम सारी बातें करी। तो बस जाते जाते इतना ही कहेंगे, पानी की बर्बादी को रोकिए, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल कीजिए, और हर साल कम से कम कुछ पेड़ तो आप जरूर लगाइए। तुम क्या कहोगी रीना जाते जाते?
1: मैं तो यही कहूंगी, आप मतलब हफ्ते में एक पेड़ नहीं लगा सकते, तो महीने में कम से कम एटलीस्ट दो पेड़ जरूर लगाइए।
0: करेक्ट, सही कहा आपने। और अब तो पेड़ों का सीजन

0: पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप पानी के भी अलग अलग फ्लेवर बना के रखें। आप पानी के अंदर कुछ लेमन्स के स्लाइस डाल सकते हैं, आप उसमें खीरे के कुछ स्लाइस डाल सकते हैं, वो एक वाटर आप तैयार कर सकते हैं। कुछ पुदीने की पत्तियां आप डालेंगे तो वो पानी और भी ज्यादा फ्रेश हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने फ्लेवर को चेंज कीजिए और पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि नारियल पानी का इंटेक भी आप ज्यादा से ज्यादा अपनी रूटीन में शामिल करें। अभी के लिए मैं और रीना लेंगे आपसे इजाजत, छोड़ के जाएंगे कुछ और खूबसूरत गीत के साथ। फिर आपकी और मेरी मुलाकात होगी जल्दी और रीना के साथ इसी प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है सोच बदलो। याद रखिए श्रोताओं, अगर आपकी सोच बदलेगी तो चीजें हमारी और आपकी अपने आप ही बदल जाएंगी। ऐसे ही बातों के लिए प्लीज सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।
1: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: बिल्कुल जी, बाय बाय, टेक केयर,
1: बाय।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी

प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: के लिए 60 दिन की समय सीमा तय, और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
7: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
6: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा, मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाट बद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगे। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
8: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
6: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुस जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
9: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमेरिका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
6: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
11: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
10: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
12: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
13: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
14: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
13: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
15: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ प्राची और मेरे साथ हैं आरजे आनंद।
16: हेलो प्राची, हाउ आर यू?
15: मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं आप बताइए, आप?
16: मैं अच्छा हूँ। आज तुम मुझे कौन से प्रोग्राम में लेकर आ गई हो? ये
15: आज मैं आपको लेकर आई हूँ महिला मंच, हमारा जो प्रोग्राम है, और आज हम करेंगे ढेर सारी बातें।
16: अरे वाह, महिला मंच में पुरुष मंच भी खोल दिया आज आपने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मेल फीमेल सब बराबर है और सबको सबके प्लेटफॉर्म पे जाने का राइट है।
15: बिल्कुल सही कहा आपने।
16: तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन, और आज आनंद भी आपके साथ रहेगा। और आज हम बात करेंगे उन महिलाओं की जो घर और दफ्तरों की दोनों की जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हैं।
15: आज आज की महिला डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, शिक्षक भी है और अधिकारी भी है। और हमारी बहुत सारी वुमेन ऐसी हैं जो बिजनेस वुमेन बन के उभर रही हैं, लेकिन इन कामयाबियों के पीछे उनकी संघर्षों की एक लंबी कहानी छिपी है।
16: बिल्कुल, तो आइए समझते हैं कामकाजी महिलाओं की चुनौतियों को और उनके हौसले को सलाम करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। क्यों प्राची?
15: हाँ बिल्कुल।

0: जी मैंने सोचा हम ही आपका वेलकम बैक कर लेते हैं। सभी सखियों को, भाभियों को और जितने भी पुरुष सुन रहे हैं उन भाइयों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। दीदी जी कैसी हैं आप? और प्राची जी आप बताइए, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं और माइक को हिला रही हैं भाई।
1: मैं तो एकदम बढ़िया। और हम बात कर रहे हैं आज महिलाओं मंच की। हम अपनी महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैसे स्ट्रगल करती हैं पूरे दिन भर और ऑफिस और घर की जिम्मेदारियों दोनों को बहुत अच्छे से निभाती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा प्राची तुमने। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लेडीज ना हर काम में एक्सपर्ट हैं। कोई काम ऐसा नहीं है जहां महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चल रही हो, है ना?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। जब एक हमारी महिला सुबह उठती है तो उसका दिन घर की जिम्मेदारियों से शुरू होता है। परिवार का ध्यान रखना होता है, उन्हें बच्चों की भी देखभाल करनी होती है और समय पर ऑफिस पहुंचना, ये सारी चीजें कहाँ आसान होती हैं।
0: बिल्कुल मुझे भी नहीं लगता है, ये तो बिल्कुल आसान है। स्पेशली आजकल की मम्मियों के लिए तो बहुत टिपिकल है, बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि आजकल तो मम्मियां भी वर्किंग हो गई है ना। बच्चों को संभालना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना, उसके बाद ऑफिस भी करना, फिर वापस घर आके घर को भी मेंटेन रखना, तो इट्स नॉट इजी प्राची। आई थिंक मुझे लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है। बट बिल्कुल कई बार कार्यस्थल पर भी उन्हें खुद को साबित करना होता है कि भैया पुरुषों से अधिक मेहनत करनी पड़ती है कई बार ये हमारी महिलाओं को, और साबित उन्हें ये करना होता है कि भैया हम भी किसी से कम नहीं है, हम अपने कार्य क्षेत्र में पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए हर एक चुनौती का सामना कर रही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आरजे आनंद जी आपने। और समाज की सोच भी, आपको पता है कई बार लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो उनके लिए एक तरह से एक हर्डल बन जाता है।
0: I agree.
1: आज भी हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो महिलाओं के बारे में ऐसी सोच रखते हैं कि हमें लेडीज को घर तक ही लिमिटेड रखना चाहिए, पर हमारी महिलाएं घर और ऑफिस दोनों को अच्छे से संभाल रही है।
0: नहीं, ये बहुत अच्छी बात है प्राची, और मुझे लगता है अब खैर जमाना बहुत बदल गया है, लेकिन कुछ ग्रामीण एरियाज, कुछ ऐसे फैमिलीज हैं जहाँ पर अपना एक रिचुअल्स बना हुआ है, एक रिचुअल्स चलता हुआ आ रहा है कि उनकी घर की बीबी हैं, जो उनके घर की महिलाएं हैं, वो घर से बाहर कामकाज करने के लिए नहीं जाती हैं या फिर वो नहीं जाएंगी। और देखिए हर किसी का अपना अपना एक रिचुअल्स होता है, हर किसी की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, हम किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर घर की महिलाएं कुछ कामकाज करेंगी तो शायद वो अपने फ्यूचर में थोड़ा सा और अच्छा कर पाएंगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होंगी और कहीं ना कहीं नया कॉन्ट्रीब्यूट हमारे समाज के लिए कर पाएंगी। क्यों प्राची?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात है कि हमारी महिलाएं इतनी टैलेंटेड होती हैं, इतना उनमें पोटेंशियल होता है जब वो घर से बाहर निकलती हैं, तो इस तरह से वो परिवार के साथ साथ समाज के लिए भी बहुत अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती हैं।
0: एब्सोल्युटली, और मुझे लगता है कि वो अपने करियर को और अपने काम को दोनों को ही बहुत अच्छे से मेंटेन करती हैं।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: तो मतलब मुझे लगता है कि प्राची आज हम वुमेन्स की बात कर रहे हैं महिला मंच में, और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो अक्सर महिलाओं को जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो उन्हें फेस करने पड़ते हैं, वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं आज उस पर बात करेंगे और क्या उनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, उससे पहले प्राची कुछ कहना चाह रही हो, प्लीज सी समथिंग।
1: आपकी बात सुन के, आपने जो बात कही कि महिलाएं सारा काम अच्छे से कर पा रही हैं, और ये वो इसलिए कर पा रही हैं क्योंकि उनके अंदर जो आत्मविश्वास है, जो उन्होंने हौसला अपने अंदर भर के वो चल रही है कि उन्हें रुकना नहीं है। तो उन महिलाओं को सम्मान देते हुए एक शायरी याद आ रही है।
0: वाह वाह।
1: हौसलों की उड़ान रखती हूँ, हर मुश्किल का समाधान रखती हूँ, मैं नारी हूँ जनाब, अपने भीतर पूरा आसमान रखती हूँ।
0: वेरी नाइस। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। बस इसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सुन रहे हैं महिला मंच, ये है बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम और ये है आपकी शहर का अपना प्यारा रेडियो
1: FM मुरादाबाद 89.6
0: रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहो। चलो जी अभी मिलते हैं एक छोटे से गाने।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 प्रोग्राम है महिला मंच। यहाँ पर महिलाओं की राइट्स की बात होती है, उनके अधिकारों की बात होती है, और आज इस महिला मंच में पुरुषों को भी यहाँ पर बुला के लाया गया है कि आप भी आइए और आप भी जरा बताइए कि काम काजी महिलाओं के लिए, तुम पुरुषों को जो लगता है ना बहुत मुश्किल नहीं होता है, बहुत ईजी होता है हर काम, सिर्फ मर्द को ही मुश्किल लगता है, बट ऐसा नहीं है, हम लेडीज को भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्यों प्राची?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने।
0: देखिए कोई भी काम करना प्राची मुश्किल तो नहीं है, है ना, अगर इंसान के अंदर वो कॉन्फिडेंस है, पोटेंशियल है, अगर उसके इरादे मजबूत हैं तो चाहे लेडीज हो या पुरुष हो बहुत अच्छे से अपने काम को कर पाते हैं, बट वही है सपोर्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: हाँ सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, अगर हम उन्हें सपोर्ट देंगे, उनके काम को अप्रिशिएट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगी।
0: करेक्ट, कामकाजी महिलाओं के सामने एक और चुनौती है, मैं आपको सच बताऊं तो, और ये देखा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती यही है, वो है टाइम मैनेजमेंट यानी समय का संतुलन। वो अपने सपनों को भी जीना चाहती हैं, अपने परिवार की उम्मीदों को भी पूरा करना चाहती हैं, लेकिन उसी बीच एक चैलेंज उनके लिए सबसे बड़ा हो जाता है, वो है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को मेंटेन करना ये अपने आप में एक बहुत चैलेंज है।
1: टाइम मैनेजमेंट, वो जिस तरह से टाइम मैनेजमेंट करती है यही चीज जो है उन्हें बहुत ज्यादा खास बनाती है।
0: Correct.
1: क्योंकि वो अपने बहुत खूबसूरत बात कही, वो अपने ऑफिस की भी अपना बेस्ट देना चाहती है और घर की परिवार की जो उनसे उम्मीदें हैं उन्हें भी पूरा करना चाहती हैं। तो ये जो बात है इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ऐसी विमेन, जो भी हमारी ऐसी विमेन है आसपास, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए उनके काम को।
0: करेक्ट, राइट राइट राइट। कहते हैं दोस्तों थक जाती है कभी कभी मगर रुकती नहीं है, कि थक जाती है कभी कभी मगर रुकती नहीं है, आंधियों के सामने भी झुकती नहीं है, उसके कदमों में छुपी है एक नई कहानी, उसके कदमों में छुपी है एक नई कहानी, वो कामकाजी महिला है जो हार मानती नहीं है मेरे भाई। और बिल्कुल हमें महिलाओं को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, क्यों प्राची?
1: बिल्कुल, कितनी खूबसूरत बात आपने कही, हमें ऐसी महिलाओं का सम्मान करने की जरूरत है और उन्हें सपोर्ट भी देने की जरूरत है ताकि वे अपने सपनों की उड़ान को और ऊंचा भर सके।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम भी एक ऊंची उड़ान भरेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद, जल्दी वापस मिलेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: जी दोस्तों, वेलकम बैक है आपका और आप सुन रहे हैं मैको बंच। मैं हूँ आपकी दोस्त प्राची और मेरे साथ हैं आरजे आनंद।
1: क्या बात है प्राची, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, महिला मंच में आके मुझे बहुत मजा आ रहा है। और इनफैक्ट अगर हम बात करें अपनी घर की विमेंस की, अपने घर की महिलाओं की, तो अपने आप में ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक हो जाता है। लेकिन आजकल तो खैर प्राची, हमारी घर की विमेंस के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई। तुम्हें पता है ना, जैसे आजकल महिलाओं को बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इतना आसान बना दिया हमारी घर की महिलाओं के लिए। बहुत सारे द्वार खोल दिए हैं। आप घर से जो लोग अचार बनाते हैं वो घर से ऑनलाइन अपने अचार को सेल्स कर सकती हैं, मतलब अपने अचार को, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकती हैं, घर बैठे बैठे मार्केट तक, लोगों तक पहुंचा सकती हैं। कोई अच्छी सिलाई करती हैं, कोई अच्छा बुनाई करती हैं, अच्छी कढ़ाई करती हैं, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं महिलाओं को आसान बना रही हैं, उनके काम को थोड़ा आसान बना रही हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी आ गई हैं।
0: हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। और क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं, जब से ये डिजिटल दुनिया का दौर शुरू हुआ है तब से वो अपने काम को, जो भी उनके तरफ पोटेंशियल है, कोई अच्छा डांस करती हैं, कोई अच्छी सिलाई करती हैं, अच्छी बढ़िया बढ़िया
1: कोरियोग्राफी करती हैं, बहुत हाँ, बढ़िया है ना। और कुछ वीमेन्स बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो रेसिपी बनाना सिखा रही है। और कुछ महिलाएं बहुत अच्छी टिप्स देती है, स्किन के घरेलू रेमेडीज बताती है। तो सोशल मीडिया ने, तुम्हारे कहने का मतलब, बहुत ईजी कर दिया उनके टैलेंट को आगे पहुंचाने के लिए ना।
0: बिल्कुल, सोशल मीडिया एक बहुत ही, कह सकते हैं हम, एक बहुत ही बढ़िया माध्यम बन गया है, ऐसा सशक्त माध्यम जो महिलाओं को बहुत आगे लेकर जा रहा है।
1: कॉटन, मुझे भी लगता है दोस्तों। और आजकल महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी आ गई हैं, क्योंकि महिलाएं हमारी किसी भी क्षेत्र में आप उठा लीजिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और आजकल महिला हो या पुरुष, हर किसी को अपने लाइफ में, हर किसी को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का राइट है, अपने सपनों को जीने का राइट है। क्यों प्राची?
0: बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की।
1: चलिए तो एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक एंड वी कम बैक विद यू आनंद एंड प्राची।
0: यस।

0: ही मकसद है देश की रक्षा। उसके लिए सबसे पहले आप सबको एक सिपाही बनना पड़ेगा, तभी आप कॉकपिट में दाखिल होने के लायक बन पाएंगे। कल से आप सबकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। इज दैट क्लियर?
1: यस सर।
0: इज दैट क्लियर?
1: यस सर।

0: वेलकम बैक है प्राची और आनंद के साथ हैं आप। आज हम लोग महिलाओं की राइट्स की बात कर रहे हैं, महिलाओं की उन कामकाजी विमेंस की बात कर रहे हैं जो अपने टैलेंट को अब बहुत इजीली लोगों तक पहुंचाती हैं। और आज हम उन सभी टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं जो हमारी विमेंस के लिए बड़े चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन जब वो दिल से करती है ना तो उनके लिए रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। राइट प्राची?
1: हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और डिजिटल मीडिया ने महिलाओं को काफी सारी अपॉर्चुनिटीज उनके लिए खोल दी हैं। वो बड़ी बड़ी वो बिजनेस अपने जो भी उनके अंदर स्किल था, आज उन स्किल्स को वो बहुत आगे बढ़ लेकर जा रही हैं और बड़ी क्या बोलते हैं एक तरह से एक बहुत ही बड़ा उन्होंने अपना बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर रही हैं वुमेन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाएंगे।
0: एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि हर वुमेन्स की अपनी एक स्टोरी है, अपनी एक संघर्ष की कहानी है,
1: बिल्कुल
0: है ना। हमारी मम्मियों को देख लो यार, जिन्होंने कभी बस कलर टीवी पे रंगोली देखी थी, आज वो भी इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दे रहे हैं, है ना। वेल, मेरी मम्मी तो खैर नहीं करती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो हमें और डांटती है कि फोन में घुसे रहोगे, इसके बाहर भी निकल के देखोगे। मैंने आजकल की मम्मियां बहुत एक्टिव होती हैं, अच्छी अच्छी हमारी मॉम्स को रेसिपी, अचार और पापड़ और ना जाने कितनी सारी चीजें आती हैं। और जब वो सोशल मीडिया के थ्रू लाखों लोगों तक सर्कुलेट करती हैं तो उन्हें जो खुशी मिलती है ना, उन्हें देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है।
1: बिल्कुल, जो उनका जो फील था हम बस घर तक समझते थे, मतलब ऐसा एक हमारा लोगों का कहीं ना कहीं परसेप्शन था कि उनका जो फील्ड है वो बस घर की चार दीवारी तक है। पर आज इस जो मोबाइल ने हमारी मम्मी, जो हमें हमारी आसपास आंटीज हैं, उनको एक तरह से पूरी तरह से वो एम्पावर्ड कर दिया है। जो भी उनके अंदर स्किल है, भले वो बहुत छोटा स्किल हो कि कोई बड़ा स्किल हो, फिलहाल स्किल तो स्किल होता है, उसका अपना इम्पोर्टेंस होता है।
0: मुझे लगता है प्लीज प्लीज कंटिन्यू प्राची।
1: और अपने उस स्किल के दम पर भले उनको मेहंदी आती हो, अपना बिजनेस उन्होंने इस तरह से एस्टेब्लिश किया है, जो नेटवर्क अपने लिए
0: क्रिएट किया है
1: और उससे जो वो अर्न कर रहे हैं, एक तरह से एम्पावर्ड बन रही हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत ही अच्छे दौर में हम आ गए।
0: करेक्ट। तो दोस्तों, बस आज का यही संदेश है कि जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए चुनौतियां आना कंपलसरी है। जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमारी लाइफ में चैलेंजेस चुनौतियां तो आती ही हैं। जिस लाइफ में चैलेंज रहा वो लाइफ ही किस काम की, क्यों प्राची? तो बस आपको चैलेंजेस का सामना करना है। और कोई लीडी अगर चुनौतियों का सामना कर रही तो हमें उनका सामना करना है, उनकी हौसला अफजाई करनी है, उनको कॉन्फिडेंस देना है और उनके साथ उनके काम को सराहना है और उनके आत्मविश्वास के साथ उन्हें और ज्यादा पुश करना है कि वो और मोटिवेट हों।
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और हमारा FM मुरादाबाद 89.6 ऐसी महिलाओं को सपोर्ट करता है और सब उन्हें और इन्हें प्लेटफॉर्म देता है कि वो आके अपनी बात कहें, अपने स्किल अपने टैलेंट से पूरे शहर को पूरी दुनिया को रूबरू कराएं।
0: क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात। और इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ फिलहाल तो मैं लूंगा आपसे इजाजत। बस यही कहना मैं चाहता हूं जाते जाते, क्योंकि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो वो सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ती हैं, पूरे समाज को, पूरे परिवार को और पूरे देश को आगे बढ़ाती हैं। राइट प्राची?
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हम करते हैं सलाम ऐसी महिलाओं को।
0: एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। और बस मैं तो जाते जाते इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर कोई स्किल है ना आंटी, अगर आपके अंदर कोई बढ़िया टैलेंट है दीदी, तो उसको बाहर निकालो भाभी जी, सिर्फ किचन तक मत रखो। अगर आप बहुत अच्छा राजमा चावल बनाती हैं, आप बहुत अच्छे कढ़ी चावल बनाती हैं, आप बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाती हैं, तो उसको सोशल मीडिया पे शेयर करो। हो सकता है वो छोले भटूरे का रेसिपी किसी और के काम आ जाए और उसकी जिंदगी में बल्ले बल्ले हो जाए। क्यों प्राची?
1: सही बात कह रहे हैं।
0: आजकल लड़कियां ना ऐसा हो गया है कि मतलब यू नो खाने बनाने के लिए उनके पास टाइम नहीं, क्योंकि स्टडी करना है, उनको फ्यूचर ड्रीम पूरे करने, तो यूट्यूब भी उनके लिए हेल्पफुल होता है।
1: हाँ।
0: है ना, तो ऐसे में जो हमारी प्यारी प्यारी भाभी जी हैं, जो हमारी प्यारी प्यारी दीदी जी हैं, जो बहुत एक्सपर्ट हैं,
1: इतना एक्टिव है,
0: एब्सोल्युटली, तो उनकी रेसिपी देख के आज की जेंजी को, आज की लड़कियों को एटलीस्ट कुछ तो हेल्प हो जाएगा यार। तो मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए है, प्लीज आइए एंड लाइफ में ऐसे ही रॉक मचाती रहिए। बाकी मोर डिटेल्स के लिए, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सुनते रहिए
1: FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: चलिए हम लेते हैं आपसे इस प्रोग्राम से इजाजत और फिर मिलेंगे जल्दी इस नए कार्यक्रम में और कुछ नई बातों के साथ। और ये तो महिला छह महिलाओं का कार्यक्रम, अगर आप आना चाहती हैं, आप कोई अपनी प्यारी बात करना चाहती हैं, कुछ सुनाना चाहती हैं, तो बिल्कुल आपके लिए भी ये मंच खुला है। क्यों प्राची?
1: आप हमसे जुड़ सकती हैं, हमारे फरमाइशी नंबर 8968968968 एक बार और बता देती हूँ, 9837896896।
0: बिल्कुल, इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए अपना टैलेंट और अपना नाम, हो सकता है अगली मॉर्निंग आप हमारे साथ स्टेशन पे हो। फिलहाल हम दोनों जाते हैं छोड़ के कुछ खूबसूरत गीत के साथ। आप सुनते रहिए महिला मंच, जल्दी मिलेंगे आपको एक और नई कहानी के साथ, कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू
1: FM मुरादाबाद 89.6।
0: बाय बाय
1: बाय।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: गुड आफ्टरनून श्रोताओं, नमस्कार, आदाब, प्यार भरा सलाम। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो हेलो फरमाइश, और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी। जी हाँ दोस्तों, यह है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। और आप मेरा नाम तो जानते ही हैं, नहीं जानते हैं ओहो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ, मेरा नाम है RJ खुशी। और दोस्तों मैं हाजिर हूँ आपका पसंद का, जी हाँ आपका पसंदीदा शो लेकर हेलो फरमाइश, जहाँ गाने सिर्फ बजते नहीं बल्कि आपकी यादें, आपकी मुस्कुराहट और आपकी भावनाओं से जुड़ जाते हैं। और कहते हैं ना साथियों कि रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से निभाए जाते हैं, रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से निभाए जाते हैं, दूर रहकर भी अपने दिल के बहुत करीब पाए जाते हैं। और आप जिसे श्रोता हूँ साथ तो हर दिन हर पल खास बन जाता है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी शो में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर है हमारा 9837896896। अभी बात करते हैं अपनी कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुई है। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, यस क्या नाम है आपका?
1: मैं गोपीनगर मुरादाबाद से वासु बोल रही हूँ।
0: जी वासु, बताइए कैसी हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: हाँ जी मैं भी ठीक हूँ, आप बताइएगा अभी क्या करते हैं आप?
1: कुछ नहीं बस आराम कर रहे हैं।
0: ओके अभी आराम कर रहे हैं, लेकिन करते क्या है प्रोफेशनली आप?
1: फर्स्ट ईयर की पढ़ाई है इस बार।
0: अच्छा फर्स्ट ईयर की स्टडी कर रहे हो?
1: हाँ हाँ।
0: ओके तो बताइएगा आज क्या सुनने का मन है आपका, कौन सा गाना सुनना चाहते हो आप?
1: छोटे छोटे भाइयों के पढ़े हुए हैं, अपने नाम है हम साथ साथ हैं।
0: ओके ये मूवी देखी है आपने?
1: हाँ देखी हूँ, बहुत अच्छी लगती है।
0: कितनी बार देखी है बताओ हमें?
1: आप ही बार देख ली।
0: अच्छा जितनी बार देखते हैं ना दिल नहीं भरता ना इस मूवी को देख कर? विवाह मूवी आपने बिल्कुल सही कही है, हम साथ साथ कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, हम आपके हैं कौन,
1: ये बहुत अच्छा है।
0: हाँ जी तो वासु ये प्यार से गाना आपको सुनवाते हैं, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, मोस्ट वेलकम डियर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक, बहुत ही प्यारा सा वासु की पसंद पर, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया। और अमेजिंग ट्रैक है, देखिए हर बहन भाई की ख्वाहिश होती है कि हमारे भैया की जल्दी से शादी हो और हमारे घर में जल्दी से प्यारी सी भाभी आए, है ना। तो चलो ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं, उसके बाद हम लौट कर आएंगे, तब तक आप भी मुझे कॉल कीजिएगा, नंबर है 9837896896।

0: नमस्कार श्रोताओं, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और श्रोताओं, अभी आपने बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक एंजॉय किया फ्रॉम द मूवी हम साथ साथ। और इस खूबसूरत गीत को गाया था कुमार सानू जी ने, कविता कृष्णमूर्ति जी की प्यारी सी आवाज, साथ में उदित नारायण जी दे रहे थे साथ। म्यूजिक डायरेक्टर थे राम लक्ष्मण। अमेजिंग ट्रैक ना दोस्तों। और सच कहूँ ना दोस्तों, घर में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट भी तो बड़े भैया की शादी को लेकर ही होती है ना। सबको इंतजार रहता है कि कब भाभी जी घर आएंगी, कब घर में हंसी चटोली बढ़ेगी और कब नए रिश्तों की मीठी शुरुआत होगी। और साथियों, कहते हैं ना कि रिश्तों की डोर जब प्यार से बन जाती है, रिश्तों की डोर जब प्यार से बन जाती है, हर दहलीज खुशियों से महक जाती है। भाभी के आने से घर सिर्फ घर नहीं रहता, हर कोना हंसी और अपना अपनेपन से भर जाता है। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश, हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी बताइएगा, क्या करते हैं
1: आप?
0: हाँ जी जी सर, बताइएगा।
1: गाना सुनना चाहते हैं
0: जी? हाँ जी बताइए, कौन से गीत सुनना चाहते हैं
1: आप?
0: गोरा रंग काला ना पड़ जाए। हाँ ओके, ठीक है सर। हाँ जी, गर्मी बहुत ज्यादा है।
1: हाँ,
0: जी
1: असल में मैंने ये पसंद किया, मैंने अपनी बीवी के साथ एक रील बनवाई थी नैनीताल में।
0: ओके
1: ठीक है,
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा सा गीत। शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: शुक्रिया मैम, सुनवाइएगा
0: जी। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं सब मिलकर ही प्यारा सा ट्रैक एंड लौट कर आती हूँ मैं। तब तक आप भी कॉल लगाओ मुझे, नंबर है 9837896896। और मुझे उम्मीद है कि आप कॉल लगाने का प्रयास कर रहे हैं और आपका कॉल जल्दी लग ही जाएगा। बस आप ऐसे ही ट्राई करते रहो और ये प्यारा सा अमेजिंग सा ट्रैक सुनो। बस मैं लौट कर आती हूँ इस प्यारे सी गाने के इस बार।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अशोक।

0: Or gift worth up to 4,200 rupees absolutely free. Saathi no cost EMI aur Bajaj Finance ki suvidha bhi uplabdh hai. Offer valid till stocks last. Visit Chawla Tyres opposite Madhubani Park, Kant Road, Muradabad. Call now 94122-11111.
1: Ja Simran, ja jeele apni zindagi.
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और श्रोताओं, आप सभी का फेवरेट शो चल रहा है हेलो फरमाइश, जहां पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपना फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हैं। और अगर बाहर निकलना भी पड़े ना दोस्तों, जाना पड़े काम के लिए, तो छाता, कैप या सनग्लासेस जरूर साथ रखें। खूब पानी पीते रहें, हल्के रंग के कपड़े पहने, जी हाँ कॉटन के, एंड कोशिश करें कि खुद को हाइड्रेट रखें। खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं, अच्छी सेहत की भी पहचान होती है दोस्तों, तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी, आपको भी आदाब, अपना शुभ नाम बताइएगा। शबनम जी, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है आपकी?
1: नहीं बस दीदी, ठीक नहीं थी, अब थोड़ा सही है और आपसे बात कर रहे हैं।
0: अच्छा हाँ, आवाज़ आपकी स्लो आ रही है ना, तो मुझे लगा कि तबीयत ठीक नहीं है शायद। अभी ठीक है ना?
1: हाँ दीदी, इस टाइम सही हूँ, मैं दवा खा रही हूँ।
0: अच्छा, मेडिसिन ले रहे हैं, कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाएंगे। दवाई आप समय पे लेंगे तभी तो स्वास्थ्य स्वस्थ होगा ना आपका। हाँ जी, ऑल गुड, हमारे यहाँ पर सब बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइएगा क्या सुनेंगी आज
1: दीदी। उसको पहले दो लाइनें कहूंगी।
0: जी बिल्कुल कहिएगा।
1: छोड़कर वो खुश है तो शिकायत कैसी, मुझे छोड़कर वो खुश है तो शिकायत कैसी, अब उन्हें खुशी ना देखूं तो ये मोहब्बत कैसी।
0: अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत सही लाइनें हैं आपकी। बताइएगा कौन सा गीत सुनेंगी आप आज शबनम जी। जी जी बताइएगा। अच्छा ठीक है, सभी के लिए सुनवाते हैं गीत। शुक्रिया कॉल करने के लिए, मोस्ट वेलकम। अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है? ओके, तो चलिए एवरीवन सुनते हैं प्यारा सा गाना शबनम जी की पसंद पर, और हम आपसे बात करेंगे अभी। लेकिन आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और मुस्कुराना बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है? क्योंकि आपकी मुस्कुराहट ही है जो आपको और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। तो यूँ ही कीप स्माइलिंग एवरीवन, मुस्कुराते रहिए।

0: हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है और हमारे साथ एक और लिसनर कनेक्ट हुए हैं, उनसे जानते हैं उनका नाम और जानेंगे उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्ते।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्ते। अपना शुभ नाम बताइएगा। कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मुरादाबाद से।
0: ओके, क्या करते हैं आप? हेलो।
1: हेलो,
0: यस बताइए, क्या करते हैं आप? हमने आपसे पूछा है, मालूम क्या है, क्या पढ़ाई करते हो, क्या करते हो?
1: पढ़ाई।
0: अच्छा, क्या स्टडी कर रहे हो अभी आप? कौन सी क्लास में हो? हेलो। ओहो, हाँ आवाज़ आ रही है आपको? मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। हाय, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है।
1: पढ़ाई करते हैं।
0: अच्छा, पढ़ाई करते हो। बताओ आप कौन सा गाना सुनोगे आज? ओहो, आपकी तमन्ना क्या है बताओ जरा।
1: मेरी तमन्ना है।
0: हाँ, क्या तमन्ना है आपकी, बताइए कौन है वो तमन्ना, जरा हमें भी मिलवाओ उस तमन्ना से। क्या तमन्ना है आपकी बताइए?
1: डॉक्टर
0: बनने की?
1: बनने।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी ख्वाहिश है आपकी, चॉइस तो अच्छी है। तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पता है ना। चलो ये प्यारा सा गाना आपको सुनवाते हैं। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, मोस्ट वेलकम डियर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी दिल, चाहे मेरा दिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, लेकिन हम आपसे कहते हैं आप मुझे फ़ोन लगाओ, चाहे आपका फ़ोन चार्ज हो या डाउन हो, लेकिन कॉल लगाना ही है। ठीक है एवरीवन, नंबर मैं आपको बताती हूँ 9883789689। ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जहाँ पर आप सुनते हैं अपनी पसंद के गाने और यहाँ पर बात करने का भी अवसर मिलता है किसी स्पेशल पर्सन को। आप अगर कोई ट्रैक डेडिकेट करना चाहते हैं, स्पेशल फील कराना चाहते हैं, तो ये मौका आपके पास है, बिल्कुल भी मिस ना करें, फटाफट से कॉल कीजिएगा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
3: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
4: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
3: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
5: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
6: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
7: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
6: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: हाँ जी दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और देखिए, अगर आपका दिल टूटा है ना तो वो जुड़ जाएगा, क्योंकि आप एफएम मुरादाबाद सुन रहे हैं। और एफएम मुरादाबाद पर जब आप अपनी पसंद के गाने सुनते हैं ना, तो फिर दिल खुशी से खिल उठते हैं। एंड अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुई है, क्या नाम है उनका। हेलो फरमाइश। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून, क्या नाम है आपका। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मेरे को, प्लीज दोबारा से बताइएगा। हेलो। हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइएगा अपना नाम। जी बताइएगा, कहाँ से बात कर रही हैं आप। अच्छा बताइएगा, आज क्या सुनोगे आप। अच्छा ठीक है, प्यारा सा ट्रैक आपको सुनवाते हैं। थैंक यू कॉल करने के लिए,
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और लौट कर आते हैं हम। तब तक आप कहीं बजाएं, यूं ही मुस्कुराते रहिए।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

0: हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना, अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहिनी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मोहिनी, क्या करते हो आप अभी?
1: पढ़ाई करते हैं।
0: अच्छा, पढ़ाई करते हो। और मोहिनी नाम आपका किसने रखा है, आपके पेरेंट्स ने? अच्छा, तो आप सबके मन को मोह लेती हैं, बताओ।

0: हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों देखिए, अभी वक्त हुआ है 4:16 और आपके पास अभी बहुत सारा समय है। आप भी मुझे कॉल लगा सकते हैं। अगर अभी आप सोच रहे हैं कि फ़ोन लगाएं या ना लगाएं, तो मैं कहती हूँ लगा लीजिएगा, क्योंकि जो आज समय मिला है, पता नहीं आगे का कुछ नहीं मालूम है, तो मैं ये कहती हूँ जो आपके पास समय है उसे यूटिलाइज़ कीजिए। फटाफट से मुझे कॉल कीजिए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश, हेलो हेलो फरमाइश।
1: हेलो दीदी नमस्कार।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार। अपना नाम बताइएगा।
1: नाम ग्राम जमरवा, जिला संबल से बात कर रहे हैं, आपके नियमित श्रोता हैं।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बढ़िया। थोड़ा स्वास्थ्य में दिक्कत हो गई गर्मी में काम करते हुए।
0: जी,
1: और काम भी हमारा ऐसा ही है, वो चिनाई का धूम में रहना पड़ता
0: है। हाँ, उसमें तो सर देखिए, धूप छाव सभी तरह के मौसम में रहना ही पड़ता है, काम करना ही पड़ता है।
1: ड्यूटी ऐसी होती है वो 8 घंटे की, सुबह 8 से 1 बजे तक और 1 बजे से 2 बजे तक का लंच हो जा, मतलब 1 घंटे का। 5:30-5 बजे तक का, मतलब लगातार धूम में काम रह रहे हैं।
0: हाँ जी, मोस्टली तो चिनाई जो होती है, घर जो बनाते हैं, धूप में ही होता है काम।
1: काम तो हमारा सिलाई का भी है, एस्कॉर्ट दिल्ली का, लेकिन वहाँ जा ना पाए अभी।
0: अच्छा, तो अभी आप फिलहाल चिनाई का काम कर रहे हैं, घर बनाने का, राइट?
1: हाँ, घर पे रुके हैं तो यहाँ का काम कर लिया, आज दिल्ली चले जाएंगे तो वहाँ का काम शुरू हो जाएगा।
0: जी चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, बताएगा आपकी तो क्या फरमाइश है।
1: फिल्म का नाम है हमराज, महेंद्र कपूर जी की आवाज में गाना है।
0: जी बताएगा।
1: गाने की बोल सर याद नहीं आ रही एकदम से, महेंद्र कपूर।
0: अच्छा, हमराज मूवी का ना, ठीक है सर, सुनवाते हैं ये। हाँ जी बताइएगा।
1: बीवी का नाम कविता, बेटी का नाम वैष्णवी, बेटे का नाम दिव्यान, भाई किशन व सोमपाल और पूरा परिवार से गाना सुनेंगे स्पीकर पर।
0: ठीक है सर, आपकी पूरी फैमिली के साथ सुनवाते हैं ये प्यारा सा ट्रैक। आपने कॉल किया, धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद
0: जी, तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक। लौट कर आते हैं हम, बस आप कहीं मत जाओ, यूं ही मुस्कुराते रहो, रेडियो बजाते रहो, गाने गुनगुनाते रहो और अपने सफर को खूबसूरत बनाते रहो आरजे खुशी के साथ।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: दोस्तों, हम तो आपका साथ निभाने के लिए तैयार हैं और आप भी हमारा साथ निभाइए। हमें फ़ोन लगाइएगा, मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है। यहाँ पर उन्हीं से डायरेक्टली बात कर लेते हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, लगता है सर को शायद वॉइस हमारी मिल पर नहीं पा रही है। हेलो फरमाइश, हेलो हेलो फरमाइश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो,
1: हेलो हेलो।
0: हाँ जी सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, कहाँ चले गए थे आप?
1: हेलो फरमाइश। अरे मैम, बस यहीं था आपके आस पास ही।
0: जी जी जी बताइएगा अपना नाम।
1: जी मेरा नाम फिरोज सैफी है मैम।
0: जी बताइएगा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं मैम कार्ट रोड बीकनपुर से बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, क्या करते हैं आप?
1: मैम मेरा अपना फर्नीचर का काम है, फर्नीचर का शोरूम।
0: ओके,
1: जी शादियों के सामान बनाते हैं हम दहेज।
0: अरे वाह, बहुत अच्छा काम करते हैं आप सब।
1: जी मैम।
0: तो कैसे चल रहा है आपका कारोबार?
1: काम की तो बस आपके आशीर्वाद है।
0: ओके, हाँ जी, हम तो हमारी ब्लेसिंग्स तो सभी के लिए होती हैं। हम तो चाहते हैं कि सभी
1: बिल्कुल
0: हमारे जितने भी लिसनर्स हैं हैप्पी रहें एंड हेल्दी रहें।
1: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल मैम। जी
0: बताइएगा, आप क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: मैम, मेरा एक सॉन्ग है सुनने के लिए। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा।
0: अच्छा, दीवाना मूवी का गाना सुनना है आपको?
1: जी जी मैम, दीवाना मूवी का, शाहरुख और ऋषि कपूर जी की।
0: जी ठीक है सर, ये गीत आपको सुनवाते हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए,
1: जी मैम, थैंक यू।
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, कुमार सानू जी की आवाज़ में प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं फ्रॉम द मूवी दीवाना, जो 1992 में फिल्म आई थी और बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म है, गाने भी बहुत प्यारा है। चलिए सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी ट्राई कीजिए कि आपका कॉल भी जल्दी से लग जाए इमिडिएटली। उसके लिए मैं आपको नंबर बताती हूँ 98 378 96 896।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और देखिए दोस्तों, अभी आपने ये अमेजिंग सा ट्रैक सुना कुमार सानू जी की आवाज़ में, और अभी बात करेंगे हम अपने अगले कॉलर से, क्योंकि दोस्तों मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉलर को लाइव लें, उनसे बातचीत करें, उनके फेवरेट गाने सुनवाएँ, एंड पूरी कोशिश तो हमारी ओर से यही रहती है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि आप कितना फास्टली मुझे कॉल लगाते हैं। तो चलिए बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते बहन जी।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर। अपना शुभ नाम बताइएगा और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: अनंतभूति बड़ौदा जिला जलगांव महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ बहन
0: जी। बताइएगा क्या करते हैं आप?
1: खेती किसानी का काम करते हैं बहन जी।
0: खेती किसानी का काम, तो खेतों में क्या लगाया हुआ है आपने?
1: हमारी इधर कॉटन।
0: अच्छा, ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। महाराष्ट्र में ज्यादा कॉटन का होता है ना दीदी?
1: ठीक है
0: जी, आप बताइएगा सर कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: बहन जी, गीत के बोल है सारा तेरा मेरा नहीं गुजारा।
0: अच्छा
1: हिंदी फिल्म बनफुल का ये गीत है,
0: जी जी जी जी
1: और हमारे बड़ौदा ग्रुप के श्रोता भाई के नाम लेना चाहता हूँ।
0: जी जी बताइएगा सर।
1: हमारे बड़ौदा ग्रुप के जाने माने श्रोता मित्र है हमारे मुरलीधर जी भाई ढोले, शरद जी वानखड़े, अशोक जी विष्णु, और आप भी बढ़िया पुराने गीत का आनंद उठाइए।
0: बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल किया। सुनवाते हैं प्यारा सा गाना किशोर कुमार जी की आवाज़ में। तो चलिए दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत सुनते हैं और हम लौट कर आते हैं। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896, कुमार सानू जी और साथ में लता मंगेशकर जी की बड़ी प्यारी सी आवाज़ में प्यारा सा गीत।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, आप सभी का वेलकम है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, अभी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: यस, क्या नाम है आपका?
1: गुंजन
0: जी। बताइए गुंजन, कैसे हैं आप?
1: मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ। आप बताओ, कौन सा गाना सुनोगे आज? ओके, चलो ये गाना आपको सुनवाते हैं। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। हाँ हाँ, पूरा ट्रैक सुनवाएंगे, आप इंतजार कीजिए थोड़ा सा। या तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक एंड फ्रॉम द मूवी धुरंधर से। प्यारी सी रिक्वेस्ट पर अभी अगर आपको भी डांस करने का मन है इस ट्रैक पर, तो बिना किसी तरीके तैयार हो जाइए। अगर हाँ, चाय बनाने में व्यस्त हैं तो फिर ठीक है, चाय पर ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि चाय और जब हम दूध बॉईल करते हैं ना गैस पर, तो थोड़ी सी भी अगर हमारी नज़र इधर उधर घूमती है ना, तो तुरंत फटाक से वो गैस पर निकल जाता है। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अगर चाय बना रहे हैं तो ध्यान से बनाइएगा और ये प्यार से गाना सुनिएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ अभी।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी धुरंधर से। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी हैं। हेलो फरमाइश। हाय, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम अलीजा है।
0: अलीजा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं कजरत पब्लिक स्कूल से पास हूँ।
0: अच्छा, क्या करती हो अलीजा? अभी कौन सी स्टडी कर रही हो, कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हैं
1: मैं ये तूने चाचे वाला गाना सुनूंगी।
0: हाँ, गाना तो हम सुनवाएंगे आपको। मैंने कहा अभी कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हो आप?
1: मैं यूकेजी में हूँ।
0: यूकेजी में है आप, इतनी छोटी? ओके, और रेडियो कब से सुन रहे हो आप? आपकी फैमिली में कौन कौन सुनता है रेडियो बताओ?
1: मेरे दादू सुनते हैं। हाँ। और मेरी मम्मी सुनती है।
0: ओके।
1: मेरे पापा सुनते हैं और मेरी बड़ी वाली बहन सुनती है और मैं सुनती हूँ।
0: अरे वाह, मतलब पूरी फैमिली रेडियो सुनती है ना? आप मेरा नाम जानते हो?
1: नहीं।
0: क्यों नहीं जानते हो? जानना चाहोगे क्या नाम है मेरा?
1: यस,
0: माय नेम इज खुशी।
1: यस।
0: तो चलो ये प्यारा से गाना आपको सुनवाते हैं अलीजे, ठीक है?
1: ओके मैम।
0: ओके, तो चलिए ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं अलीजा की पसंद पर। एंड ये तूने क्या किया, अमेजिंग ट्रैक। और दोस्तों, इस गाने के साथ मैं लेती हूँ आपसे जाने की अनुमति। एंड आपको नेक्स्ट आरजे करने वाली है, फुल ऑन एंटरटेनमेंट का डोज देने वाली है आपको। कौन आप जानते हैं? हरियाणवी छोड़िए भाई, जानते हैं नाम हो? चलिए बता देती हूँ, रीना नाम है उनका, जो आपकी शाम को बनाएंगी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा अनुमति, मैं मिलूँगी आपको सुबह 10 से 12। तब तक के लिए आपको कहीं नहीं है जाना, बस यहीं बने रहना है, सुनते रहना है एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से यूँ ही ख्याल रखिए। चाय कॉफ़ी जो भी पीने का दिल है तो पी लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर कोई चीज़ खाने पीने का मन कर रहा है ना तो खा लेना चाहिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा सही नहीं होती है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखो। बाय बाय, कीप स्माइलिंग।

0: 5 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए पेरिस में फ्रांस के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। श्री मोदी शाम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवर्टेक सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवर्टेक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडल है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के सेंट गोबेन कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोनोएद वजीन से मुलाकात की। बैठक में विनिर्माण सामग्री और निर्माण क्षेत्र में अवसरों पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने कहा कि भारत में सेंट गोबेन की मजबूत उपस्थिति और निवेश देश के युवाओं के लिए अवसर सृजित कर रहे हैं। श्री मोदी ने लॉजिस्टिक्स कंपनी CMA CGM ग्रुप के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोडल्फ सात से भी मुलाकात की। इस दौरान समुद्री परिवहन, लॉजिस्टिक्स और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया गया। श्री मोदी ने भारत में ग्रुप की मजबूत और बढ़ती उपस्थिति का उल्लेख किया। फ्रांस में भवन निर्माण की प्रमुख कंपनी सेंट गोबेन ने कहा है कि भारत उसके लिए महत्वपूर्ण विनिर्माण और निर्यात का केंद्र बन रहा है। पेरिस में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोनोएद बजीन ने कहा कि चेन्नई के पास कंपनी की एक बड़ी विनिर्माण इकाई न केवल घरेलू मांग के साथ ही खाड़ी देशों, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया को भी निर्यात करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई।

0: मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता से काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसीफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
0: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,317 मीट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी में सहायता की है। पिछले तीन दिनों में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान क्यूवेस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें स्थान पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
2: कॉल 8826213131।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
5: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
4: पर पापा।
5: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
6: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
4: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आप गाना एंजॉय कर रहे हैं। तुम्हें जो मैंने देखा सच में, और 5 बजते ही ना बस ऐसा मन करते भाई स्टूडियो में चलो, अब तो जो भी काम है उसको डिले करते हैं, बाद में करेंगे, लेकिन ये वाला जो काम है वो सबसे पहले है। और समय की बात करूं तो 5:10 हो चुके हैं। इवनिंग बजते शो में आप आर्जरीना के साथ कनेक्ट हो गए हैं, यानी कि 2 घंटे के लिए आप सभी के साथ ढेर सारी बातें करने वाले श्रोताओं, या फिर कार देश दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बॉलीवुड से लेकर मैच के दुनिया के दीवाने हैं, तो हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। आज का स्पेशल डे क्या है, हर टोटल चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। सो आपने कितने नहीं जाना जी, बस आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहना है। FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी, जो आप सभी के लिए सुबह से लेकर शाम तक ढेर सारी बातें और गाने जो आप सभी के पसंद वाले होते हैं। और जब बातें और गाने अपने पसंद के हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए, फिलहाल अगला गाना भी बहुत ही खूबसूरत है, इस गाने के बाद आप सभी से मिलते हैं और करते हैं ढेर सारी बातें। और भाई टेम्परेचर की बात करूँ तो देखिए, गर्मी आज वेरी हॉट, बहुत तेज तड़ाक वाली गर्मी है। और टेम्परेचर की बात करूँ तो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इस टाइम, इतनी तेज़ गर्मी। सोचिए जैसे जैसे शाम होता है वैसे वैसे यानी कि गर्मी ना बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। यानी कि कमरे के अंदर जाएंगे तो आपको ऐसा लगता है कि दूर से ही कि भाई किसी ने भट्टी जला रखी हो, ऐसा जलन वाली गर्मी हो गई है आजकल। अब इस गर्मी से राहत कैसे पाए वो भी हम बताएंगे, पहले उससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: अपने सपनों के घर की ओर बढ़ाइए पहला कदम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सोनकपुर स्थित सहाद्री हाउसिंग स्कीम पॉकेट ए के साथ।
1: यहाँ मिलेंगे 50 से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट, चौड़ी सड़कें, हरियाली, खेलने की सुविधाएं और बेहतरीन कनेक्टिविटी। अपने सपनों का घर बनाने का मौका ना चूके। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 17 जून 2026। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आज ही आवेदन करें janhit.upda.in पर जाकर या कॉल करें 6396176417 पर।
0: यूपी रेरा पंजीकरण संख्या UPRERA PRJ 4398/01/05/2026। जनहित में जारी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।
2: हरियाली से सजे हर गांव शहर,
3: प्रकृति से खुशियों की लहर।
4: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा आप गाना एंजॉय कर रहे हैं। तूने मारी एंट्रिया तो दिल में बजी घंटिया। हाय, दिस साइड आरजेरीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 5:21 हो चुके हैं श्रोताओं, और ये समय है यानी कि ट्रैफिक इस टाइम थोड़ा आपको ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन कई कई जगह पर आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो दिल में जो एंट्रिया है ना, घंटियाँ ना, वो टन टन टन बजने लग जाती है। बजने इसलिए लग जाती हैं क्योंकि हम करते हैं जल्दबाजी, और जब भी आप ट्रैफिक में रहे तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय आपको समझदारी से पेशेंस के साथ गाड़ी चलाना चाहिए, और साथ ही साथ हेलमेट सीट बेल्ट लगा कर जाना चाहिए। वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, और जो गाड़ी में है उनके लिए तो फिर भी ठीक है, वो धूप से बचे हुए हैं, लेकिन जो बाइक स्कूटी पर है और ई रिक्शा में जो बैठे हुए थे उनके लिए थोड़ा टफ पड़ जाता है, लेकिन जो स्कूटी बाइक पर है उनके लिए और भी ज़्यादा टफ पड़ जाता है। इसीलिए आप हेलमेट ज़रूर रखिए अपने साथ, कॉटन के जो दुपट्टा है पड़ना है उसको अपने साथ रखिए, फेस को कवर करके रखिए, क्योंकि भैया ये गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि आपके फेस पर अगर शाइन भी करता होगा ना, उस शाइन को भी ऐसे ख़त्म कर देता है ना, या छू मंतर कर देता है, कि टैनिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पता ही नहीं चलता भैया कल फेशियल करवा के आए थे या फिर हमने 2-3 महीने से फेशियल करवाया ही नहीं है, ये वाली फीलिंग आने लग जाती है। तो आपने अपना ध्यान रखना है, और साथ ही साथ सबसे मेन बात, इस मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने पानी पीते रहना। अगर आप पानी पीते रहेंगे तभी आप बच पाएंगे इस गर्मी से, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अपने साथ जहाँ भी जा रहे हैं बोतल अपने साथ लेकर रखिए। कोई हर कोई ये कहता है कि मैडम बोतल कैसे लेकर जा सकते हैं साथ में, अगर आप बोतल लेकर नहीं जाएंगे तो जहाँ पर सोचिए आप जा रहे हैं, अगर आपको वहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं मिला तो कैसे करेंगे। तो इसीलिए अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखिए। आप सोच रहे होंगे कि हमें वैसे वैसे बोतल नहीं रखना है, तो एक अच्छे से बोतल लीजिए और उसको जहाँ भी जाइए अपने साथ लेकर जाइए, थोड़ी थोड़ी देर में सिप सिप करके उसको पीते रहिए, ताकि ये बॉडी के लिए अच्छा रहता है। और एक म्यूजिकल ब्रेक उसके बाद करेंगे, यानी कि देखिए आज रानी लक्ष्मीबाई का क्या है, मतलब पुण्यतिथि आज उनकी, उसके बारे में बात करेंगे। सो फिलहाल के लिए एक और ये प्यारा गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं आप सभी के बीच ढेर सारी बातें करने के लिए श्रोताओं। लेकिन उससे पहले हम आपको यही कहेंगे कि कहीं नहीं जाना है जी, बस आरजेरीना के साथ कनेक्ट रहना है, क्योंकि अगला गाना भी ना बड़ा ही शानदार है, और ये गाना सिर्फ और सिर्फ आप के लिए है। क्या मस्त वाला गाना, नहीं सुनिए इस गाने को।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: मैंने ये प्लान किया।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आज जरीना के साथ इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूँ तो 5:00 यानी कि 34 मिनट हो चुके श्रोताओं, और आप आज जरीना के साथ कनेक्ट है। सो अब हम बात करने वाले हैं, आज का दिन हमारे लिए बहुत बेहद खास है क्योंकि आज है 18 जून, और 18 जून को आज हम मनाते हैं भारत की उस महान वीरांगना को जिनका नाम साहस, स्वाभिमान और देशभक्ति का प्रतीक बन चुका है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। यानी कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। हाथ में तलवार, दिल में मातृभूमि के लिए प्रेम और आंखों में आजादी का सपना लिए रानी लक्ष्मीबाई ने इतिहास में अमर गाथा लिखा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हिम्मत और आत्मविश्वास से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। वे केवल एक रानी नहीं थी बल्कि नारी शक्ति, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की जीवित मिसाल थी। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी उस अमर वीरांगना को सत सत नमन करते हैं। और उनके उन्होंने मतलब कभी ये हार नहीं माना कि देश के लिए हमेशा वो खड़ी रही, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन देश पहले है। देश प्रेमी जो अपने देश के लिए जीना चाहे, और आज उन्होंने इतिहास में उनका नाम लिखा गया है। और जो भी फॉर एग्जांपल देना होता है तो हम रानी लक्ष्मीबाई की देते हैं कि हर लड़के को उनकी तरह बनना चाहिए, अपने लिए आवाज़ उठाना चाहिए, अपने मातृभूमि के लिए। बहुत से आजकल की लड़कियां हैं कि खुद के लिए नहीं बोल पाती है। मैं कहती हूँ खुद के लिए बोलिए। और एक कहावत है ना, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आप भी ऐसे ही बनिए और आज जरीना के साथ कनेक्ट रहिए। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर जाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 5:36 हो चुके श्रोताओं, और भी ढेर सारी बातें करते रहेंगे। और आप चाहते हैं, आपको भी पता है कि संडे का जो दिन है बहुत ही स्पेशल होता है, बहुत ही खास होता है। और संडे 21 तारीख है, 21 जून है, और 21 जून आपके लिए बहुत खास बन सकता है। खास इसलिए बन सकता है क्योंकि फिर से मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए कुछ अटपटे चटपटे क्वेश्चन, जहाँ अगर आप विनर होते हैं तो आप अपने फादर साहब के लिए एक सरप्राइज है जिसको आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं। तो आप जानना चाहते हैं तो बस आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप सभी के बीच लेकर आऊंगी 6:30 वो कड़क सवाल कि आखिरकार क्या होएगा अगर आप राइट आंसर पहले देते हैं तो आप जीत सकते हैं टिकट जी। चलिए फिलहाल एक प्यारा गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं आप सभी के बीच और करते ढेर सारी बातें।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: नहीं यार, आज नहीं आ सकता यार मैं।
4: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर जाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। समय की बात करूं तो 5:00 यानी कि 45 मिनट हो चुके हैं। और सोचिए, जब आपसे कोई ये बोल दे कि भैया अब स्मार्टफोन आपने यूज नहीं करना है, उसको बैन कर दिया जाएगा, तो क्या हम रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, है ना। एक टाइम के लिए तो सदमे में चले जाएंगे यार, कि स्मार्टफोन के बिना कैसे रह सकते हैं। लेकिन देखिए, स्मार्टफोन ने ना हर एक चीज छीन ली है। अब आप सोचेंगे कि क्या, वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो स्मार्टफोन के बारे में मैंने बात की है, वो आखिरकार क्यों की है? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है, बल्कि अफगानिस्तान में, यानी कि वहाँ पर ये कह दिया गया है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो स्टूडेंट है, वो अब स्मार्टफोन नहीं चला पाएंगे, उनके लिए स्मार्टफोन बैन है। अगर वो ऐसे करते भी हैं तो उनके साथ कार्रवाई की जाएगी, यहाँ तक कि उन्हें जेल जाने की जाना भी पड़ सकता है। सो अब देखिए, अगर यही नियम इंडिया में शुरू हो जाए तो क्या होएगा भाई? आजकल हर कोई फोन के बिना रह नहीं पाता है, फिर वही खटके वाला फोन आ जाएगा, हाँ भैया वही लेकर जाएंगे ऑफिस में। लेकिन अफगानिस्तान में ये रूल है, यानी कि जो शुरू कर दिया गया है कि जो सरकारी कर्मचारी स्टूडेंट है, वो स्मार्टफोन यूज नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बैन है। अगर वो ऐसा करते हैं तो कार्रवाई की जाएगी, जेल भी जा सकते हैं वो। और आगे आगे देखिए क्या होता है जी। और इसके बाद आपको हम बताएंगे कि स्मार्टफोन ने आखिरकार क्या क्या हमसे छीना है, क्या नहीं छीना है, आपको भी पता है? तो अगर आप पता है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर है 9837896896। कि स्मार्टफोन के आने से क्या क्या चीज़ है वो जो आपसे दूर हो चुकी है, सोचिए और हमें मैसेज करिए। और फिलहाल के लिए गाना
5: अपनी ड्यूटी करन दो
6: यार, किसी को चाहिए।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार गाना आपने एंजॉय किया अर्जुरीना के साथ। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और जैसे मैंने आप सभी से बोला ही है कि आखिर का स्मार्टफोन आने से बहुत सी चीज़ें हैं वो जो बिछड़ चुकी हैं हमसे, है ना। सबसे अगर मैं पहले बात करूँ तो टीवी, पहले सब एक साथ बैठकर टीवी देखते थे गली मोहल्ले, क्योंकि हर घर में उस टाइम टीवी भी नहीं होता था, मुश्किल से दो चार घर में टीवी होते थे और सारे गली मोहल्ले के बच्चे उनके घर चले जाते थे टीवी देखने के लिए। और वही बात करूँ कैलकुलेटर, जो कि अलग से होता था, हम जो भी हमें नहीं आता था तो हम कैलकुलेटर से कर लेते थे प्लस माइनस। और साथ ही साथ टॉर्च, अब फ़ोन में ही है टॉर्च, जबकि पहले अलग से टॉर्च होता था, जब भी बाहर जाते थे तो टॉर्च लेके जाते थे, रात के समय घर में भी अगर बिजली चली जाती थी तो टॉर्च जलाते थे, लैम्पटेम जलाते थे, जो कि अब वो चीज़ नहीं रही है। साथ ही साथ कंप्यूटर, जो कि हम कहते हैं जो कंप्यूटर है आप उसको हर जगह लेकर नहीं जा सकते हो, लेकिन फ़ोन है जिसको आप हर जगह लेकर जा सकते हो। सिनेमा की बात करूँ तो पहले हर कोई थिएटर में मूवी देखने बहुत शौक से जाते थे, लेकिन अब की बात अब क्या हो जाता है कि यही बहाना मार देते यार, वैसे भी मूवी ख़त्म होने के बाद तो यूट्यूब पर OTT पर आई जाइए, तो अभी हम देख लेंगे ना, नहीं जाते हैं। और साथ ही साथ चिट्ठी, जो पहले के ज़माने में हम चिट्ठी लिखते थे और वो चिट्ठी न जाने एक महीने में दो साल में पहुंचता था, वो ख़त्म हो चुका है। साथ ही साथ अब नॉर्मल अगर हम फ़ोटो खींचना है तो हम फ़ोन से खींच लेते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था कि कैमरा मैन को ही बुलाया जाता था फ़ोटो खींचने के लिए। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो पिछड़ चुके हैं। और वहीं मैं बात करूँ किताबों की, तो पहले कोई भी कुछ चीज़ होता था ना तो हमें कुछ समझना होता था, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका समझते थे, बुक से पढ़ते थे, लेकिन अब क्या है ChatGPT का ज़माना है, फ़ोन है, हर चीज़ आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाती है। सो कहीं ना कहीं ये फ़ोन है ना हमारे ज़िंदगी में, यानी कि हर एक चीज़ को इसने मतलब भाई बोला कि टाटा बाय बाय, अब स्मार्ट हो चुके तो स्मार्टफोन यूज़ करो। मतलब जो पुरानी वाली चीज़ें हैं ना, मतलब हमने तो थोड़ा बहुत देखी भी है, लेकिन आगे के जो बच्चे आएंगे, पीढ़ी आएंगी, वो तो बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे, उनको तो पता ही नहीं होगा कि लैम्पटेम क्या होता है, टॉर्च पहले क्या होते थे, सब बिल्कुल स्मार्ट हो जाएगा। सो इसी के साथ एक म्यूजिकल गाना और उसके बाद कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ, मैसेज भी आए वो भी शामिल करेंगे और कड़क सवाल भी आप सभी के लिए लेकर आना है।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: अपने सपनों के घर की ओर बढ़ाइए पहला कदम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सोनकपुर स्थित सहाद्री हाउसिंग स्कीम पॉकेट ए के साथ।
2: यहाँ मिलेंगे 50 से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट, चौड़ी सड़कें, हरियाली, खेलने की सुविधाएं और बेहतरीन कनेक्टिविटी। अपने सपनों का घर बनाने का मौका ना चुके। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 17 जून 2026। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आज ही आवेदन करें janhit.updae.in पर जाकर या कॉल करें 6396176417 पर।
1: यूपी रेरा पंजीकरण संख्या PRJ43981/05/2026 जनहित में जारी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जेंटीना के साथ। और आप सभी को पता है कि दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, 6:06 हो चुके हैं श्रोताओं। और अब सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। आप सभी को पता है कि जो भी एग्जाम्स होते हैं ना, यानी कि पहले क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो लीक हो जाते हैं, जहाँ बच्चों ने 1 साल से 2 साल से तैयारी की हुई होती है ना, उनके जो मतलब असफल हो जाती हैं। वो इतना मेहनत करने के बाद भी सोचिए पेपर लीक हो जाए तो बड़ा टेंशन हो जाता है कि उस पेपर को फिर से दोबारा देना पड़ेगा, फिर से तैयारी करनी पड़ेगी हमें। लेकिन इसके लिए अब सरकार ने एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है, जो कि आप सभी को पता है कि नीट के जो एग्ज़ाम है 21 जून को होने वाला है। इसके लिए कदम उठाया गया है कि 21 जून को होने वाली इस परीक्षा के पर्शन यानी कि क्वेश्चन पेपर को लीक होने से बचाया जा सके, इसलिए देश भर में परीक्षा केंद्र तक उनकी सुरक्षित डिलीवरी की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना को सौंप दी गई है। खबरों ये कहा जा रहा है कि वायुसेना ने केवल 4 दिनों में 200 से अधिक उड़ानें भरकर क्वेश्चन जो पेपर है उसको सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जाएगा, और इससे उनकी जांच पड़ताछ भी की जाएगी कि कोई ऐसी पेपर जो अगर लीक होता है तो उनको तुरंत पता चल जाएगा और इसे एक्शन लिया जाएगा। अब जितने भी नीट के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो 21 तारीख को जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, बेधड़क बिंदास होकर जाइए। अब की बार आपका जो पेपर है वो लीक, क्वेश्चन पेपर है वो लीक नहीं होएगा। आपने जितना मेहनत किया है, आप अपने मेहनत पर के दम पर जाइए, एग्ज़ाम देकर आइए। और जिन्होंने अभी तक भैया मेहनत नहीं की है, वो सोच रहे होंगे कि ठीक है पास हो जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकार ने कदम उठा ली है। तो जिन्होंने अभी थोड़े से डिले कर रहे हैं ना पढ़ाई में, अपना ध्यान दीजिए और पढ़िए, क्योंकि मेहनत का फल ना आपको मिलता ज़रूर है। और जिसमें हम ये कहते हैं ना कि यार चल ठीक है हम किसी से पूछ लेंगे काम हो जाएगा, वो काफ़ी टाइम तक नहीं चलता है। चलता वही है जो सत्य यानी कि जिसने तैयारी की हो, जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है, काम उसकी बनती है, भले ही लेट हो लेकिन काम वही होता है। चलिए उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि अगर पानी आप पीते हैं तो कौन से बर्तन में अगर आप डालते हैं तो पानी आपके लिए क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या फ़ायदे नहीं हो सकते, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए कुछ मैसेज आ गए, उनको भी शामिल कर लेते हैं। रीना जी, कैसी हो आप? जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्या बात है जी। थैंक यू सो मच। और गुड इवनिंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड इवनिंग सर। और अगले मैसेज की बात करूं तो आकाश जी मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं, गुड इवनिंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड इवनिंग जी। और इनका कहना है कि आज तो मैं रेडी हूं मैडम जी, आपके जो भी क्वेश्चन पूछोगी ना सबसे पहले आंसर देना है मैनू जी। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप अभी से ही रेडी हैं। तो और अगले मैसेज की बात करूँ तो मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी, सैयद शारिक अली जी कनेक्ट होते हैं, इनके दोस्त हैं। गुड इवनिंग रीना जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आपका शो सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है और गाने भी बहुत अच्छे बिंदास प्ले कर रही हो, थैंक यू सो मच जी। अगले मैसेज की बात करूँ तो रूपाली जी कनेक्ट होती है मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि गुड इवनिंग मैडम जी, क्या हाल चाल है आपके? जी बहुत बढ़िया है, आप बताइए कैसे हैं? गर्मी बहुत ज़्यादा करवा रखी है आपने, वेरी हॉट। हाँ जी, लेकिन हम ये तो है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, अगर सोचिए हम और हॉट हो जाएंगे तो और भी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी इस गर्मी में राहत हमें ही रखना है। और मैं आपको बताऊंगी भी कि पानी आप कौन से बर्तन में पीते हैं, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम पानी पी तो घड़े में रखते हैं, तांबे के बर्तन में रखते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि कौन से बर्तन में रखने से क्या बेनिफिट मिलता है। उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए गाना और उसके बाद लेकर आएंगे आप सभी के लिए कड़क सवाल।

0: अपने सपनों के घर की ओर बढ़ाइए पहला कदम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सोनकपुर स्थित सहाद्री हाउसिंग स्कीम पॉकेट ए के साथ। यहाँ मिलेंगे 50 से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट, चौड़ी सड़कें, हरियाली, खेलने की सुविधाएं और बेहतरीन कनेक्टिविटी। अपने सपनों का घर बनाने का मौका ना चुके। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 17 जून 2026। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आज ही आवेदन करें janhit.upda.in पर जाकर या कॉल करें 6396176417 पर। यूपी रेरा पंजीकरण संख्या यूपी रेरा PRJ43981/05/2026 जनहित में जारी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।
1: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।

क्या बात है जी, गर्मी वाला गाना तो सुन लिया हमने, लेकिन गर्मी भी उतनी ताबड़तोड़ वाली पड़ रही है। टेम्परेचर की बात करूँ तो 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है आज की, और गर्मी बेहद ज़्यादा है। सो अर्जेंटीना आप सभी के बीच कनेक्ट हो गई है श्रोताओं, और इवनिंग मस्ती शो में हैं आप। और समय की बात करूँ तो 6:19 हो चुके हैं, और इस गर्मी में जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि पानी पीते रहना चाहिए, और पानी अगर आप किन किन बर्तन में पीते हैं तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं आपको, चलिए जी जानते हैं। आखिरकार अगर आप तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं तो आपको ये गैस, मोटापा और पाचन तंत्र के लिए बेहतर रखता है, आपको पाचन तंत्र आपकी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है। साथ ही साथ अगर आप मिट्टी के बर्तन में पानी रखते हैं तो एसिडिटी, गर्मी से आपको राहत मिलती है, यानी कि ये बॉडी की तासीर को ठंडा रखता है। वहीं अगर पीतल के बर्तन की बात करूँ, अगर आप पीतल के बर्तन में पानी रखकर पीते हैं तो इम्यूनिटी और जोड़ों के जो दर्द में है ना, वो आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ चांदी के बर्तन में अगर आप पानी रखते हैं तो मानसिक शक्ति और शीतलता के लिए माना जाता है। वहीं लोहे के बर्तन में अगर आप पानी रखते हैं तो आयरन की कमी, खून की कमी के लिए ये बेहद फायदेमंद माना जाता है। वहीं स्टील के बर्तन में बात करूँ तो हम स्टील के बर्तन में तो रोज ही पानी पीते हैं, गिलास समझ लो, बॉटल लेकर जाते हैं कहीं पर, वो स्टील का होता है, तो वो सामान्य और दैनिक उपयोग के लिए है। लेकिन अगर आप तांबे, मिट्टी के बर्तन, पीतल, चांदी, लोहे के बर्तन में अगर आप पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी में बेहतरीन बदलाव आप देखने को मिलेगा साथ ही साथ। और इस गर्मी में है, देखिए जितना हो सके मिट्टी के बर्तन का पानी पीजिए। हम बहुत से हैं कि भैया उनको बोल दो ना कि उनको तो बस चिल्ड पानी चाहिए, कि हमें चिल्ड पानी चाहिए तभी हमें प्यास, हमारी जो प्यास है उससे राहत मिल पाएगी। लेकिन आपको ये पता है कि अगर आप ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो बस वो कुछ देर के लिए आपकी प्यास को ख़त्म करता है, उसके बाद आपको प्यास लगती रहती है। अगर आप मिट्टी के बर्तन में पानी रखकर पीते हो तो उससे आपकी बॉडी को ठंडक भी मिलती है और शीतलता भी मिलती है, और साथ ही साथ इस गर्मी से आपको राहत भी मिलती है। तो श्रोताओं मिलते हैं एक कड़क सवाल के साथ, उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक, और इस गाने को एंजॉय करिए, लौट कर आते हैं जी। और सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

हैंगओवर। आय हाय हाय हाय, क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है और आर्जरीन आप सभी के बीच कनेक्ट हो गई है जी। कड़क सवाल लेकर, बस थोड़ा सा आपने ध्यान से सुनना है और आंसर एकदम आप चुटकियों के अंदर दे सकते हैं जी बिल्कुल, लेकिन उससे के लिए ना आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी आप राइट आंसर दे पाएंगे जी।

हमारा आज का कड़क सवाल ये है, महेश के पिता के चार बच्चे हैं, ध्यान से सुनिएगा, महेश के पिता के चार बच्चे हैं, सुरेश, रमेश, गणेश और चौथे बच्चे का नाम बताना है आपने। हमारा मैजिकल नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करके बताना है। अगर आप देते हैं सबसे पहले राइट आंसर तो आप जीतते हैं टिकट, यानी कि 21 तारीख को है फादर्स डे, संडे है, और योगा डे भी है, म्यूजिक डे भी है, लेकिन फादर्स डे अपने फादर्स के लिए एक गिफ्ट आप उनको दे सकते हैं, मूवी देखने के लिए मूवी टिकट आप जीत सकते हैं। सो वंस अगेन एक बार और मैं रिपीट करती हूँ आज के कड़क सवाल, महेश के पिता के चार बच्चे हैं, सुरेश, रमेश, गणेश, चौथे बच्चे का आपने नाम बताना है, सोचिए और मैसेज करिए। फिलहाल के लिए गाना बहुत ही प्यारा, सो इस गाने को एंजॉय करते हैं जी।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अशोर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: हरियाली से सजे हर गांव शहर,
2: प्रकृति से खुशियों की लहर।
3: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

क्या बात है जी, बादशाह की आवाज में शहर की लड़की वाला आपने गाना एंजॉय किया है श्रोताओं। और समय की बात करूँ तो 6:38 हो चुके हैं और बॉलीवुड के दीवाने हैं आप, है ना? अरे है मूवी देखने के तो दीवाने हैं ना आप, पता है जी, पता हम यही करते रहते कि भैया कौन सी मूवी अब थिएटर में रिलीज होने वाली है। सो आज की तारीख यानी कि 18 जून और कल है 19 जून जो कि रिलीज होने वाली है कॉकटेल मूवी, कॉकटेल 2 मूवी रिलीज होने वाली है 19 जून को। और साथ ही साथ 26 जून की अगर मैं बात करूँ तो वेलकम टू द जंगल मूवी रिलीज होने वाली है। अक्षय पाज की मूवी है भाई साहब, और अक्षय पाज की मूवी भैया सारी जितनी भी होती है ना मजा ही आ जाता है, सच बताऊं तो देखकर जो इंसान ना हंसे ना वो भी हंसने लग जाता है इनकी मूवी देखकर, इतनी शानदार मूवी होती है इनकी एक्टिंग, आय हाय हाय क्या ही कहे, मतलब शब्द नहीं होते इनके लिए सच बताऊं तो। सो कॉकटेल 2 और वेलकम टू द जंगल मूवी रिलीज होने वाली है, यानी कि कॉकटेल 2 19 को और वेलकम टू द जंगल यानी कि 26 जून को रिलीज़ होने वाली है श्रोताओं। तो हम ना पहले से ही प्लानिंग करने लग जाते हैं कि भैया दोस्तों के साथ मूवी देखने चलते हैं, आखिरकार आपके बाहर कौन से दोस्त का जो पॉकेट है वो खाली करवाना है ना, प्लानिंग करते रहते हैं। अच्छा ठीक है चलो तुम ना मतलब जितने भी टिकट्स है वो तुम ले लेना, बाकी खाने पीने का है ना वो मेरी तरफ से रहेगा, यही डिसाइड करके जाते हैं दोस्तों के साथ, तो यही डिसाइड होता है ना। और मज़ा भी अलग ही आता है जब आप दोस्तों के साथ मूवी देखने जाते हो। फिलहाल दोस्तों के साथ तो ठीक है, लेकिन 21 तारीख को है फादर्स डे, तो आप अपने फादर्स को अगर मूवी दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें राइट आंसर पहुंचाना पड़ेगा जी, तभी आप अपने फादर साहब को गिफ्ट दे सकते हैं यानी कि टिकट में उनके लिए प्यारा सा सरप्राइज। सो आज का कड़क सवाल भी बड़ा ही सिंपल है जी, आपने ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो आज हमने आपसे पूछा है, महेश के पिता के 4 बच्चे हैं, सुरेश, रमेश, गणेश और चौथे बच्चे का आपने नाम बताना है। हमारा मैजिकल व्हाट्सएप नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करके बताना है। वंस अगेन एक बार और रिपीट करती हूँ क्वेश्चन, यानी कि महेश के पिता के 4 बच्चे हैं, सुरेश, रमेश, गणेश और चौथे बच्चे का आपने नाम बताना है। चलिए सोचिए, फिलहाल हम कॉल मतलब दिल का टेलीफोन लगा लेते हैं कहीं पे, ठीक है जी।

0: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है। आज रीना के साथ FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। सच में आज के जो गर्मी है ना, ताबड़तोड़ वाली गर्मी है। जस्ट अभी मैं बाहर से आई हूँ और बाहर जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैं क्यों ही बाहर आ गई हूँ। मतलब AC में बैठे रहो तब तक तो आपको मतलब शांति लगेगी, बाहर ऐसा लगेगा कि जैसे अंदर का वेदर है वैसे ही बाहर का भी टेम्परेचर होगा, लेकिन एक्चुअल में जब बाहर निकल के देख रहे हैं तो भाई साहब इतनी गर्मी है ना कि सोचिए। मतलब 7 बजने वाले हैं और 7 बजने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बाकी है, और गर्मी प्रचंड वाली जो गर्मी है, इतनी गर्मी, मतलब भगवान जी चाहते क्या है, क्या करके मानेंगे क्या करके नहीं मानेंगे श्रोताओं। लेकिन देखिए, हमें अपना ध्यान रखना है, ज़्यादा गर्मी है यानी कि सुबह 12 बजे से लेकर शाम के भाई 5 बजे तक कहीं बाहर ना जाए, जितना हो सके उतना बचिए आप, तभी से गर्मी से बच सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक बार लू के चपेट में आ गए तो बहुत सी दिक्कतें होने लग जाती है बॉडी में। सो इसीलिए अपना ध्यान रखना हमारे हाथ में ही है। आप चाहते हैं तो अच्छे भी रह सकते, बीमार भी हो सकते हैं, इसीलिए खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, अपने फैमिली वालों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, खासकर बुजुर्ग और बच्चों का ध्यान रखना इस गर्मी में बहुत ज़रूरी है। और आज का जो कड़क सवाल है, सोचिए, क्योंकि अगली बारी अब सिर्फ और सिर्फ आपके मैसेज की ही है कि कौन बनते हैं आज के धुरंधर विनर, धुरंधर कौन बनते हैं जो जीतते हैं आज के टिकट। तो चलिए, आज का क्वेश्चन हमारा ये है, महेश के पिता के 4 बच्चे हैं, सुरेश, रमेश, गणेश और चौथे बच्चे का आपने नाम बताना था मैसेज करके। सोचिए और फटाफट मैसेज करिए, क्योंकि अगले गाने के बाद सिर्फ और सिर्फ बारी आपकी ही है जी।

0: अगर आप
1: चलिए जी, बहुत आपने गाना एंजॉय किया है, शाम शानदार तो हो ही रही है और घर में भी इतनी प्रचंड वाली है कि क्या ही कह सकते हैं। आरजे रीना के साथ कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में, और समय की बात करूँ तो 6:54 हो चुके हैं जी। और चलिए आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं कि किनका क्या मैसेज आता है। आज का कड़क सवाल यही है, महेश के पिता के 4 बच्चे हैं, सुरेश, रमेश, गणेश और चौथे बच्चे का अपने नाम बताना था। तो चलिए देखते हैं किनका क्या मैसेज आता है हमारे पास।

और अगले मैसेज की बात करूँ तो हमारे पास मैसेज आता है यानी कि आज़ाद नगर करोला मुरादाबाद से सैयद सारिक अली जी का, इनका कहना कि महेश है। ओके। और अगले मैसेज की बात करूँ तो सतवीर सिंह हमारे साथ कनेक्ट होते हैं कार्ट रोड मुरादाबाद से और इनका कहना है कि महेश है। अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आता है हमारे पास इरशाद हुसैन अंसारी जी का, राइट आंसर इनका कहना है कि महेश है। और अगले मैसेज की बात करें तो चौथे बच्चे का नाम दुर्गेश है रीना जी। ये दुर्गेश जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, क्या बात है जी, अपना ही नाम बता दिया सर आपने, ओ माय गॉड। अगले मैसेज की बात करूँ तो महेश है ये हमारे साथ कनेक्ट होती हैं। हेलो रीना मैम, गुड वाला इवनिंग है, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, बिंदास गाने प्ले कर रही हो, चाय पी लीजिए। अरे मेरी मैया गर्मी बहुत ज़्यादा है जी, चाय। थैंक यू सो मच, अपने चाय, आप चाय पीने के लिए हमेशा पूछती हैं, कृपया करके कभी स्टूडियो में भी चाय लेकर आ जाइए, आपके हाथ का चाय चखना है ज़रा। और सुबह से लेकर शाम रात तक बस रेडियो हवाएं चल रही हैं और साथ ही साथ रेडियो सुनती रहती है, मज़ा आ रहा है, क्या बात है जी। ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है जी, बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और विक्की सागर जी का कहना है कि महेश है चौथे बच्चे का नाम। ओके। आज के हमारे विनर बनते हैं डॉक्टर सैयद सारिक अली जी। तो सर आप अपने पैरों को थोड़ा कष्ट दीजिए और स्टूडियो आइए, और आप अपना टिकट जीत गए हैं। सो फादर्स डे पर आप अपने डैडी के साथ जा सकते हैं मूवी देखने के लिए, और मतलब 12 बजे से आप 12 बजे के बाद आएंगे तभी आपको टिकट्स मिल पाएगा, उससे पहले भी मिल जाएगा। आप बनते हैं मेरे शो के विनर, और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाज़त। कल मिलेंगे सेम टाइम एंड सेम जगह, करेंगे ढेर सारी बातें। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि शनिवार को हम आएंगे टिकट लेने के लिए, तो शनिवार को आपको कोई भी नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि टिकट्स शनिवार को हम सभी इवेंट्स में रहेंगे, तो इसीलिए आप कल आ सकते हैं, या फिर अगर रात को शो देखना है तो आप संडे को सुबह आ सकते हैं। चलिए जी, फिलहाल अगले गाने की तरफ, और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाज़त। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: अपने सपनों के घर की ओर बढ़ाइए पहला कदम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सोनकपुर स्थित सहाद्री हाउसिंग स्कीम पॉकेट ए के साथ। यहाँ मिलेंगे 50 से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट, चौड़ी सड़कें, हरियाली, खेलने की सुविधाएं और बेहतरीन कनेक्टिविटी। अपने सपनों का घर बनाने का मौका ना चूके। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 17 जून 2026। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आज ही आवेदन करें janhit.upda.in पर जाकर या कॉल करें 6396176417 पर। यूपी रेरा पंजीकरण संख्या PRJ43981/05/2026। जनहित में जारी, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
6: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वी कंक्लूडेड द हिस्टोरिक इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दिस एग्रीमेंट विल एक्सपेंड आवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड इट विल ओपन अप मैनी पाथवेज फॉर द एक्सचेंज ऑफ टैलेंट, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म।
5: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
7: सेंट कोमा के चेयरमैन और CEO बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल AI के CEO आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, AI अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु AI पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। CMA CGM के चेयरमैन और CEO रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
5: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। सरकार ने कहा कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मीट्रिक टन LNG से लदा माल वाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली NEET UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मीनाक्षी हुडा विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज अपने मुकाबले खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर चुकी हैं। मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विशेष कार्यक्रम एक खास मुलाकात में। एक और खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। आपने ट्यूनिंग किया है आपके शहर का पहला अमेजिंग रेडियो स्टेशन जो गाने नहीं बजाता है, आपके लिए काम की बातें भी लेकर आता है। और आज जो ये एपिसोड है फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग

0: ये जो लिसनर्स हैं उनको बताइए।
1: देखिए ऐसा है कि हीट वेव आपदा जो है
0: जी,
1: ये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपदा की श्रेणी में आता है। हमारे पास बेसिकली कुछ आपदाएं ऐसी हैं जो प्राकृतिक कारणों से घटित होती हैं, केंद्र सरकार के तहत होती हैं, उनको हम प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित होती हैं। और जो स्थानीय परिस्थितियों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपदा होती है उसमें जो राहत है वो राज्य सरकार के एसडीआरएफ फंड से रिलीज किया जाता है। तो ये हीट वेव भी जो है स्थानीय आपदा के तहत आता है और इसमें जिला प्रशासन समन्वित रूप से कार्रवाई करता है और उसके हिसाब से हम कार्य योजना बना के उस पर काम करते हैं।
0: वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा आपने बताया। सर मैं अगर बात करूं इसी में, एक और मेरा सवाल रहेगा आपसे कि आपदा के समय जिला प्रशासन कैसे काम करता है, जरा ये बताइए।
1: इसके लिए ये है कि एक डीएम एक्ट 2005 है, उसके तहत डीडीएमए का गठन किया गया है जिला में, जिसके अध्यक्ष माननीय जिलाधिकारी महोदय होते हैं और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व होते हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी हैं वो सदस्य होते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी सदस्य होते हैं, मुख्य विकास अधिकारी जी सदस्य होते हैं, इसके साथ एक वरिष्ठ एक्शन जो होंगे वो सदस्य होते हैं। और इस तरह से जब कोई भी आपदा आती है तो उस पे पूरे जिला प्रशासन को इंटीग्रेटेड रूप से काम करना होता है।
0: अच्छा ओके सर। सर जैसे हीट वेव एक बहुत ही गंभीर विषय है, जैसे अभी आपने बताया भी, ऐसे में बहुत सारे अग्निकांड भी हम सुनते हैं ऐसे सिचुएशन में, तो ये जो अग्निकांड होते हैं जैसे कहीं पे आग लग जाना एकदम से, ये आपदा ही होती है सर, तो ऐसे में इसके बारे में थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताइए सर।
1: क्या आपदा के बेसिकली हम अगर बात करें एक समन्वित रूप से
0: जी,
1: तो हम लोग तीन स्टेप पे इस पे काम करते हैं। एक होता है कि आपदा के पहले, एक होता है आपदा के दौरान और एक होता है आपदा के बाद। ये तीन तरह की कार्रवाइयां होती हैं। तो जब आपदा के पहले होता है उसको हम लोग प्रिपेयर फेज बोलते हैं। और उसमें क्या होता है कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जैसे अभी आपने कहा हीट वेव का सीजन अभी अप्रैल शुरू हो रहा है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय के आदेश से हम लोगों ने इसकी तैयारी फरवरी से ही शुरू कर दी। तो फरवरी में सर के निर्देश पे, सर की अध्यक्षता में जिला स्तर पे एक बैठक की गई जिसमें सभी जिला स्तरीय और तहसील स्तरीय सारे अधिकारी वहाँ पे सर के निर्देशन में मीटिंग होती है, उनको कार्रवाई के लिए किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी वो जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित कर दिया जाता है कि कौन किस जिम्मेदारी को किस तरह से तैयारी करके निभाएगा। अब जैसे आपने अग्निकांड की बात की, तो ये बेसिकली जैसे जो हमारी फायर सर्विस होती है उनको सेंसिटाइज किया जाता है, वो उनका जो एक्शन है वो ये होता है कि अगर कहीं अग्निकांड की घटना हो रही है तो पहले तो जिला प्रशासन ये प्रयास करता है कि प्रचार प्रसार से हम लोगों को जागरूक करें कि अग्निकांड की घटनाएं हो ही ना जिससे कि लॉस हो। तो एक तो हमारी पहले इसलिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जैसे आज भी हम हैं यहाँ पे, कि अग्निकांड से लोग कैसे बचें, तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे जागरूकता के विषय होते हैं कि भाई हम छोटी छोटी सावधानी, जैसे हम आपको बताएं कि जैसे मोस्टली आप सुनते होंगे कि जो अग्निकांड की घटनाएं होती है वो शॉर्ट सर्किट से होती है, शॉर्ट सर्किट से, जैसे कि कहीं ट्रांसफार्मर में दिक्कत है उसकी वजह से आग लग गई, कहीं हमारे वायर जो है घरेलू वायर ढीले हैं वहां से आग लग गई। तो और कुछ आजकल देखे जा रहे हैं सिलेंडर की लापरवाही, पुराने सिलेंडर है उनकी डेट नहीं देखी गई, वो ब्लास्ट हुआ उससे घटनाएं हो जा रही।
0: बिल्कुल।
1: तो इसके लिए एक ड्राइव होता है कि लोग जागरूक रहें और फायर सर्विस रेगुलर बेस पे जागरूकता अभियान इसके लिए चलाते रहते हैं कि लोग जागरूक रहें, अग्निकांड से बचाव हो, अगर अग्निकांड की घटना हो रही है तो तत्काल आप उनके जो टोल फ्री नंबर है उस पे आप सूचना दे सकते हैं। और उससे ये रहता है कि हम लोगों का ये निर्देश रहता है कि जितनी जल्दी हमारी फायर की गाड़ियां वहां घटना स्थल पे पहुंचेंगी उतनी जल्दी हम आग को काबू पा लेंगे। इसके साथ में हम लोग ये है कि हमारे जो वॉलंटियर्स होते हैं उनको भी, जैसे अग्निमित्र जो है उसको भी ये माना जाता है कि समुदाय हमारा प्रथम रिस्पॉन्डर होता है, तो अग्निमित्र हैं, आपदा मित्र हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं
0: जी।
1: तो ये जो नजदीकी जहां भी ऐसी घटना हो रही तो उन लोगों को भी ये सेंसिटाइज किया जाता है कि आप मौके पे पहुंच करके और आग को बुझाने का काम करें। तो ये एक पूरा सिस्टम मिलकर काम करता है पब्लिक के साथ।
0: सर अभी आपने जैसे इस पूरी जानकारी में टोल फ्री नंबर का भी जिक्र किया जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं, तो वो नंबर अगर किसी को डायल करना है तो वो कौन से नंबर होते हैं?
1: जैसे हमारा आपदा का ये 1077 1077 है जो जिला आपदा कंट्रोल रूम है, कलेक्टर ऑफिस में, कलेक्ट्रेट में, वहाँ का नंबर है। कोई भी आदमी 24 आवर कभी भी अगर कॉल करेगा तो वहाँ पे कॉल तुरंत पिक होगी और संबंधित विभाग को उसको तुरंत ट्रांसफर कर दी जाएगी। जो भी समस्या होगी उसका समाधान कर दिया जाएगा।
0: बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसे सुनकर और काफी अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। सर मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा, आपदाओं की हम बात कर रहे हैं, अभी हमने अग्निकांड का जिक्र किया, वहीं से अगर

0: बात करूं किसानों के लिए, तो किसानों की फसल जो है वो अपनी फसल को कैसे सेफ रखें, सुरक्षित रखें, क्योंकि कहने के उनके लिए भी बहुत लॉस वाली बात हो जाती है अगर हम अग्निकांड की बात कर रहे हैं तो। यहाँ
1: देखिए इस विषय में एक छोटा सा बहुत सारा जो देखा गया है, एक सबसे ज्यादा विषय ये आ रहा है कि अक्सर करके जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उस ज्यादातर देखा जाता है कि किसान जब फसल बो रहे होते हैं तो ट्रांसफार्मर के आसपास भी वो फसल लगाए हुए होते हैं। तो इसमें एक सावधानी का ये लेवल बहुत जरूरी होता है कि कम से कम हम 5 से 10 मीटर के दायरे में कोई फसल वहाँ पे ना रखें, क्योंकि है क्या, आप मान लीजिए कि आपने 10 बीघा गेहूं लगा रखा है और आपने 5 मीटर के दायरे को छोड़ रखा है, तो आपने 10 बीघा गेहूं को जोखिम से बचा रखा है पहली चीज। तो ये तो हमारे किसानों के लिए सुझाव रहेगा कि वो कम से कम जहां भी इस तरह का ट्रांसफार्मर है तो वहां के 4-5 मीटर के दायरे में कम से कम फसल को ना रखें, उस एरिया को खाली छोड़ दें। और बिजली विभाग के लिए निर्देश जाता है जिला प्रशासन से कि आप जो ट्रांसफार्मर है और उसकी पोजीशनिंग जो है उसका मेंटेनेंस सही रखें, तार ढीले ना रहें, उसके फ्यूज सही रखें। पब्लिक के लिए रहता है खेतों में हो या घर में हो, अक्सर करके हम देखते हैं कि अपने सांस औकत पे और अपनी जरूरतों पे हम ज्यादा व्यय कर लेते हैं, लेकिन जहां इस तरह की बात आती है तो वहां पे जैसे जो घर की वायरिंग है उसको सिस्टमेटिक वे में अच्छे तार डाले जाएं, उसको प्रॉपर चेक कराते रहें, ढीले तार ना रखे जाएं, कटिया बचाने लगाने से बचें, जगह जगह खुले तार हम लोग लगा लेते हैं और जैसे तैसे काम चलाते हैं, ये कभी कभी हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और अक्सर हम वही चीज अवॉइड कर देते हैं
1: जी।
0: सो दोस्तों आपको ये चीजें बहुत ध्यान से सुननी है और बहुत काम की चीजें। सर अगर मैं बात करूं वही जो लोग पशुपालन करते हैं तो ऐसे में पशुओं का बचाव कैसे कर सकते हैं वो लोग?
1: देखिए पशुओं की बात अगर की जाए तो ये माना जाता है कि पशु जो है वो भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं जो किसान होते हैं उनके एसेट्स भी होते हैं और वो उससे जुड़े भी होते हैं।
0: करेक्ट।
1: तो जैसे ही हमारा मानव जीवन इस हीट वेव की गर्मी से भयंकर लू से प्रभावित होता है वैसे पशु भी इससे अछूते नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें बदलते परिवेश में ये ध्यान रखना होगा कि पशुओं को जहां तहां छुट्टा ऐसे ना छोड़े, बल्कि वो आज के समय में आपकी एसेट्स हैं, आप उनको वैसे ही ध्यान रखें जैसे इंसानों का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे मेरी पहली सलाह ये रहेगी कि उनको बंद जगह में जैसे टीन सेट वगैरह है या टाट के बोरे वगैरह से कवर कर ले एरिया को, पानी वगैरह का छींटा मारे, एक दो बार उनको नहलाते रहें, और खास करके जो सुबह का 10 से 4 बजे का समय उस दौरान पशुओं को बिल्कुल भी बाहर न रखें। और अगर आपको लगता है कि पशु ने खाना छोड़ दिया है, चारा राल वगैरह गिर रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा छूने से पता लग सकता है, तो आप नजदीकी जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, पशु चिकित्सा केंद्र नजदीकी हैं, वहाँ पे आप संपर्क करके उनको वहाँ पे स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं।
0: बहुत बढ़िया। अच्छा सर, जैसे आम पब्लिक आपको सुन रही है, आम जनता, अगर वो कोई आपकी टीम से कनेक्ट होना चाहे या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है या कोई अगर इस तरह की आपदाएं उनके आसपास उन्हें देखने को मिलती है तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? अभी आपने एक तो नंबर भी बताया, मुझे याद है अभी हेल्पलाइन नंबर आपने बताया, इसके अलावा और कहाँ संपर्क कर सकते हैं?
1: देखिए आपदा के लिए अगर हम बात करें तो हमारे जो तहसील में नोडल होते हैं
0: जी जी,
1: ये संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी महोदय जो होते हैं वो वहाँ संबंधित तहसील के नोडल होते हैं आपदा के मामले में, चाहे हीट वेव हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे फसल क्षति हो, जो भी हो, तो उसके वो नोडल होते हैं, साथ में तहसीलदार महोदय भी होते हैं। तो ये लोग कोई भी ऐसी घटना घटित होती है तो आप वहाँ पे सहायता प्राप्त कर सकते हैं, उनको प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और उसके हिसाब से वहाँ पे तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, हम छोटे बच्चों की बात कर लेते हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए कौन कौन सी सावधानियां हैं जो पेरेंट्स को रखनी चाहिए ध्यान में?
1: देखिए सबसे पहले तो एक बात मैं यही कहूंगा कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया होगा कि खाने पीने के मामले में ध्यान रखना होगा हमें। हम अक्सर करके जो हमारा फास्ट फूड का ये सिस्टम आजकल जो चल रहा संस्कृति, इससे तो हमें निजात पाना चाहिए। साथ में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो भी खाना दीजिए वो ताजा दीजिए और लिक्विड डाइट की मात्रा बढ़ा दी जाए बच्चों में। साथ में हम ये देखते हैं कि अक्सर करके देख लेते हैं कि वो जैसे ज्यादा जो नुकसानदायक चीजें उसमें बच्चों का भी इंटरेस्ट रहता है, तो इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करें। और ये देखते रहें कि अगर टेम्परेचर उनका ज्यादा है, बच्चों का बुखार ज्यादा है, तो आप जिस तरह से उनको स्कूल भेजते हैं साथ में आप हेल्थ केयर सेंटर भी तत्काल दिखा लें, डॉक्टर की सलाह ले लें, डॉक्टर की सलाह से जो है इलाज करें। हाँ ये है कि अगर वोमिटिंग जैसी शिकायत है और अगर उसको लूज मोशन हो रहा है तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है, उसको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर दिखाएं। और साथ में ये है कि अगर आप उसको जब हॉस्पिटल ले जा रहे हैं या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले रहा है, तो रूरल एरियाज में अक्सर देखा गया है कि आदमी उसको बहुत कैजुअल ले लेता है, नॉर्मल ले लेता है, और ये जो आपकी जो झाड़ फूंक है या बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं लोगों में, कोई बोलता है कि दांत निकल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, और सारे बहुत सारे कारण होते हैं, लोग मान के उसको अवॉइड करते हैं। तो बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो चूंकि एक्टिव भी रहते हैं, तो ऐसे में एक समय तक बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब हेल्थ अंदर से इशू का होता है तो वो बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए तत्काल उनको कम से कम, अगर हम बात करें कि उनको वोमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, तो कम से कम चीनी, नमक और पानी जो कि हर जगह उपलब्ध है, साफ पानी गुनगुना कर लें, फिर ठंडा कर लें उसको, और उसमें थोड़ा चीनी नमक डाल के जरूर पिलाते रहें थोड़ा थोड़ा, और जहां नजदीकी हॉस्पिटल है वहां दिखा लें।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, जैसे आपदा के समय में जिला प्रशासन किस तरीके से काम करता है, अगर मैं आपसे जानना चाहूं।
1: देखिए, मैंने जागरूकता के स्तर पर तो आपको बता ही दिया, अब इसके साथ कार्रवाई के स्तर पर अगर हम बात करें, हीट वेव की जैसे ही स्थिति होती है उसके पहले ही हम लोग क्या करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है पानी। तो पानी के पूर्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा सभी तहसीलों में और खास करके नगर निगम एरिया में प्याऊ सेंटर होते हैं, जिनको आप जैसे परमानेंट कुछ लगाए गए हैं जिसको वाटर कूलर, ठंडा पानी की आपूर्ति हो सके। अभी वर्तमान में अगर बात करें हमारे, तो मुरादाबाद में 53 जो है वो परमानेंट वाटर कूलर लगे हुए हैं, उनका मेंटेनेंस भी हम लोग करा लेते हैं, कुछ कुछ खराब हो जाते हैं तो उसकी भी प्रक्रिया भी चल रही मेंटेनेंस कराने की। साथ में अस्थायी प्याऊ सेल्टर भी हम लोग लगाते हैं, जिससे कि पानी की आपूर्ति, और इसके साथ साथ नगर निगम के द्वारा जो है टैंकर्स जो पानी के होते हैं उससे भी सप्लाई की जाती है, जगह जगह पानी की आपूर्ति की जाती है, और जलकल विभाग, जल निगम ये भी आपूर्ति सुनिश्चित कराता रहता है। इसके लिए निर्देश है कि पानी की आपूर्ति कहीं भी बाधित ना हो। साथ में ये होता है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो अस्थायी शेल्टर की बात की जाती है, जैसे आपके मजदूर वर्ग है, ये ठेला वाले हैं, साथ में जो आपके ये ई रिक्शा वाले हैं, तो कहीं कहीं जगह में आप देखते होंगे कि अगर हरे पेड़ नहीं है, छावदार वृक्ष नहीं है, बहुत खुला, बहुत बड़ा चौराहा, हीट आइलैंड जिसको बोलते हैं, खुली जगह है, जाम लग गया है, तो वहां पे क्या है कि आसपास कोई ऐसा हम अस्थाई शेल्टर भी बनाते हैं टेंट तंबू से, जहां कूलर वगैरह की व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था होती है, फर्स्ट एड किट होती है, डॉक्टर्स की टीम होती है, इसका भी योजना में शामिल किया जाता है, एम्बुलेंस वगैरह की, अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो रहा है या किसी को वैसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कम से कम वहां पे वो आराम कर ले और उसको मेडिकेशन दिया जा सके। तो ये भी कार्रवाई हमारे स्तर से होती है, तहसीलों को भी निर्देश दिया जाता है। ग्रामीण इलाकों में खास करके आपने देखा होगा कि तालाब वगैरह बहुत सारे सूख जाते हैं गर्मी में, तो उसको रिचार्ज करने के लिए पानी वैकल्पिक साधनों से उसमें पानी भर दिया जाता है कि पशुओं को भी पानी पीने, मतलब पानी की उपलब्धता रहे, तो ये भी कार्रवाइयां वहां पे पैरेलल चलती रहती है। हाँ, एक चीज और हमारा कहना है कि आपदा में आप सावधान रहें और जागरूक रहें। साथ में ये है कि अगर आपदा से नुकसान होता है, जैसे हम बात करें जनहानि की, तो जनहानि में सरकार राहत देने का कि उसका जो परिवार है वो हम उस किसी के जीवन को वापस तो नहीं ला सकते हैं, अगर किसी की जनहानि हो गई, आपदा से किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन सरकार का प्रावधान है कि 4 लाख रुपए की हम आर्थिक सहायता उसको देते हैं। लेकिन अक्सर करके देखा गया है कि लोग एक नियम होता है पोस्टमार्टम कराने का, तभी हमको कॉज ऑफ डेथ पता लगता है कि किस कारण से डेथ हुई है, वो एक सरकारी प्रक्रिया है, प्रावधान है। अब उसमें लोग थोड़ा सा भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं उस समय और अक्सर करके पोस्टमार्टम नहीं कराते, तो ऐसे में उनको राहत देने की कोशिश करते हुए हम चाहते हैं कि तुरंत राहत दे दें, लेकिन जब इस प्रक्रिया से वो लिख के देते थे कि नहीं नहीं मैं पोस्टमार्टम नहीं कराऊंगा, मुझे सहायता नहीं चाहिए, तो ऐसे में जिला प्रशासन बहुत कोशिश करता, काउंसलिंग करता, लेकिन फिर ऐसे में हम नहीं दे पाते तो हमें कष्ट होता है। साथ में ये भी प्रावधान है कि अगर कोई घायल हुआ है, कोई कहीं भर्ती हुआ है, तो उसका भी प्रावधान है, अगर 7 दिन से अधिक कोई किसी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है तो हम उसको 16,000 रुपए तक का राशि देते हैं उसके इलाज में जो व्यय होता है, और अगर 7 दिन से कम रहा है तो उसको 5,400 रुपए की सहायता दी जाती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो भर्ती हो, प्रॉपर प्रक्रिया में तहसील में सूचना दे, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन चीजों की जागरूकता लोगों तक होनी चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: और उसके लिए प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
0: बहुत अच्छा लगा प्रदीप जी, आप आए, आपने तमाम जानकारियां दी हमारे सुनने वालों को, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जाते जाते मैं बस कुछ और सवाल है जो आपसे पूछना चाहूंगा, पहले तो यही, जो महिलाएं किचन में खाना बनाती हैं उन्हें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, और जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं, जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अचानक से अग्निकांड में जो है कई सारी गाड़ियों को भी हम देखते हैं, अचानक से गाड़ियों में आग लग जाती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हम देखते हैं, तो उसके में आपका क्या कहना है?
1: देखिए, इसमें दो चीजें मैं आपको बहुत ही ईमानदारी से बताना चाहूंगा कि सावधानी ही बचाव है,
0: बिल्कुल,
1: और हम आपको इस विषय में थोड़ा सा बहुत ही स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हम मॉड्यूलर किचन बना लेते हैं, लेकिन अगर हम अपने किचन में भी जाके देखें कि क्या वहाँ फायर डिस्टिंग्विशर है, तो शायद लोगों को उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो छोटे फायर डिस्टिंग्विशर जो किचन में रखे जा सकते हैं, या दो बकेट पानी या बालू की बाल्टी, ये सब रखी जा सकती है। तो जो और अक्सर करके देखिए कि बहुत सारे वैसे ज्वलनशील सामान जो किचन में रहते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं है, तो इन सब चीजों पे हमके जागरूक होने की जरूरत है कि कम से कम अपने किचन को जैसे हम मॉडिफाई करके रखते हैं, तो साथ में सेफ्टी मेजर्स भी रखें। फायर डिस्टिंग्विशर के छोटे आते हैं उसमें, जो सेफ्टी की आप तुरंत उनसे आग को काबू कर सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। साथ में ये है कि मॉक ड्रिल कराई जाती है, उसमें प्रैक्टिस करें, और पानी की बाल्टी वगैरह रखें गर्मी के दिनों में खास करके। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सभी माताओं बहनों से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि कृपा करके आप खाने का जो बनाने का टाइम है वो चेंज कर लें। सुबह 8 बजे से पहले खाना बना लें और शाम को 4 बजे या 5 बजे के बाद, शाम में देर रात को खाना बनाएं, दोपहर में खाना ना बनाएं। इसके साथ एक चीज और ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है कि हम लापरवाही करते हैं, जो आग वगैरह है कहीं भी चलते हुए छोड़ देते हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं। हम सबकी ये जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि हम उसका भी ध्यान रखें, जो भी आग है उसको बुझा दे ठीक से, जिससे कि कोई भी वैसी घटना ना हो।
0: जी सर, बहुत अच्छा लगा आपने तमाम जानकारी दी।
1: और मैं दूसरी बात, जहाँ तक गाड़ियों का है, तो गाड़ी के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि एक तो दो तीन चीजें इस पे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप गाड़ियों में भी जैसे वायरिंग वगैरह होती है, गाड़ी का इंजन होता है, प्रॉपर सर्विस कराइए, वायरिंग मेंटेन रखिए। और एक छोटे से उसमें भी ये SOP है कि आप छोटा डिस्टिंग्विशर आता है उसको आप गाड़ियों में, फायर डिस्टिंग्विशर रहने से उसको ऑपरेट करना बहुत आसान होता है, उसकी मॉड्यूल भी कराई जाती है, तो वो कम से कम ये रहेगा कि आग लगती है जब तक आप इधर उधर कुछ ढूंढने लगते हैं कैसे आग को बुझाएं, तब तक वो बड़ा स्वरूप कर लेती है। एक आमजन को हम और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आम पब्लिक को भी, कि आप अक्सर करके देखते होंगे बहुत लोग इस तरह से नासमझी करते हैं, हालांकि ये मना भी है, कि आप कोई भी ज्वलनशील जैसे चाहे ये पेट्रोल वगैरह है, ये कभी भी गर्मी के दिनों में इसको डिब्बे में लेने की कोशिश ना करें, ना या डिब्बे में ले करके ना जाएं, क्योंकि ये इतना एक्सप्लोसिव होता है कि कब ये जानलेवा बन जाए। गाड़ी में कभी भी डिब्बे में आप पेट्रोल लेके उस तरह का ज्वलनशील सामान लेके ना चलें, कृपा करके बचाएं। और गर्मी के दिनों में बच्चों को गाड़ियों में बंद करके ना छोड़ें, ये मेरी अपील है, बच्चों को लेके सेंसिटाइज रहें। घर में कहीं अगर आग है, कहीं खाना बन रहा है, तो आसपास छोटे बच्चों को ना छोड़ें, उनका ध्यान रखें, क्योंकि ये सब ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जबकि बच्चों में गाड़ी में बच्चे को बंद कर दिया गया, गर्मी का दिन है, वो सफोकेशन से उसको जो है दिक्कत हो गई। तो ये सब थोड़े थोड़े ऐसे उपाय हैं कि हम बचाव कर सकते हैं और इनका ध्यान रखना चाहिए और हम सबकी जिम्मेदारी। साथ में एक बहुत बड़ी अपील मैं आपके माध्यम से और करना चाहूंगा, जो कि सरकारी अभी हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, कि दो चीजें देखने को मिली हैं कि जैसे ग्रामीण इलाकों में जो चूंकि वेजिटेशन ज्यादा है, पेड़ ज्यादा है, तो वहां पे गर्मी का इफेक्ट कम देखते हैं, लेकिन शहरी इलाके में क्या होता है, चूंकि बिल्डिंगें बहुत सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें हैं, तो एयर का जो वेंटिलेशन है वो उस प्रॉपर हो नहीं पाता है, साथ में हमारे ग्रीन कवर भी कम है, तो ऐसे में हमको ये सोचना होगा ऑक्सीजन भी हमारे लिए जरूरी है। तो अगर हम सब इसको जिम्मेदारी को समझें तो हमारा घर भी अच्छा होगा, कि हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर महिला अपने परिवार के गार्जियन से आपस में एक दूसरे से, जैसे बहुत सारे होते हैं हम जन्मदिन मनाते हैं और हम जो है आपके शादी की सालगिरह मनाते हैं, तो बहुत सारे गिफ्ट की बात करते हैं, हम चाहेंगे कि बच्चे ये गिफ्ट मांगे अपने पेरेंट्स से कि हमको 10 गमले घर पे पेड़ के लगाने हैं, महिलाएं अपने हस्बैंड से मांगे कि 10 पेड़ घर में लगाने हैं जो आप छत पे सब्जी वगैरह उगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके यहाँ प्रॉपर ऑक्सीजन जनरेशन तो होगा ही, और साथ में क्या है कि जो आपका एनवायरमेंट है वो भी थोड़ा फेयर होगा, अच्छा होगा और मेंटेन होगा। अब आप समझिए, अगर 1 लाख घर मुरादाबाद शहर में मैं मान लूं हाउस होल्ड, तो अगर 10 पौधा हर घर लगाए अपनी जिम्मेदारी समझ के, तो 10 लाख पौधे को वो देख भी सकते हैं, उसका प्रॉपर केयर कर सकते हैं और ऑक्सीजन जनरेशन का आप अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि एक चीज और देखी गई है कि जो छत होती है, छत आप भी जानते हैं कि जितना काला होता है वो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है।
0: करेक्ट।
1: तो और व्हाइट शर्ट पहनने के लिए, लूज कपड़े पहनने के लिए भी हम लोग जागरूक करते हैं कि लोग लूज कपड़े पहने, व्हाइट शर्ट पहने, तो क्या है कि एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती, वापस चली जाती एनवायरमेंट में। तो अगर छतों को, छत के ऊपर सिरे को व्हाइट करने के लिए रूफ टॉप हम लोग बोलते हैं कि आप पूरे घर को बहुत पेंट कराते हो। और होता क्या है कि अगर छत को आप व्हाइट करा दो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो आप अपने घर का टेम्परेचर 2 से 4 अंश सेल्सियस तक कम कर सकते। अब आप अनुमान लगाइए कि अगर 4,000 स्क्वायर फीट 3,000 स्क्वायर फीट आपकी छत है और उसके टेम्परेचर को हम 2 से 4 अंश सेल्सियस कम कर देंगे, तो उसका एक परिणाम ये भी होगा कि आपको एसी कम चलानी पड़ेगी, ये भी हो सकता है, और घर का टेम्परेचर भी डाउन रहेगा। तो ये मेरी अपील है कि रूफ टॉप के तहत लोग अपनी छत के ऊपरी वाले सिरे को भी व्हाइट पेंट से ये पेंट कराएं। हालांकि सरकारी भवनों को पेंट कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मैम के द्वारा निर्देश चले गए हैं, उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं, और 10.5 लाख स्क्वायर फीट छत हम लोगों ने चिन्हित की सरकारी भवनों की, उसमें बेसिक शिक्षा विभाग के हैं, ब्लॉक्स के हैं, फायर सर्विस के, थानों के हैं, और जो सरकारी भवन है उनके हैं, जिसपे हमने अभी लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट छतें हमारी व्हाइट रूफ टॉप हो गई हैं, जिससे कि हम इस जो हमारी गर्मी है इसको रिफ्लेक्ट करके वापस कर सकें, एनवायरमेंट को थोड़ा सा मेंटेन कर सकें, मैनेज कर सकें।
0: सर बहुत अच्छा लगा, आपने तमाम जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला, इतना महत्वपूर्ण समय हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया। और सबसे अच्छी बात, आपने जो गमलों का एडवाइस दिया ना, ये बड़ा अल्टीमेट था, बड़ा यूनिक था, और साथ में आपने बताया कि छत को हम कैसे व्हाइट पेंट करा के गर्मी का टेम्परेचर कम कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जब एसी कम चलेगी तो बिल भी कम आएंगे, कहीं ना कहीं उसका फायदा भी है। तो ये आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। तो जाते जाते तमाम लिसनर्स को आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, कोई एक मैसेज, कोई एक संदेश?
1: संदेश देना चाहूंगा कि हमारे जिलाधिकारी महोदय और अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मैम के साथ पूरी जिला प्रशासन टीम आपके सेहत स्वास्थ्य को लेके बहुत ही संवेदनशील है, और सरकार स्पष्ट निर्देश है कि लोगों को जागरूक करिए, लोगों तक बात पहुंचाइए, उनसे अनुरोध करिए। तो जिला प्रशासन की तरफ से, सर की तरफ से आप सबसे पुनः यह अनुरोध है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, गर्मी के दिनों में दोपहर में घर में सुरक्षित रहें, सेफ रहें, बाहर ना निकलें, और बहुत सारे जो उपायों पे बात की गई इसका ध्यान रखें, आपकी सेहत ही हमारी संपत्ति है। धन्यवाद।
0: थैंक यू सर। आप सुन रहे थे FM मुरादाबाद 89.6 विद RJ आनंद। फिर मिलते हैं किसी और नए कार्यक्रम में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कहीं जाइएगा नहीं, रेडियो की सुई बिल्कुल घुमाइएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड।
2: हाय दयाल एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
6: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
2: राजधानी में 42 जन कल्याण शिविर आयोजित किए। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने पूर्व अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन सहित अन्य ग्रुप सी के खाली पदों पर भर्ती में 20% आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया। विश्वविद्यालय QS रैंकिंग में IIT दिल्ली एक बार फिर देश का सर्वोच्च संस्थान बना। दिल्ली पुलिस ने शिशु तस्करी रैकेट का पर्दाफाश कर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और एशियाई तलवारबाजी प्रतियोगिता कल से नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार द्वारा आज राष्ट्रीय राजधानी में 42 जन कल्याण शिविर आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के अभियान से प्रेरित है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 3 दिनों तक चलने वाले इन शिविरों में नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर मिल सकेगा।
3: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल है, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
2: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इन शिविरों में पिंक कार्ड, राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, लखपति बिटिया योजना और प्रधानमंत्री उदय योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सेवाएं शामिल हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्वी दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा ने विश्वास नगर क्षेत्र में दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित जन कल्याण शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक ओम प्रकाश शर्मा, अभय वर्मा और संजय गोयल भी शामिल रहे। लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहेब सिंह ने आज दिल्ली सरकार द्वारा बंगाली मार्केट और NDMC सामुदायिक केंद्र में आयोजित जन कल्याण शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि इन शिविरों में आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, विधवा और विवाह सहायता योजनाएं सहित अनेक जनहितकारी सेवाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिविरों में आने वाले लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्वी दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा ने 12 साल विश्वास के विकास के और जन कल्याण के अभियान के अंतर्गत आज भोलानाथ नगर से घर घर संपर्क अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान श्री मल्होत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश में हुए परिवर्तनकारी विकास कार्यों, जनहितकारी योजनाओं और सुशासन की उपलब्धियों के बारे में स्थानीय नागरिकों से संवाद किया।
4: प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने 2014 में 200 से अधिक योजनाएं जन कल्याण की बनाई, न केवल बनाई बल्कि उनको मूर्त रूप दिया। देश के 140 करोड़ लोग

0: लोगों के लिए उन्होंने ये योजनाएं बनाई और कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति को उन योजनाओं का लाभ मिला है।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने की रणनीति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान तरणजीत सिंह सिंधु ने पूर्व अग्निवीरों के कौशल का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डन, फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड सहित ग्रुप सी के खाली पदों पर सीधी भर्ती में 20% आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने आगे बताया कि सभी को समान अवसर देने और देश के लिए उनकी सेवा को सम्मान देने के उद्देश्य से इस प्रावधान के अंतर्गत भर्ती योग्य पूर्व अग्निवीरों के लिए खुली रहेगी। श्री संधू ने आगे बताया कि सभी संबंधित विभागों के लिए भर्ती नियमों में जरूरी बदलाव और प्रक्रियाएं पूरी करने की समय सीमा इस महीने की 30 तारीख तय की गई है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं ज्योत्सना पांडे।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। आईआईटी दिल्ली को वैश्विक स्तर पे 118वां स्थान प्राप्त हुआ है। एक रिपोर्ट।
3: शिक्षा मंत्रालय के अनुसार जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने 75 पायदान ऊपर चढ़कर 686वीं रैंक हासिल की है। इसके साथ ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान वैश्विक रैंकिंग में 105वें स्थान पर शामिल है। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में 52 भारतीय संस्थान शामिल है, जिनमें से 13 भारतीय विश्वविद्यालयों ने दुनिया के शीर्ष 550 संस्थानों में जगह बनाई है। आईआईटी बम्बई और आईआईटी मद्रास भी विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में देश के कुल 52 संस्थानों को स्थान मिला है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने एक संदेश जारी कर विद्यार्थियों को अपनी तैयारियों पर भरोसा रखने के लिए प्रोत्साहित किया है। एजेंसी ने कहा कि उम्मीदवारों ने साल भर कड़ी मेहनत की है और अब उनका पूरा ध्यान परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने पर होना चाहिए। एजेंसी ने छात्रों को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। एजेंसी ने कहा कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल या अनुचित गतिविधि के प्रयास में सख्ती से निपटा जाएगा। एजेंसी ने अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और आम जनता से अफवाहों पर विश्वास न करने तथा अपुष्ट जानकारी साझा न करने की सलाह दी है। केवल एजेंसी के आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करने को कहा गया है। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने इस वर्ष की शुरुआत में विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान और ई प्रतिज्ञा मंच के शुभारंभ का उल्लेख करते हुए छात्रों से नशा मुक्त भारत के राजदूत बनने और नशे की समस्या के खिलाफ आवाज उठाने का आग्रह किया। दिल्ली सरकार ने गेस्ट टीचर्स द्वारा जनगणना कार्यों में बिताई गई अवधि को आधिकारिक तौर पर नियमित कार्य दिवसों के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह निर्णय शिक्षकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय हजारों गेस्ट टीचर्स के पेशेवर हितों की रक्षा के लिए एक शिक्षक हितैषी कदम है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज द्वारका स्थित नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अटल इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सूद ने कहा कि यह केंद्र दिल्ली के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को नई दिशा देगा। नींव, दिल्ली एआई ग्राउंड और दिल्ली स्टार्टअप युवा फेस्टिवल जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार ऐसी व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
4: अटल जी के नाम से अटल इंक्यूबेशन सेंटर और नेताजी सुभाष चंद्र NSUT में, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में, इस प्रकार का एक इकोसिस्टम खड़ा किया जा रहा है जो अपने अपने तरीके से नए नए प्रोजेक्ट्स के आइडियाज को सोचकर आगे बढ़ाने वाले युवाओं को पैरों पर खड़ा होने का, जहां उन्हें फेलियर का डर ना हो, जहां उन्हें सक्सेस प्राप्त होने पर धोखे का डर ना हो, जहां उन्हें सही गाइडेंस ना मिलने का खौफ ना हो, ये प्रयास NSUT और AIC अटल इंक्यूबेशन सेंटर द्वारा किया गया है। इससे दिल्ली के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत बल मिले।
1: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज राजौरी गार्डन स्थित राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय में जन कल्याण शिविर का उद्घाटन किया। श्री सिरसा ने बताया कि इन शिविरों में कई केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आम नागरिक तक सरल और सुगम तरीके से पहुंचाना है।
5: इन जन कल्याण शिविर के अंदर पिंक कार्ड बनाना हो, राशन कार्ड बनाना हो, आधार कार्ड बनाना हो, हमारी दिल्ली सरकार की स्कीमें हो या भारत सरकार की केंद्रीय स्कीमें हो जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं, उनके 12 साल के उपलक्ष्य में ये कैंप लगाए गए हैं। इसके अंदर आज लोगों को आयुष्मान कार्ड भी बना के दिया जा रहा है, आज लोगों को हेल्थ कार्ड भी बना के दिया जा रहा है, लोगों को इनकम सर्टिफिकेट भी बना के दिया जा रहा है। ये अपने आप में एक समूह बनाया गया जिसमें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की सारी स्कीमों का एक जगह शिविर कैंप लगाकर लोगों के लिए एक बड़ा काम करने का काम किया है।
1: ये शिविर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि दिल्ली विधानसभा ने वर्ष 2026-27 के लिए सदन की विभिन्न समितियों का गठन कर दिया है। एक रिपोर्ट।
6: नवगठित समितियों के महत्व के बारे में श्री गुप्ता ने कहा कि ये समितियां जन कल्याण से जुड़े विषयों पर प्रभावी निगरानी, गहन निरीक्षण तथा सुव्यवस्थित विचार विमर्श सुनिश्चित करेंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नामित सदस्यों का सामूहिक अनुभव दिल्ली में लोकतांत्रिक जवाबदेही को और मजबूत करेगा। श्री गुप्ता ने कहा कि ये समितियां विधानसभा की कार्यकुशलता, जवाबदेही और जनहित से जुड़े विषयों पर प्रभावी निगरानी को और अधिक सुदृढ़ करेंगी। इन समितियों में कार्य मंत्रणा समिति, सरकारी आश्वासन समिति, नियम समिति, महिला और बाल कल्याण समिति, पर्यावरण समिति, अल्पसंख्यक कल्याण समिति तथा अन्य शामिल हैं। शिवांकी रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रियंका अरोड़ा।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय शिशु तस्करी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभियान के दौरान 5 नवजात शिशु को भी बचाया गया। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान 3 लाख रुपए से अधिक की नकदी भी जब्त की है। एशियाई तलवारबाजी प्रतियोगिता 2026 कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगी। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। 19 से 24 जून तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 34 देशों के 400 से अधिक खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है। ओलंपियन भवानी देवी का इस प्रतियोगिता में 24 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व कर रही हैं। राजधानी में आज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा धूप रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में 42 जन कल्याण शिविर आयोजित किए। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने पूर्व अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन सहित अन्य ग्रुप सी के खाली पदों पर भर्ती में 20% आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया। विश्वविद्यालय QS रैंकिंग में IIT दिल्ली एक बार फिर देश का सर्वोच्च संस्थान बना और एशियाई तलवारबाजी प्रतियोगिता कल से नई दिल्ली में शुरू। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
8: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
7: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
8: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
9: कॉल 7500153841।
10: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी दोस्त प्राची और मेरे साथ हैं आरजे आनंद।
1: हाय प्राची, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हो आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूं और आज हमारे साथ जुड़ गए अंतरिक्ष।
1: अच्छा, अंतरिक्ष में तो मैं बहुत बचपन से जाना चाहता था यार। सच में तुम और आज अंतरिक्ष गई है?
0: और आज अंतरिक्ष हमारे साथ है।
1: ऐसे कैसे हो सकता है? अंतरिक्ष पे लोग जाते हैं, वो नीचे कैसे आ सकता है?
0: हमारे साथ अंतरिक्ष गुप्ता जुड़ गए।
1: ओ प्राची गुप्ता, आज अंतरिक्ष गुप्ता को लाइए पकड़ के। वेरी वेरी वेरी अमेजिंग यार।
0: तो आज हम अंतरिक्ष से बहुत सारी बातें करने वाले हैं और आज हमें इस कॉन्वर्सेशन में बहुत मजा आने वाले हैं।
1: गाइस, मैं पहले बचपन में सोचता था यार, ये अंतरिक्ष कैसा दिखता होगा, कैसा होगा, वहां पर कैसे पहुंचते होंगे, लेकिन आज साक्षात हमारे स्टूडेंट अंतरिक्ष जी पधारे तो हम उनसे ढेर सारी बात करेंगे। हाय अंतरिक्ष, वेलकम टू FM मुरादाबाद। कैसे हैं आप?
2: हाय आनंद जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। और आज तो आप दोनों भाई बहन की तरह लग रहे हो, एकदम बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी।
1: क्या बात है, वैसे आज तक तो किसी ने भाई बहन बोला नहीं था, लेकिन आपने बोल के हमारा जो बेइज्जती की है हमारी, इसके बाद हम तो एक अच्छे फ्रेंड है ना यार। भाई बहन कब बन गया प्राची?
2: पर आप लोग बड़े,
1: मुझे समाज और जगत का भाई नहीं बनना, मैं बन बन के परेशान हो गया हूँ यार, अब तो छोड़ दो भाई। प्राची टेल अस, हम एक अच्छे फ्रेंड है।
0: हम अच्छे फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स भी हैं।
1: हाँ एग्जैक्टली, और भाई बहन बोल भी जाए तो कौन सी बड़ी बात है यार, बन जाते हैं
0: भाई बहन फ्रेंड, हम सब है।
1: अब बताओ आप अंतरिक्ष जी, आप बताओ, आपने आते ही अंतरिक्ष वाला सवाल पूछ लिया यार, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। खैर, कैसे हाल चाल है आपके?
2: मैं बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है।
1: आप अपने बारे में थोड़ा बताओ यार।
2: मेरा नाम अंतरिक्ष गुप्ता है, आई एम 22 इयर्स ओल्ड। मैंने अभी रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन करी है TMU से, BCA करा है।
1: okay.
2: और अभी मैं एक बिजनेस स्टार्ट करा है मैंने नया नया, इज फॉर केटरिंग इवेंट मैनेजमेंट, एंड आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ क्लाउड किचन एज वेल।
1: वाह, क्या
2: हम लोग क्लाउड किचन शुरू करने वाले हैं जिसमें हमारे पास सारी चीजें होंगी, और अभी मैं फिलहाल बिजनेस पर ध्यान दूंगा। अब बाकी सब नॉर्मल, सब बढ़िया चल रहा है।
1: 22 ईयर ओल्ड हमारे साथ अंतरिक्ष हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बिजनेस की तरफ बढ़ चुके हैं। 22 साल का लड़का जहां सिर्फ यही कंफ्यूजन में रहता है कि यार क्या करूं, किधर जाऊं, किसको दिल दूं, किसे सिम तोड़ू, किसके जोड़ू, मतलब वो उसी में रहता है। और ये बंदा अपने इवेंट मैनेजमेंट की प्लानिंग करके बैठे हैं, मतलब और साथ में बिजनेस को भी यू नो शुरू करने का प्लान कर ही चुके हैं। तो मतलब ऐसे लोग तो होते हैं जो जिंदगी में कामयाब बनते हैं, और आगे चल के APJ अब्दुल कलाम जिनको हम नाम देते हैं, वो कुछ ऐसे लोग होते हैं यार। बिग शाउट आउट, मैं सच बता रहा हूँ, यू नो, और इनमें मैं भी हूँ भाई, मैं भी एक सही एज में सही प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ। बहुत कम लोग होते हैं मेरे और इनके जैसे जो एक सही एज में सही काम को करते हैं। आप लोग देख रहे हैं ना, आपसे भी रिक्वेस्ट है, कर लो भाई कुछ। तो अंतरिक्ष जी, टेल अस यार, कैसे थॉट आई कि 22 साल की उम्र में इवेंट मैनेजमेंट करना है या ऐसा कुछ प्लान करना है, यू नो?
2: तो मैंने जब मैं यहाँ पे थर्ड में था, मैंने थर्ड के बाद ना मेरे फैमिली में कुछ इश्यूज हो गए थे, तो मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था।
1: ठीक है।
2: तो मैंने वहां से जो अपनी पढ़ाई शुरू करी वो मैंने कैम्ब्रिज करी थी, जो लाजपत नगर के जस्ट ऑपोजिट है। मैंने वहां पे अपने आप को जो एक्सप्लोर करा, मैंने वहां पे बहुत सारी चीजें सीखी, जहां पे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बोल बहुत अच्छा सकता हूँ।
1: वेरी नाइस।
2: मेरी स्टेज अपीयरेंस बहुत अच्छी है। वहां से मुझे अपने आप में एक ये रिकग्नाइजेशन मिला कि मैं ये चीजें कर सकता हूँ। फिर जब मैं 9th में आया, 10th में आया, बहुत सारे लाइफ में एक्सपीरियंसेस मिलते रहे। मैं एक लेडी से मिला था जो उस टाइम पे वहां से साइकोलॉजी कर रही थी।
1: ओके।
2: और तो जब मेरी उनसे बात होने लगी, कन्वर्सेशंस होने लगी ना, तो मैंने बहुत सारी चीजें अपने आप में जानी कि हाँ, मुझको साइकोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, मुझे लोगों से बात करने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे उन्हें जानने में बहुत मजा आता है। ऐसे ही

0: करते करते करते करते मेरे को इवेंट मैनेजमेंट का ख्याल तब आया जब मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि मुझे दो लोगों से बात करके उनको मिलवाने में मैच मेकिंग बहुत अच्छी लगती है।
1: नहीं नहीं सर,
0: तो जब वो एक शादी का मोमेंट चल रहा होता है ना, तो मेरे को पता है उनके कहां से कैसे मिले थे, तो वो मेरे लिए भी बहुत एक इमोशनल मोमेंट होता है।
1: नहीं, नहीं,
0: कि यार ये लोग फाइनली मिल गए, इन्होंने इतना स्ट्रगल करा,
1: सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है, एकदम जेन्युइन वाली,
0: बहुत जेन्युइन वाली। और वो दिल से दुआ देके जाते हैं यार, वो बोलते हैं कि भाई अगर आप नहीं होते तो शायद ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। वो जो फीलिंग आती है ना, वो बहुत फीलिंग होती है।
1: क्या बात, अल्टीमेट
0: अल्टीमेट फीलिंग।
1: क्या बात है, उससे बड़ी अगर शादी का प्लान करें कभी फ्यूचर में तो अंतरिक्ष को मत भूल जाना।
2: अच्छा बस अंतरिक्ष आप हमें बताइए कि आप इवेंट मैनेजमेंट मतलब आप क्या क्या रहता है आपका इवेंट मैनेजमेंट।
0: हमारे इवेंट मैनेजमेंट में सपोज जैसे भाई ने अभी आपकी बोला कि अगर आपकी शादी होती है तो आपकी आपकी क्यों नहीं होगी आपकी शादी, तो मैं कह रहा हूँ आपकी शेरवानी से लेकर आपकी दुल्हन की विदाई तक सारी जिम्मेदारी मेरी।
2: अच्छा जैसे स्टेज एंट्री कोरियोग्राफी ये सब आपका
0: है? कुछ कुछ मेरे पास सारी टीम्स है।
1: ऑलराइट,
0: मेरी जैसे मेन जो मेरा फोकस होगा जो मेरा होगा वो केटरिंग पे होगा और डेकोरेशन होगा।
1: ठीक है
0: ठीक है, बाकी वेन्यू वगैरह जो पार्टी डिसाइड करने के लिए बोलती है वो हो जाएगा। बाकी मेरे पास अलग अलग टीम्स है, मेरे पास डीजे टीम्स है, मेरे पास प्रॉपर जैसे शोज होते हैं उनकी टीम्स है, मेरे पास होस्ट करने वालों की एक टीम है, मेरे पास हर चीज की एक प्रॉपर टीम रहती है और वो सारा बजट के ऊपर ऊपर नीचे होता रहता है सारी चीज।
2: अच्छा तो अंतरिक्ष अभी तक कितने इवेंट ऑर्गेनाइज कर चुके हैं?
0: मैंने जो अभी अभी ऑफिशियली मैंने एक नाम निकाला है वैभव लक्ष्मी केटर्स, ये मेरी दादी के बेस पे नेम है। अभी मैंने इसमें तीन प्रोग्राम्स करे हैं, जिसमें एक जिला जज के यहाँ मुरादाबाद में ही करा था, उनके बेटे का बर्थडे था तो उन्होंने सारे जजेस वगैरह को बुलवाया था, तो वो एक ऑफिशियल इवेंट हो गया। वरना अनऑफिशियली क्योंकि मेरे नाना भी ये काम करते हैं, मैंने कम से कम 500 प्लस इवेंट्स कर दिए होंगे।
1: वेरी नाइस यार,
2: 22 की एज में आपने
1: अपने आप में
2: बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना इवेंट मैनेज करना।
0: बहुत मजा आता है, आप यकीन मानो एक शादी का फंक्शन इतना मजेदार होता है ना, संगीत हल्दी जो लड़का लड़की की तरफ से जो कजिन्स वगैरह आते हैं उनकी मस्तियाँ,
1: और आजकल तो सब एक ही बैकग्राउंड में हो रहा होता है,
0: सब एक ही,
1: सब लड़का वाला यहाँ बैठा हुआ है, लड़की वाली यहाँ, और सब एक साथ ही यूनिट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं।
0: बहुत मजा आता है, मतलब उससे बेटर मैं मानता हूँ ना एक फीलिंग, अगर आप जुड़े हुए हो ना उन लोगों से तो आप जुड़ जाते हो उनके साथ, आप गाओगे नाचोगे उनके साथ, एक फैमिली का पार्ट बन जाते हो आप।
1: करेक्ट, और आपको पता होता है कौन फूफा जी है, कौन कौन चाचा जी है,
0: कौन
1: किसके साथ कैसे आपने
0: कलेश करने वाला है, कौन कुछ करने वाला है,
1: सारी चीजें आपको पता होती है। तो गाइस ये जो हैप्पी मूवमेंट है डेफिनेटली कंटिन्यू रहेगा, एंड अंतरिक्ष से और भी बहुत सारी बातें करेंगे। 22 साल का एक लड़का जो अपने करियर की तरफ आगे बढ़ चुका है, एंड हमारा मेन मोटिव है इनको बुलाने का कि अगर आप इस एज में कुछ नहीं प्लान कर रहे हो तो वक्त आ गया है कुछ इनिशिएटिव लेने का और कुछ बेहतरीन करने का। वो कहते हैं ना कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। एक ब्यूटीफुल ट्रैक, उसके बाद वी कम बैक।

0: वेलकम बैक है आपका फिर मुरादाबाद 89.6 पर और हमारे साथ है अंतरिक्ष गुप्ता और आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे 22 इयर्स की जो एज होती है उसमें लोगों को क्लियर नहीं होता अपना विजन कि लाइफ में क्या करना है पर फिर भी अंतरिक्ष ने इतना इवेंट मैनेजमेंट वो संभाल रहे हैं।
1: इनफैक्ट वो स्टडी भी कर चुका है अपनी ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं। मैं मेरे को पहले देख के लग रहा था ये 30-35 साल का बंदा तो नहीं है, थोड़ी रिस्पेक्ट से बात करो बट अभी जब पता चला ये 22 साल का तो मेरे को लगा नहीं यार तो बिल्कुल एकदम फ्रेंडली एकदम यंग एज का लड़का है तो हम मतलब ऐसे करके बात कर सकते हैं एज ए फ्रेंड
2: बिल्कुल
1: कर सकते हैं ना भाई। अभी अंतरिक्ष आपने बोला यार भाई कि यहाँ पे हम लोग जब इवेंट मैनेजमेंट करते हैं इवेंट मैनेजमेंट के अंदर हमें होस्ट भी चाहिए होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टीम्स आपके पास होती है तो कहीं ना कहीं होस्ट का काम तो हम दोनों भी कर रहे हैं प्राची, तो फिर हमें कब जॉब दे रहे हो आप?
2: नेक्स्ट इवेंट जब भी होता है आपकी
1: हमें भी तो पता होना चाहिए
2: बातचीत बिल्कुल।
1: हाँ तो भाई मतलब और वैसे नो डाउट आप भी अच्छा बोलते हो तो आप कभी करते हो खुद से?
2: मैंने
1: कभी थॉट आता है कि यार मुझे भी करना चाहिए?
2: अभी रिसेंटली एक मौसी की सालगिरह थी तो उसमें करा था
1: एंकरिंग किया आपने?
2: उसमें एंकरिंग करी थी।
1: वेरी नाइस। तो आपको कैसे पता लगा कि यार मुझे भी बोलने का बहुत है यू नो एक क्रियोसिटी है मेरे में भी ये चीज? थोड़ी देर पहले आपने बताया आप गाने का भी आपके अंदर टैलेंट छुपा हुआ बैठा है, आपने फादर को देख के सीखा है, सारे मल्टी टैलेंटेड लोग इनके घर में बैठे हुए हैं, मजे की बात ये है। हाँ जी
2: गाने का तो ऐसा है कि मेरे फादर को ना पुराने गाने सुनने का बहुत शौक है तो वो गुनगुनाते भी बहुत है। उनका अपने टाइम में खुद का बैंड था हाँ जिसमें वो गाते थे, उनका एक फ्रेंड था जो गिटारिस्ट था बहुत अच्छा और एक था जो पियानो बजाता था बहुत अच्छा, तो उनका एक पूरा बैंड था, ये लोग MTV में हो के तो खैर उनकी वो पूरी जर्नी देख के मेरे को भी बीच बीच में वो गाते रहते थे, मेरे को भी शौक आ गया थोड़ा थोड़ा गाने का। तो हाँ मैं थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ अच्छा। और बोलने का ऐसा है कि मेरे को ना सोशल टॉपिक्स पे बोलने का बहुत शौक था,
1: ठीक है,
2: मेरे को अवेयरनेस फैलाना बहुत अच्छा लगता है लोगों के बारे में। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंसेस करे लोग उन्हें जाने, मैंने जो शायद अपनी लाइफ में गलतियां करी जो मैंने अपने यूथ में गलतियां कर दी वो कोई और ना करे, तो मेरे को अवेयरनेस फैलाना बहुत अच्छा लगता है।
1: किस टाइप की विच अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ तो कैसी अवेयरनेस आप यू नो स्प्रेड करते हैं और अभी जो आपको मेरे जैसे आप जैसे यंग लड़के सुन रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे अभी इस रेडियो के माध्यम से?
2: मैं अपने उम्र के बच्चों को या मुझसे भी जो 2-3 साल जो अभी 11th-12th कर रहे हैं मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि यार देखो अभी तुम्हारी फैमिली ना बहुत चीजों को लेकर प्रेशर डालेगी, बोलेगी कि हाँ आप ये कर लो आप वो कर लो, वो उनके हिसाब से गलत नहीं है, वो उनके हिसाब से बिल्कुल सही चीज है, वो आपका फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने आप को एक्सप्लोर जरूर करना कि आपके अंदर क्या पैशन है, आपका किस चीज में दिमाग लगता है। मैंने 9th-12th तक अपने आप को एथिकल हैकिंग में डाला था, हाँ मुझे हैकिंग बहुत अच्छी लगती है बट उसमें मैं अपना करियर नहीं मानता हूँ। मैंने आगे अपनी सिंगिंग एक्सप्लोर करी, अब फाइनली मुझे मेरा एक वो मिल गया कि हाँ मैं इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा करता
1: हूं। मिल गया आपका क्लैरिटी, आपको मिल गई
2: क्लैरिटी मुझे मिल गई है तो वो इसलिए मिल गया क्योंकि मैंने ना अपनी लाइफ में गलतियां करी हैं। दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो खुद गलती करके सीखते हैं और एक वो जो सामने वाले की गलतियों से सीख लेते हैं।
1: करेक्ट।
2: तो वो आपको करना जरूरी होता है।
1: आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं?
2: मैं खुद की गलती करने वाला, मैं नहीं समझ सकता दूसरे की
1: कि कोई मुझसे बोलता है। अगर आपको सीखना है तो आपको अपनी गलतियों से ही सीखना पड़ेगा, या तो आप गिव अप करके बाहर निकल जाओ मतलब छोड़ दो या फिर आगे बढ़ जाओ, उन्हीं गलतियों को सीख के, गलतियों को पीछे छोड़ के आपने आगे बढ़ना है ना।
2: और एक वो है, एक गाना है जो अगर आपने सुना हो, मैं जिंदगी का साथ निभाता
1: चला गया,
2: तो वो जो उसकी लाइन है ना कि मैं जिंदगी साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो ये जो दो लाइनें है ना, आपको हमेशा वैसे ही रहना चाहिए, आपको किसी चीज की टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप इस टाइम पे अपने आप को देखो, अपने करियर को देखो, बाकी सारी चीजें तो हैपनिंग होती रहती हैं लाइफ में।
1: एब्सोल्युटली बहुत अच्छा आपने बोला है और बात इतनी प्यारी गाने की हुई है तो प्राची गाना सुन ले। इसी गाने को सुनते हैं और ये गाना शायद आपको भी आज की इस बेहतरीन सी मैं आपको थोड़ी फील दे दे कि आप भी कुछ करने पे मजबूर हो जाएं। एक बढ़िया सा गाना सुनते हैं उसके बाद वापस मिलते हैं। आप कहीं मत जाओ, सुनते रहो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
4: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
6: हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप?
7: प्रेशर डालेगी, बोलेगी कि हाँ आप ये कर लो।

0: वेलकम बैक। एक बहुत ही अच्छा गाना भी आपने सुना, एंड ऑफ कोर्स ये गाना सुन के आपको भी मजा आ गया होगा। भाई बहुत मजा आया। प्राची टेलस, तुझे कैसा लगा गाना? सो रही थी तो उठ, जल्दी उठ।
1: गाना तो बहुत अच्छा था, मुझे पता चला कि अंतरिक्ष को भी बहुत अच्छा गाना गाना।
0: क्या बात है, ये सीधे मुद्दे की बात पे आ जाती है, मतलब बहुत टैलेंटेड है ये लड़की। सीधा ये जो है भाई साहब, ये वहाँ पे पकड़ती है नवज को, जहाँ इसको पता है यहाँ से सारी बीमारियाँ निकल जा रही है।
1: क्योंकि अभी अभी हमने आपको अभी ब्रेक में हमें सुनाया था ना अंतरिक्ष ने गाना, तो वो बहुत ही अच्छा था।
0: चलो अंतरिक्ष
1: हमारे लिसनर्स को भी आप सुना दीजिए।
0: हाँ बिल्कुल, अंतरिक्ष भाई आपका वेलकम बैक है। एंड ऑफकोर्स थोड़ी देर पहले हम गाने शाने की बात कर भी रहे थे, तो आपके फेवरेट सिंगर कौन है वैसे?
2: मेरे फेवरेट
0: कितने
2: singer?
0: सारे सिंगर हैं, ये तो कुछ नहीं बेकार
2: है। तो नहीं होता है किसी का भी। मेरे को KK सुनना बहुत पसंद है, मेरे को सोनू निगम सुनना बहुत पसंद है, मेरे को अगर आप पुराने सिंगर्स की बात करो तो कुमार सानू सुनना बहुत पसंद है, किशोर कुमार सुनना बहुत पसंद है, लता मंगेशकर जी, आशा
0: यार एक बार बताओ, अगर असली म्यूजिक आपको सुनना है, असली गानों की आपको समझ चाहिए, तो आपको किशोरदास, लता, मोहम्मद रफी, आशा ताई, ये सब आपको बड़ी ऐसी क्लैरिटी देंगे।
2: एग्जैक्टली
0: है ना। और बाकी सोनू निगम, कुमार शानू, ये अल्टीमेट अपने आप में,
2: ये तो बिल्कुल सही बात है।
0: लेजेंडरी बात अलग है, और जो हमने उनकी बात करी वो तो है ही नंबर वन के कमाल के कलाकार। तो आज कौन से सिंगर को आप जो है याद करने वाले हमारे रेडियो स्टेशन पे?
2: मैं सोनू निगम जी को याद करना चाहूंगा, उनका एक बहुत प्यारा गाना है अग्निपथ मूवी से, अभी मुझ में कहीं।
0: क्या बात है,
1: ब्यूटीफुल।
0: आई लव दिस ट्रैक। हम दोनों थोड़े से टिश्यू पेपर ले लें भैया, क्योंकि इस गाने को सुनते हमारे आंसू निकलेंगे, हमारा स्टूडियो भर जाएगा, तो हम बह ना जाएं।
2: नहीं नहीं
0: ठीक है, हाँ रेडी है टिश्यू पेपर हमारे, ठीक है मैं निकाल लेता हूँ।
2: ठीक है
0: टिश्यू पेपर निकाल लिए मैंने, आप शुरू करें
2: अभी।

0: थैंक यू.
1: अरे वाह त्रिक्षा, आपने बहुत अच्छा गाया. क्योंकि जो आप गा रहे हैं ना, मतलब बड़े ही दिल से गा रहे हैं ना.
0: ये गाना भी मेरे दिल के बहुत ही
2: है. ये गाना हर किसी के दिल के बहुत करीब है भाई. बहुत अच्छा गाना है, बहुत ही प्यारा सोनू निगम साहब ने गाया है और बहुत ही अच्छे लिरिक्स हैं और बहुत ही अल्टीमेट एक्टर के ऊपर फिल्माया है. ऋतिक रोशन हम सभी के फेवरेट हैं यार. तो गाना ऑफकोर्स यार बहुत अच्छा, मजा आ गया आपका ये गाना सुनकर अंतरिक्ष जी. और सीरियसली आप बहुत कमाल के इंसान है, आपसे बहुत कुछ जानने को समझने को मिल रहा है. और जब आपके जैसा यंगस्टर आपके सामने बैठा हो तो नो डाउट कि आप उससे कितनी सारी बातें सीख जाएं, या आपको सिखा, वो आपको सिखा दे या आप उससे सीख ले, है ना. तो ये जो सिलसिला है चलता रहना चाहिए.
0: मैं मानता हूँ हर इंसान से कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं.
2: करेक्ट.
0: हर इंसान के लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत डिफरेंट होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि लोग मुझसे ही सीख सकते हैं. Absolutely. मैंने भी आज आपसे बहुत नई चीजें सीखी कि आप ऑन द स्पॉट लाइंस कैसे बना लेते हो.
2: और मैंने भी आज सीखी है कि आप ऑन द स्पॉट कैसे अच्छी बातें कर लेते हो. ये मुझे आपसे पता चला, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना तगड़ा है. आने से पहले क्या दिमाग में चल रहा था, कुछ पता था? वैसे मैं आपको लिटरली बताऊं गाइस, मैंने अंतरिक्ष जी को कॉल ही किया था, ना उनका नंबर मेरे पास है, ना मैं उनको जानता हूं, ना वो मुझे जानते हैं. बट यहां मिलने के बाद ऐसा लग नहीं रहा है कि हम इनको ये हमें नहीं जानते, ऐसे लग रहा है आपको?
0: नहीं भाई, मुझे तो
2: मतलब इतने फ्रेंडली हो गए हैं, ऐसे एकदम जैसे लाइक कितने अच्छे फ्रेंड हैं अपन. और right. मैंने इनको कसम से बता रहा हूँ नहीं बुलाया था. बट सोचो ना यार, वही बात है कि जो आप सोचते नहीं हो कभी कभी लाइफ आपको वो चीजें दे देती है. ये आए थे अपने दोस्त के साथ एक शेरो शायरी का सेशन रिकॉर्ड करने, उनका तो सेशन पूरा हो गया. हमने कहा चलिए अब आपको भी जरा कनेक्ट कर लेते हैं भाई. इनकी आवाज, इनकी बात करने का अंदाज इतना अच्छा लगा. वैसे आपने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट किया था क्या?
0: नहीं, मैंने आज ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था.
2: आज क्या, आज से पहले भी नहीं किया हुआ?
0: नहीं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था. हाँ, मेरा एक था कि मेरे को आगे जाके जब मैं अपना बिजनेस अभी सेटल कर लूंगा, मैं फिर उसके बाद अपने प्रॉपर एक पैशन पे ध्यान दूंगा जिसमें मेरे को पॉडकास्ट वगैरह और सिंगिंग वगैरह करनी है. लेकिन हाँ, आज से पहले अभी तक बिल्कुल की रीसेंट ऐसा कुछ मेरी लाइफ में होने वाला है, मैंने नहीं सोचा था. इवन इनफैक्ट इस शो से 2 घंटे पहले कोई नहीं कह सकता कि मैं बहुत गहरी नींद में सो रहा था. मेरे दोस्त का कॉल आया कि भाई यार मेरे को ना एक शो में जाना है और ये लोग मेरा इंटरव्यू लेंगे, तू चल ले मेरे साथ. मैं नॉर्मली था, मैं ठीक है ये इंटरव्यू देगा, मैं बैठ के सुन लूंगा, आ जाऊंगा वापस.
2: जैसे हर इवेंट में करते हैं, वापस आ जाएंगे. लेकिन पता नहीं था आज खुद ही पकड़े जाएंगे. वेल,
0: सही बात है.
2: मतलब डेफिनेटली बहुत ही अमेजिंग था ये कॉन्वर्सेशन. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी कभी क्या होता है ना कि आपको भी नहीं पता होता है कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है. हमें भी यही पता था, हम सिर्फ ओम जी का इंटरव्यू लेंगे और बाय सायोनारा करके अपन शो बंद कर देंगे, ठीक है. लेकिन हमें नहीं पता था उनके साथ एक और बंदा आएगा जो और भी अल्टीमेट निकलेगा. तो बहुत ही बढ़िया. और आप दोनों ही अपने आप में कमाल की चीज हो यार. भाई भी बहुत बढ़िया है और आपने भी बहुत अच्छा किया है. और इसी बात में प्राची गाना सुने, आपका अग्निपथ का गाना है ना, बहुत ही अच्छा भाई ने गुनगुनाया. तो उसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, लौट के आएंगे तो फिर इनसे इजाजत लेंगे और कुछ अच्छे मैसेजेस भी लेंगे और कुछ बढ़िया सा आपको हम भी अच्छा सा मैसेज देकर जाएंगे. डोंट फरी, फिलहाल सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6
1: रेडियो. बजाती रहिए, गुनगुनाते रहिए.

0: यार बाकी तो बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है इसी गाने के बाद। वेलकम बैक है सोनू निगम से आपकी आवाज में। तो अच्छा गाना आपने एंजॉय किया प्राची, तुझे मजा आया सुन के? ऑफ कोर्स अंतरिक्ष को देख के तो मुझे बहुत मजा आ रहा है।
1: अंतरिक्ष की आवाज में और सभी अब सोनू निगम की आवाज में हमने ये सॉन्ग एंजॉय किया, बहुत मजा आया,
0: बहुत मजा आया। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड लिटरली अंतरिक्ष भाई आपसे बातचीत करके वन टू वन जो इंटरेक्शन था बहुत ही वंडरफुल था ये, एंड बहुत अच्छा लगा।
2: सेम हियर आनंद जी।
0: एंड आनंद जी आप बोल रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है मैं अंकल जी बन जाऊं। यार ऐसे मत बोलो भाई, आनंद जी बोलोगे तो फिर हमारा कैरेक्टर बदल जाएगा, हमारी आवाजें बदल जाएंगी, दुनिया बदल जाएगी प्राची। हालात जज्बात सब बदल दिए यार इसने तो। ऐसे मत बोलो आप,
2: एक मिमिक्री मैं भी कर सकता हूँ
0: प्लीज। मोस्ट वेलकम यार, अगर आप फैंटास्टिक हैं तो करो।
2: बिल्कुल बिल्कुल। आपने ऑगी एंड द कॉकरोचेस देखा है?
0: हाँ यार देखा है,
1: वो तो मुझे
0: हम सभी का फेवरेट भी है यार।
2: ऑगी के भाई का जैक का पता है वो कैसे बोलता था?
0: जैक शायद मुझे इतना याद नहीं आ रहा।
1: हाँ, पर मैंने देखा है, मुझे ऑगी के उसमें डायलॉग्स होते थे वो बहुत अच्छे लगते थे।
2: मैं आपको एक उसकी आवाज में बताता हूँ। ओए ऑगी, आज हमें इन कॉकरोचेस को मारना होगा और हम इन कॉकरोचेस को मार के सब कुछ खत्म कर देंगे, फिर तू शांति से बैठ सकता है, तू टेंशन मत ले। ओए ऑगी।
3: ओए आपकी मिमिक्री बहुत ही अच्छी थी बाबूजी, मुझे बहुत पसंद आई, जोरदार तालियां हैं आपके लिए।
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच,
1: बहुत जोरदार ताली है।
0: एब्सोल्युटली जो किसने बजाई नहीं वो बात अलग है। चलिए वेल आगे बढ़ते हैं, एंड बहुत अच्छा लगा यार, लवली मीटिंग यू एंड लवली टॉकिंग टू यू। नेक्स्ट टाइम हम डेफिनेटली बचा के रखते हैं क्योंकि अभी लौट के भी आना है आपके साथ, फिर कभी ना कभी किसी न किसी ट्रैक में मिलेंगे। और आप इवेंट मैनेजमेंट करते हो और बहुत सारी चीजें और भी आप कर ही रहे हो, एंड आई थिंक अभी आगे चल के आप और भी चीजें अच्छी करोगे क्योंकि हमें नहीं पता, हमारा दिमाग नई नई चीजों को ढूंढता है। एंड आगे जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी आपको और नई नई चीजें मिलेंगी बहुत बेहतरीन, जिन्हें आप यू नो करना चाहोगे अपनी लाइफ में, बहुत जरूरी है यार। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं अंतरिक्ष, ऑल द वे बेस्ट हमारी पूरे एफएम इंटायर फैमिली की ओर से। एंड आप सोशल मीडिया ऑफ कोर्स यूज करते होंगे, आप इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हो, तो अगर किसी को इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड ये मैनेजमेंट आपका देखना हो, आपके पेजेस देखने हो, तो आप कहां पे क्या यू नो कैसे मैनेज कर रहे हो सोशल मीडिया? बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। तो यार
2: मेरा एक वैभव लक्ष्मी केटरिंग के नाम से एक पेज है इंस्टाग्राम पे, आप मेरी पर्सनल आईडी पे मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको अपनी पर्सनल आईडी दे सकता हूँ इंस्टाग्राम
0: पे, तो हम भी फॉलो
2: वो ज्यादा बेटर।
0: जल्दी से बताओ,
2: उसमें है अंतरिक्ष GPT18__ और अंतरिक्ष में H जो है ANTRIKSHHGPT18
0: GPT
2: गुप्ता की शॉर्ट,
0: चैट जीपीटी नहीं है ये।
2: नहीं है चैट जीपीटी नहीं है, ये अंतरिक्ष जीपीटी है।
0: ये चैट जीपीटी तो नहीं लगा के बैठा हुआ है भाई। वेल थैंक यू वेरी मच यार भाई, और बड़ा इंटरेस्टिंग एंड यूनिक डाला हुआ है अपना नाम, मतलब अपने पूरा तुमने अपने इंस्टाग्राम में अपना पूरा बायोडेटा दे दिया है। अंतरिक्ष
1: नया अंतरिक्ष चैट जीपीटी हम लोग यूज करते हैं ना, इसलिए अंतरिक्ष जीपीटी कुछ आ गया,
2: अंतरिक्ष जीपीटी
0: कुछ नया सा आ गया है आजकल, ये पार्टी वो पार्टी, अब ये
1: इवेंट मैनेजमेंट है तो मतलब सब कुछ ही है यार ना, सारी चीजें हैं। तो ये ठीक है, जीपीटी बहुत सूट कर रहा है ना।
0: कैसा लगा आपको बात करके?
2: थैंक यू सो मच,
1: बहुत अच्छा लगा।
0: तो मुझे भी अच्छा लगा, और थैंक यू अंतरिक्ष भाई, और बाकी अपनी पोटली को संभाल के रखते हैं, फिर आपसे डेफिनेटली मिलेंगे। एंड जाते जाते कुछ मैसेज अगर तुम कन्वे करो हमारी ऑडियंस को तो हमें भी अच्छा लगेगा, और कोई गाना जो आप चाहोगी जाते जाते मैं सभी को सुनवाना चाहता हूँ आनंद, आज आपके शो से कोई गाना जो आप डेडिकेट करो मेरी ऑडियंस को जाते जाते।
2: एक सोशल मैसेज जो मैं सबको देना चाहता हूँ, सोशल मैसेज तो मैंने देखो इस पॉडकास्ट पर भी 2-3 दे ही दिया, तो मैं कोई आपको अपनी बातों से बोर नहीं करूंगा, बस इतना बोलूंगा।
0: वैसे आपकी आवाज में वो बोरियत है नहीं, बोरियतनेस जिसे हम कह सकते हैं।
2: ये तो आपका दिखे बड़प्पन है, बट ठीक है। मैं एक सोशल मैसेज ऐसा कि यार देखो, आप जो अपनी लाइफ में कर रहे हो ना, आपको अपनी लाइफ में उस चीज को करते हुए हो सकता है बहुत ज्यादा डाउट्स हैं आगे जाके,
0: करें
2: आप उन डाउट्स पे ज्यादा ध्यान मत देना यार, जो आप कर रहे हो करते रहो, कभी ना कभी आपको उस चीज में सक्सेसफुल आप जरूर होगे। और कभी आप किसी चीज से ना हार मत मानना, जो हार नहीं मानते हैं वो आगे जाके जीत जरूर जाते हैं। बस ये मेरा एक सोशल मैसेज आएगा, बाकी गाने तो बहुत सारे हैं जो आप मेरी ऑडियंस को सुना सकते हैं, आप एक एक का गाना सुना सकते हैं, क्यों आजकल नींद कम खाब ज्यादा है
0: क्या मुझे। बहुत अच्छा गाना है, थैंक यू सो मच, इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू भाई, और गाना भी बहुत अच्छा आपने यू नो जाते जाते डेडिकेट कर दिया है हमारी ऑडियंस को। तो ऑडियंस यानी कि मुरादाबादी, आप लोग अगर मुझे सुन रहे हैं, आप भी इस तरह से कुछ अच्छी बातें करते हैं, आपके अंदर भी कुछ ऐसी क्रिएटिविटी है, तो आप प्लीज आइए, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। आरजे आनंद को आप मैसेज कर सकते हैं, रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ, आप मुझे चेक कीजिए, रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से आपको मैं इंस्टाग्राम पे मिलता हूँ, वहाँ आइए, हमारी ऑफिशियल आईडी पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, एफएम मुरादाबाद 89.9 91.6 एफएम की ऑफिशियल आईडी है, वहाँ के भी आप अपना टैलेंट मुझे डेफिनेटली डीएम करें अपना नाम और नंबर, हम जल्दी आपसे कनेक्ट होंगे एंड हो सकता है नेक्स्ट नंबर कहीं लग जाए यार, है ना। तो अगर आपके पास भी ऐसा अच्छा टैलेंट है तो प्लीज यू हैव टू कम एंड हम आपको चौड़े में इन्वाइट कर रहे हैं। प्राची क्या कहना चाहेगी जाते जाते?
1: हाँ बिल्कुल, अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 देता है आपको प्लेटफॉर्म जहाँ आप अपना टैलेंट हमारे साथ शेयर कर सकते,
0: प्राची की तरह अच्छी बातें कर सकते हैं। तो प्राची
1: और हमारा नंबर है 9837896896।
0: बिल्कुल, इस नंबर पे भी आप अपने नाम के साथ हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी के लिए लेते हैं आपसे इजाजत, जल्दी आपसे मिलेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहाँ करेंगे ढेर सारी बात और होंगी फिर आपसे और भी मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ख्याल, मस्त रहो, झकास रहो, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है यार, इसे एंजॉय करते रहो। ज्यादा लोड लेके कहाँ जाओगे यार, तुझे जरा टेंशन मत लो, गाड़ी चला रहे हो, मुस्कुराते रहो। क्या बात है यार, मुस्कुरा दिया आपने, कमाल कर दिया यार। इसी बात में के गाना छोड़ के जा रहा हूँ, मस्त रहो, झकास रहो और ऐसे ही कीप लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: बाय बाय।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुद्र की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास। यहाँ मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
4: मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर महेश।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारी वादा।
6: बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
7: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021, वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी, फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
6: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
7: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
6: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
7: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर We concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
6: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
4: सिंडकोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
6: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिये। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल है। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी
5: With a brand new design that frees up even more pixels for personalization and an inventory of features to up your game.
4: नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
6: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
7: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
4: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
8: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था। वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
4: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉ आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉ मुरुगन ने कहा कि डॉ श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉ श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक एनआईसीयू सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060002430।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री. साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है. ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट. विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद. कॉल नाउ 9412211111.

गुम हुआ होश है। नमस्कार मुरादाबाद, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका हम सफ़र अखिल, और आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक अखिल संग। आज हम दोस्तों ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातों के ऊपर बात करेंगे जैसे हमने पहले करी थी बात अपने

जाकर भागने वाली शैतानी की होगी, तो किसी ने स्कूल में दोस्त का टिफिन छिपाया होगा, और किसी ने घर की मिठाई छुपके से ख़त्म कर दी, सारी की सारी मिठाई। ऐसे मिठाई चोर तो बहुत होते हैं, मीठा होता ही ऐसा है कि अगर एक बार लग जाए जुबान पे तो जब तक वो चट ना हो जाए तब तक जो है ना मन नहीं भरता। तो हमें भी बताइए अपनी पहली शैतानी के बारे में, मैसेज करें हमें 9837896896, और अगर थोड़ी सी आवाज़ तेज़ है तो निकाल लीजिए और मिला लीजिए हमें कॉल 9837896896 पे। तो मैं करता हूँ आपका इंतज़ार और उम्मीद है जल्दी होगी हम लोगों की बात।

0: आजा मेरे बादशाह, क्या लिरिक्स और क्या गाना कहते हैं इसे कि ये भी गाना अगर आ जाए तो इसमें भी इंसान खो जाता है। ये गाना गाया था अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज ने, म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और लिरिक्स थे आनंद बख्शी साहब। बख्शी साहब की इतनी उम्दा उम्दा कहते हैं ना एक तरीके से लिरिक्स हैं कि हमेशा कहीं ना कहीं दिल को छू जाती हैं। और आप मेरे को मैसेज करिएगा इस मूवी का नाम। अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी जी थी इसमें, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो याद होगा आपको। मैं देखता हूँ आपका मैसेज आता है नहीं आता है। अभी हमारे साथ जुड़े हैं नरेंद्र जी, चलिए उनकी भी सुनते हैं कोई बचपन की शैतानी। नरेंद्र जी आप कहाँ? नरेंद्र जी की जरा लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, मगर एक बार देखते हैं। हेलो नरेंद्र जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, कैसे हैं आप? अपने पीछे से जो आपका रेडियो है उसे कम कर लीजिए साउंड को। मोबाइल पे ही सुन रहे हैं आप? चलिए साहब, तो नरेंद्र जी बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं इस समय?
1: मंडी समिति के पीछे से।
0: मंडी समिति लाइन पर? क्या बात है साहब, आप तो नज़दीक में ही हैं। आप बताइए कौन सी शैतानी की है आपने बचपन में, जो कभी डांट पिटी है आपकी? मास्टर ने हाथ दबाया सीट के नीचे? तो आप क्या मतलब होमवर्क नहीं करके आए थे क्या? कौन से पहाड़े भूल गए थे? आज याद है तो पहाड़ा सुना दीजिए। आज मास्टर साहब अगर आपको सुन रहे होंगे तो हंस रहे होंगे और कह रहे होंगे चलो नहीं, चलिए तो मत सुनाइए पहाड़ा, हम आपका पहाड़ा यहीं सुनेंगे, बाद में सुन लेंगे। बताइए कौन सी फरमाइश है आज आपकी? कौन?
1: हमारी छुट्टी होती है ना, आप
0: हाँ जी,
1: नहीं होते हैं स्टूडियो में। हमारी
0: अच्छा, अरे
1: छुट्टी होती है 7 बजे, 7:15 बजे करीब निकलते हैं आपके।
0: अच्छा, चलिए कोई नहीं, अब तो आप आराम से खा पी के बैठिए, सुनिए और बातें सुनिए हमारी और शेयर कीजिए अपनी भी दिल की बात। ये हमने प्रोग्राम इसलिए चालू किया है कम से कम कुछ तो निकले दिल से आवाज़। नहीं, धन्यवाद आपकी, अगर आप इतनी हमारे FM से मोहब्बत करते हैं। बस आज आपकी आवाज़ थोड़ी दबी दबी सी आ रही है, कोई बात नहीं, अगली बार निकल जाएगी। शादी हो गई आपकी? ठीक है सर, तो सही है, फिर आपकी आवाज़ सही निकल रही है सर। तो कुछ सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को कोई शायरी?
1: शायरी तो हमसे सर आगे नहीं, लेकिन एक दिन शायरी की किताब आप लंगा
0: हाँ जी जरूर, शायरी भी जरूरी है। चलिए गाना ही बता दीजिए, आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आप गाना सुना दीजिए हमारा, वही गाना वाला इनाम 10,000 का।
0: अच्छा, वफा जिनसे बेवफा हो गए। चलिए साहब बहुत बढ़िया, नरेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा कि आपने याद किया और अपनी पुरानी शैतानी हमें भी बताई। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र जी, जिन्होंने बताया कि ये स्कूल में उन्होंने शैतानी की और मास्टर जी ने हाथों हाथ उसकी जवाबी कार्रवाई कर दी। तो होता ही है, हम भी जब भी कभी स्कूल में शरारत होती है और मास्टर जी हाथों हाथ कार्रवाई कर दें तो वही एक जगह ऐसी होती है जहाँ ऑन द स्पॉट फैसला हो जाता है, कभी कभी तो स्टेज पे मुर्गा ही बनना पड़ जाता है। तो एक शायरी जो मैं बचपन से रिलेटेड कहना चाहूँगा, बचपन की गलियों में आज फिर जाना हुआ, पुरानी शरारतों से दोबारा सामना हुआ, माँ की डांट भी तब प्यार लगती थी, माँ की डांट भी तब प्यार लगती थी, यादों का वो मौसम फिर से सुहाना हुआ। तो इसी के साथ सुनते हैं एक प्यारी सी, प्यारा सा गीत, एक प्यारा सा नगमा।

0: वफा जिनसे की बेवफा हो गए। तो गाना सुनते सुनते ना कुछ ऐसा लगा कि हमने भी कोई ऐसी वफा कर दी है, जो अभी याद आने लगी है कि भैया ऐसी वफा नहीं करनी चाहिए थी। गाना बहुत अच्छा है और कहते हैं मूवी का नाम प्यार का सागर, 1961 में मूवी आई थी और इसको आशा भोसला जी ने, इसमें इनकी आवाज़ भी थी, साथ में जो फिल्माया गया था नूपुर जी के ऊपर फिल्माया गया था ये गाना, जिसमें ये जो आवाज़ आपने सुनी ये मुकेश जी की थी। तो हम आते हैं अपनी बातों पे, वापस आ चुके हैं अपने उस दिल से दिल तक की बातों में। तो हम पे भी मैसेज आया है रणवीर जी का, कहते हैं गुड नाइट अखिल जी, और बचपन में पापा जी से रसगुल्ले, पापा जी रसगुल्ले का डब्बा लेके आए थे और हमने उसे रात में ही चट कर दिया था। अगले दिन उनके कोई मित्र आने वाले थे जिसके लिए वो डब्बा लेके आए थे, और जब उन्होंने डब्बा खोला तो उसमें सिर्फ रेशा रेशा मिला। तो ये तो रणवीर जी आपने कर दिया धमाल, और आपकी बाद में पड़ी खूब सारी डांट, तो डांट तो पड़नी थी साहब आपकी, जब हाल ही ऐसा किया है आपने, रसगुल्ले गायब कर दिया। दूसरा हम पे एक मैसेज आया हुआ है अदिति का कि मैंने अपनी छोटी बहन की डॉल छुपा दी थी और ऐसे ट्रीट कर रही थी कि जैसे खो गई है, और उसी के साथ ढूंढने निकली पूरे घर में। तो ये अदिति जी आपने गलत काम किया, ये तो आपने एकदम अपनी छोटी बहन को ये कोई शैतानी नहीं की है, या तो आपने उसे तड़पाया है। चलिए कोई नहीं, हो जाता है ऐसे ऐसे। तो अभी हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर हैं, देखते हैं उनकी कौन सी शैतानी है जो आज वो कहना चाहते हैं हमारे साथ। नमस्ते दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं रिहान जी?
1: नमस्कार अखिल भाई, कैसे हो?
0: बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लगता है अभी अभी डिनर हुआ है आपका?
1: हाँ बिल्कुल, डिनर आपकी हुआ है।
0: बिल्कुल एनर्जेटिक आवाज आ रही है। और क्या करते हैं रिहान साहब आप?
1: कुछ नहीं यार, राजस्थान गर्मी पड़ रही है, कहीं जा रही नहीं कर रहा
0: है। गर्मी पड़ रही है, दिल कहीं नहीं कर रहा जाने का? अरे सर आप घूमे हो सर, पहाड़ देख के ही कभी कभी ठंडक महसूस हो जाती है।
1: अरे तुम इधर को आ रहे हो यार, अभी उरस हो गया है।
0: चलो अच्छा, अब ये बताओ रिहान जी, आपकी अपनी कोई ऐसी शैतानी बताओ जिसे आपको आज भी याद करके जो है हंसी आ जाती है।
1: ये हंसी तो एक बात पर आती है, पहले हम तो बचपन में तो शैतान करते थे।
0: बचपन में क्या करते थे?
1: शैतानी करते थे।
0: अच्छा बचपन में? हाँ शैतानी तो मोस्टली बचपन में ही होती है।
1: हाँ वो जब छोटे होते थे शैतानी करते, ये बोलना खेलते थे, आप जब खो खेलते थे और स्कूल में शैतानी करते थे तो मास्टर मारते मारती थी।
0: तो साहब जो
1: बड़ा अच्छा लगता है सर,
0: अगर आपने मास्टर की मार नहीं खाई है तो आप कभी अच्छे स्टूडेंट रहे ही नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मास्टर अगर उंगली में नाखून काटे, नाखून नहीं काटे तो उंगली में मारते थे।
0: नहीं अच्छा है सर रिहान साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। शैतानी और कोई ऐसी शैतानी जिसके चक्कर में पूरे घर में लगाना पड़ा हो आपको चक्कर?
1: अब
0: आप समझदार हो, शादी हो गई आपकी? हाँ तो आप ज्यादा ठीक है। ठीक है साहब बहुत बढ़िया। तो आज कौन से दिल से आवाज निकली है, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: ये गाना सुनना चाहते हैं, सबको सुनाना चाहता हूँ, यादों की चादर ओढ़
0: तेरी, यादों की चादर ओढ़ ले। क्या बात है साहब,
1: लास्ट हो जाए।
0: लास्ट तक सुनाना है? ठीक है साहब लास्ट तक ही सुनाया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ रिहान साहब, सब बढ़िया है, बाकी सब बढ़िया है साहब। आएंगे सर, दिक्कत कोई नहीं है, टोल भी देते हैं पूरा पूरा, आएंगे जरूर आएंगे रामपुर तक। तो हमारे साथ जुड़े थे रिहान साहब, रिहान साहब ने कहा रामपुर जरूर आना, तो रामपुर तो साहब जरूर आएंगे। रामपुर बहुत अच्छी जगह है, और कहते हैं कि अगर बरेली जाना है और रामपुर होते हुए जाना है आपको। तो ये था मजाक, एक शायरी जो बचपन के ऊपर अभी मैसेज करी है हमें अमिताभ जी ने, अरे हमारे मुरादाबाद में अमिताभ जी रहते हैं साहब। मासूम थे नादान थे, शरारतों से पहचान थे, मासूम थे नादान थे, शरारतों से पहचान थे, आज समझदार क्या हुए, बचपन के सारे अरमान खो गए। ये बात तो आपने सही कही, आज ज़्यादा समझदार हो गए हैं, मगर शैतानी तो चलती रहनी चाहिए दोस्तों, बिना शैतानी के मज़ा नहीं है कुछ भी। जिसने नहीं की शैतानी बस वो देखो मुस्कुरा रहा है, गाड़ी में ड्राइव करते करते भी मुस्कुरा रहा है भाई। शैतानी याद आ रही है इसे भी। चलिए साहब सुनते हैं तेरी यादों की चादर उड़े।

0: जी,
1: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
0: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
0: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
6: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
5: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
6: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
7: कॉल 7500153841।

0: होम पार्टनर ओयो पार्टनर। वेलकम बैक 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आप सभी का साहब। दोस्तों, बचपन की शैतानियाँ हमें हमेशा सिखाती हैं कुछ छोटी छोटी बातें, कहीं खुशी तो कहीं मस्ती। तो आज जैसे कहते हैं ना, आजकल जो बच्चे हैं मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, मगर हमारे बचपन के समय में हमारा सारा समय दोस्तों के साथ और शरारतों के साथ ही बीतता था। कभी कभी क्रिकेट खेलते थे, पड़ोसी की खिड़की का शीशा तोड़ देते थे, तो कभी स्कूल बंक करके पूरी प्लानिंग बनाई जाती थी कि कहाँ जाना है, कैसे करना है, और अगर उसकी बर्थडे होगी तो उसकी बर्थडे में क्या क्या चीज़ें करनी है। हमारे पास आदिल साहब का एक मैसेज आया है, बहुत ही शायरी वाला बढ़िया सा। वो मिट्टी की खुशबू, वो बारिश का पानी, याद आती है बचपन की हर एक कहानी। ना चिंता थी ना कोई परेशानी, बस दिल में रहती थी थोड़ी सी शैतानी। तो आदिल साहब, आपने बहुत सही लिखा है, बहुत ही बढ़िया लिखा है कि हाँ, दिल में तो रहती थी शरारी। मेरे को अभी एकदम अचानक स्ट्राइक हुआ, जैसे ही मैंने अभी आपको ये सामने बात बोली थी कि मैच खेलते समय शीशा तोड़ने, तो हम गांधीनगर में क्रिकेट मैच खेलते थे अपने दोस्तों की टोली के साथ, और एक बार शॉट खेलते हुए एक गाड़ी में शीशा भी सच में टूट गया था। वो बॉल उसी के गाड़ी के अंदर थी। अब किसी की हिम्मत नहीं थी, सब भाई साहब सब भाग गए, जैसे इधर उधर, कोई इस गली में भागा, कोई उस गली में भागा, मगर दिमाग में सबके ये था कि वो बॉल निकालनी कैसे, जब थोड़ा सा मामला शांत हो जाएगा तब जाके उसे बॉल को निकाल लेंगे। मगर आपको मैं उसमें इस गाने के बाद कि उसको बॉल को हमने वो निकाल भी पाए या नहीं निकाल पाए। तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं उस्मान साहब, चलिए उनकी भी कोई शरार सुनते हैं। दिल से कहाँ से आई है, कोई ना कोई तो उनकी शरारत जरूर निकलेगी। नमस्कार उस्मान जी, कैसे हैं आप? क्या कर रहे हैं इस समय आप?
1: मुरादाबाद से।
0: आप इस समय कर क्या रहे हैं उस्मान साहब? क्या बात है, क्या बात है, आपने तो जो गाड़ी चला रहा है उसको तो एकदम
1: चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल।
0: हाँ जी,
1: और चलते हैं दुश्मन तो खिलते हैं फूल।
0: क्या बात है, बिल्कुल साहब, बिल्कुल सही कहा आपने, फूल तो उस समय खुला हुआ है, और जो लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं अपने लोग जो है ना, ये साफ तो करते नहीं है गाड़ी, धूल जरूर जड़ी हुई है। मगर बहुत ही अच्छी शायरी, मजा। आप भी कोई शैतानी बताइए अपने बचपन की, कभी ना कभी तो आपने भी तंग किया होगा।
1: हम लोग देर से आते थे घर पे तो हमारे माँ बाप जो थे डांटते थे मारते थे।
0: तो देर से क्यों आते थे आप, देर से क्यों आते थे? अच्छा,
1: स्कूल से आए।
0: हाँ जी,
1: और बच्चों पढ़ाने पहुँच जाते थे, मजदूरी भी करते थे।
0: क्या बात है, तो वो शैतानी में आ गया आपका सब कुछ। क्या बात है साहब, ये तो उस्मान साहब बहुत अच्छी बात है।
1: फिर एक दिन हमारे माँ बाप ने हमारे पूरा घर का काम धाम हमारे हाथ में दे दिया, हम रहते थे और तू बताता नहीं था।
0: तो देखिए ना साहब, आपकी शैतानी में भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिला।
1: पैसे देना आते थे सब उनके माँ बाप।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: ट्यूशन पढ़ाता था मैं,
0: ट्यूशन पढ़ाते थे। और अब क्या करते हैं उस्मान साहब, आप आज के समय में इस समय क्या करते हैं आप?
1: तो ऐसे ही हैं साहब, मजदूरी करते
0: हैं। चलिए चलिए साहब, मगर बहुत अच्छा है। जिंदगी की ना टूटे घड़ी। अच्छा, हाँ हाँ, कड़ी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है साहब, धन्यवाद उस्मान साहब, जरूर सुनाएंगे ये गाना भी आपको।
1: बहुत बढ़िया प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं और जितने तारीफ किए जाए तो कम ही है सब।
0: नहीं नहीं, धन्यवाद साहब, धन्यवाद, हमें बहुत अच्छा लगा आज हमें आप आपकी आज एक चीज और सीखने को मिली कि आपने शैतानी भी ऐसी की कि उससे कई लोगों का भला हुआ। कितने बच्चों को आप पढ़ाते थे, भले ही वो डांट पिटती थी, घर पहुंचते थे लेट पहुंचते थे, मगर उस शैतानी का अलग ही मजा था सर। धन्यवाद उस्मान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो ये थे उस्मान साहब। हमारे साथ एक बहुत प्यारा सा मैसेज भी है, हमारे एक श्रोता हैं जो दुबई से हमें सुनते हैं, और उनका नाम है तनिष्क। तनिष्क जी हमें सुनते हैं, तनिष्क जो हैं बहुत ही शैतान बच्चे हैं, और हमें मैसेज करके कहते हैं कि हमारा एक गाना है वो भी प्ले कर दीजिए, मतलब शैतानी वाला मैसेज भी उनका चालू है। तो आज तनिष जी की फरमाइश पे उनका भी गाना प्ले करते हैं और उसके बाद हम उस्मान साहब का भी गाना प्ले करें। तो आपकी भी कोई शैतानी हो तो ज़रूर हमें मैसेज करें या हमें बताएं कॉल करके 9837896896 पे।

0: सैयारा मूवी से गाना था ये, और इसे गाना गाया है तनिष्क बागची और फहीम साहब ने। और अभी हमारे साथ एक लिस्टर और जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो, दिल से दिल तक। हेलो हेलो सर, सर आवाज़ मेरे पास आपकी आ रही है, आप देखिए मेरी आवाज़ आपके पास पहुंच रही नहीं पहुंच रही है। लगता है सर के पास हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, तो कोई बात नहीं, दोबारा कॉल करते हैं। तब तक कहते हैं ना, समय बदलता है, उम्र बदलती है, लेकिन बचपन की यादें कभी पुरानी नहीं होती। आज अगर मौका मिले तो शायद हम फिर से वही शैतानी करना चाहेंगे, बस एक बार फिर से वो बेफिक्र बचपन जीना चाहेंगे। कुछ पल चुराकर वक्त से फिर बचपन में लौट जाना है, माँ की डांट सुननी है और फिर शैतानी कर आना है। हमारे साथ एक और लिसनर जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्या कहते हैं अभी। हेलो, लगता है आज गर्मी ज़्यादा है और नेटवर्क जो है आगे पीछे हो रहा है, तो कोई बात नहीं, ये तो चलता ही आएगा। आज की महफिल में हमने सुनी अपनी बचपन की पहली शैतानियाँ, पढ़े आपके प्यारे संदेश और महसूस की उन सुनहरी यादों को। कई सारे संदेश आज हमने पढ़े भी हैं, और एक हमारे पास छोटी सी शायरी, अभी एक और मैसेज आया है हमारे पास। थका नहीं सकती रास्तों की रुकावट, गिरा नहीं सकती, अगर ज़रूर है जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती। क्या बात है, हमें उन्होंने अपना नाम तो मैसेज नहीं किया है क्या है, मगर मैसेज बहुत बढ़िया उन्होंने हमें भेजा है ये। चलिए जुड़ते हैं फिर से अपने दोबारा एक लिसनर से, क्या कहते हैं ये। हेलो, दिल से दिल तक।
1: हेलो,
0: हाँ जी बोलिए।
1: मैं गुंजन बोल रही हूँ।
0: गुंजन जी कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं बढ़िया हूँ। आप शैतानी बहुत करती हो, आप क्या शैतानी सबसे ज्यादा करती हो? अच्छा, शैतान पापा को मम्मी को तंग करती हो आप?
2: हाँ करती है, बहुत करती है।
0: लो भाई सब, पीछे से आवाज आ गई, ये सच में शैतान लड़की है। क्या शैतानी करती है ये बताइए हमें।
2: माता को जिद कर लेती है ना, तो परेशान करके पूरी ना हो जाए, पीछे ना चलती है।
0: चलिए, यही तो मासूम वाली शैतानियां हैं इनकी। जब तक इनकी जिद पूरी नहीं होगी ना, तब तक ये सच में पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये भी एक शैतानी है। मैं अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि ये गुंजन जी भी सच में, ये आप कहते हैं लाइव शैतानी, अगर आप सुन रहे हैं तो आज इन्हीं की सुनते हैं। ये हर बार हमें कॉल करती हैं और कहती हैं, भैया कच्ची कली मेरा मासूम चेहरा, ये गाना ज़रूर प्ले होना है। तो ये गाना अगर मेरा फेवरेट नहीं है तो अब भी मेरे फेवरेट लिस्ट में जुड़ गया है ये गाना, कि जब जब मुझे ये फ़ोन आता है मैं समझ गया कि हमारी गुंजन जी को कच्ची कली और मासूम चेहरा सुनना है। तो आज हमें पापा जी ही अपनी कोई शैतानी बता दे बचपन की, जो आज तक उनकी मम्मी ने भी नहीं सुनी है।
2: अरे मैं तो, मेरे को तो आप जानते हो, मैं तो ऋषि सिंह ठाकुर मजोला प्राइमरी स्कूल के सामने से बोल रहा हूँ, मैं तो पहले से जिम चुका हूँ।
0: हाँ जी,
2: मैम के साथ और आनंद भैया के साथ।
0: तो आज आप नहीं, ये तो बता सकते हैं कोई ना कोई बचपन की शैतानी तो अपनी बताइए, कि आप क्या करते थे शैतानी बचपन में?
2: हम जब स्कूल जाते थे ना,
0: हाँ जी,
2: इंटरवेल में गायब हो जाते थे।
0: इंटरवेल में ही साहब आपकी क्लास पूरी हो जाती थी।
2: हाँ जी, क्लास पूरी हो जाती थी, गायब हो जाते थे।
0: चलिए साहब, ये भी शैतानी अच्छी है। ये शैतानी जो है, देखा आपको, ये बोलते के साथ ही मुस्कुराहट आ जाती है, तो कुछ शैतानियाँ होती हैं।
2: हाँ जी।
0: चलिए आज हम सुना देंगे, गुंजन जी का भी फेवरेट गाना लगा देंगे, कच्ची कली। मगर गुंजन जी की आपको डांस करते हुए वीडियो जरूर भेजनी होगी हमें। हाँ जी, क्या कौन
2: पायल की चनकार से जाके नीचे।
0: चलिए पायल की झनक ही लगा देंगे।
2: हाँ जी, वही लगा दो।
0: ठीक है साहब, धन्यवाद।
2: पूरा
0: ठीक है साहब। तो ये जुड़े थे आज हमारे साथ गुंजन जी और गुंजन जी के पापा जी। तो पापा जी भी बड़े शैतान हैं, गुंजन जी तो हैं शैतान, पापा जी भी बड़े शैतान हैं जो इंटरवेल में ही चले जाते थे स्कूल से अपने की आज तो मेरी हो गई है पढ़ाई पूरी। कहते हैं ना जब भाई साहब आप मास्टर जी पूछते थे, लोग पूछते हैं कि भैया कहाँ तक पढ़े हो आप, जी मैं तो घंटे तक पढ़ाऊँ, जैसे ही वो बैल बजती थी बस वहाँ तक पढ़ता था उसके बाद निकल आता था, तो इंटरवेल की बैल से ही भाग जाते थे। तो इनकी तो पढ़ाई पूरी हो गई है। यादों की किताब का सबसे प्यारा पन्ना है बचपन, शैतानियों का सबसे खूबसूरत अफसाना है बचपन, उम्र चाहे कितनी भी बढ़ जाए दिल में हमेशा मुस्कुराता रहता है बचपन। तो ये था आज का हमारा लास्ट जो हमने लिए कॉल, हम पे अभी एक और कॉल आ रही है, लिए चलिए इनकी भी कॉल लेते हैं क्या कहते हैं, और उसके बाद आपसे लेते हैं विदाई। फिर मिलेंगे कल हम 9 बजे आपको ठीक इसी समय दिल से दिल तक संग में, सुनते हैं इनकी भी बात। हेलो दिल से दिल तक अखिल संग कैसे हैं आप, कौन बोल रहा है?
1: पापा धारवी।
0: अच्छा धारवी कैसी हैं आप?
1: सही हूँ।
0: क्या कर रही हैं आप इस समय?
1: मैं कुछ नहीं कर रही, मैं पढ़ाई कर रही हूँ।
0: पढ़ाई कर रही हो आप? अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। तो धारवी कोई शैतानी करती हो आप जो मम्मी पापा से डांट पिटती है आपकी?
1: नहीं।
0: कोई शैतानी नहीं करती हो आप, गुड गर्ल हो?
1: हाँ।
0: अच्छा चलो इसका मतलब कहीं ना कोई शैतानी छुपी हुई है आपके अंदर अभी। कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आप?
1: All is well।
0: All is well। चलिए अभी आपका All is well फिर से प्ले करते हैं और सुनाते हैं आपको भी गाना। तो धारवी गुड नाइट, बाय बाय, और ध्यान रखना सबका।
1: ओके।
0: तो हमारे साथ देखिए धारवी भी जो है शैतानी से, इसे कहते हैं शैतानी, नंबर इन्हें याद हो गया है यहाँ का, और ये हमें कॉल करके कहती रहती हैं मेरा भी फेवरेट गाना प्ले कर दीजिए। तो करते हैं सभी का फेवरेट प्ले गाना करते हैं, और याद रखिएगा कल आएंगे एक नई बात के साथ, नई मुलाकात के साथ, और सुनेंगे नए तराने। तब तक हम लेते हैं विदा, मिलते हैं कल अखिल से, अखिल के साथ दिल से दिल तक।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
3: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
4: अरे तो परेशान क्यों होना है, ना धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे, और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड।

0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आपको पता है दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत में। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में अग्रणी कौन है? हमारा भारत। प्राउड टू बी एन इंडियन।
5: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।

समझे, अज समझे।

0: किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

ಇನ್ನಾಯ ಅದು.

0: चतुर एक पैर है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना। गा
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मर

0: राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को संवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: 40 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।